0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल चेन्नई में 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं से संपर्क सुविधा बेहतर होगी, उद्योग और व्यापार मजबूत होंगे तथा राज्य के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। श्री मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं से दैनिक यात्रा आसान होगी और राज्य की आर्थिक वृद्धि में मदद करेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि तमिलनाडु में परंपरा और आधुनिक विकास साथ साथ जारी है।
1: मंदिर से मेट्रो तक तमिलनाडु के ये अनुभव, यही आज के भारत की स्पिरिट है। भारत अपनी सांस्कृतिक शक्ति से प्रेरणा लेता है, विज्ञान की प्रगति से आगे बढ़ता है और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए नए अवसरों का निर्माण कर रहा है। हमारी विरासत और भविष्य की हमारी आकांक्षाएं साथ साथ आगे बढ़ रही है।
0: इससे पहले श्री मोदी ने चेन्नई मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण के पुनमल्ली वडा पलानी खंड का शुभारंभ किया। चेन्नई में एक अन्य समारोह में प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया उभरती चुनौतियों का समाधान तलाश रही है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि देश के युवाओं में इन चुनौतियों का समाधान देने की प्रतिभा और क्षमता है। श्री मोदी ने कहा कि युवा विकसित भारत का संकल्प पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। प्रधानमंत्री ने युवाओं से अपनी क्षमताओं का उपयोग करने और राष्ट्र के विकास में योगदान देने की अपील की।
1: आज भारत में जो इनफाइनाइट अपॉर्चुनिटी है, मैं चाहता हूं कि हर युवा अपने भविष्य को उसी बड़े कैनवास पर देखे, बिकॉज दिस इज योर टाइम, दिस इज योर अपॉर्चुनिटी। मुझे पूरा विश्वास है हमारा ये सपना पूरा होकर रहेगा।
0: श्री मोदी ने कहा कि विनिर्माण क्षेत्र के विस्तार से युवाओं के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर उपलब्ध हुए हैं। दिल्ली सरकार महिलाओं और ट्रांसजेंडर समुदाय को आत्मनिर्भर बनाने के लिए दुर्गा ई ऑटो योजना शुरू करने जा रही है। दुर्गा यानी ड्राइविंग अपलिफ्टमेंट एंड रोजगार फॉर विमेन एंड ट्रांसजेंडर। योजना का उद्देश्य महिलाओं और ट्रांसजेंडर समुदाय को सुरक्षित और सम्मानजनक तरीके से रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। योजना के पहले चरण में कुल 1300 पिंक इलेक्ट्रिक ऑटो आवंटित किए जाएंगे। सऊदी अरब के रियाद स्थित किंग खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर शनिवार को हुए हमले में घायल एक भारतीय नागरिक की मौत हो गई है। रियाद स्थित भारतीय दूतावास ने शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की है। दूतावास ने पार्थिव शरीर जल्द भारत लाने सहित हर संभव सहायता देने की बात कही है। भारतीय नागरिक सहायता के लिए सऊदी अरब में 24 घंटे उपलब्ध टोल फ्री नंबर 800-2471234 पर संपर्क कर सकते हैं। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने बताया है कि होरमूज जलडमरू मध्य में मार्शल द्वीप के झंडे वाले टैंकर एमटी वालथेरा पर हुए हमले में सभी 11 भारतीय नाविक सुरक्षित हैं। श्री सोनोवाल ने बताया कि ओमान के सोहार एंकरेज में भारतीय नाविकों को ले जा रहे टैंकर एमटी पेट्रो डॉल्फिन पर ड्रोन से हमला किया गया। जहाज पर सवार 11 भारतीयों में से 9 को सुरक्षित बचा लिया गया है, जबकि 2 लापता हैं। स्थानीय तटरक्षक बल लापता भारतीयों की तलाश में जुटा है। सरकार संबंधित अधिकारियों के संपर्क में है और बचाव अभियान में हर संभव सहायता दी जा रही है। सऊदी अरब की राजधानी

ने रियाद के किंग खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक अन्य हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 11 अन्य घायल हो गए। यमन के हूती विद्रोहियों ने इन हमलों की जिम्मेदारी ली है। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हूती विद्रोहियों से निपटने को लेकर अमेरिका जल्द फैसला लेगा। मिस्र में निशानेबाजी विश्व कप में उदयवीर सिद्धू ने 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीत लिया है। उन्होंने फाइनल में 240.6 अंक के साथ अपना पहला सीनियर विश्व खिताब हासिल किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत के युवा अपनी प्राचीन सांस्कृतिक जड़ों से जुड़े रहते हुए वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने में सक्षम। दिल्ली सरकार दुर्गा योजना के अंतर्गत महिलाओं और ट्रांसजेंडर समुदाय को 1300 ई ऑटो वितरित करेगी। सऊदी अरब के रियाद हवाई अड्डे पर दो दिन में दूसरे हुती हमले में एक व्यक्ति की मौत और 11 लोग घायल। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, रूस और यूक्रेन तत्काल प्रभाव से ऊर्जा

0: प्रतिष्ठानों पर हमले रोकने को सहमत। जिबूती तट के पास एक नाव पलटने से 147 लोगों की मौत और भारत ने तीसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में वेस्टइंडीज को 14 रनों से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला में 2-1 की बढ़त बनाई। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के युवाओं में दुनिया की उभरती चुनौतियों का नए और बेहतर समाधान देने की क्षमता है। चेन्नई में जयगोपाल गरोड़िया हिंदू विद्यालय के स्वर्ण जयंती समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया आज नई चुनौतियों के समाधान खोज रही है और उन्हें पूरा विश्वास है कि भारत के युवा इसमें अहम भूमिका निभा सकते हैं।
1: विकसित भारत के लिए जो नए आइडियाज चाहिए, जो नए सॉल्यूशंस चाहिए, उनसे भारत ही नहीं विश्व का भविष्य भी तय होगा। टुडे द वर्ल्ड इज लुकिंग फॉर सॉल्यूशंस एंड यू हैव द पोटेंशियल टू प्रोवाइड दोज सॉल्यूशंस।
0: प्रधानमंत्री ने युवाओं से अपनी क्षमताओं का उपयोग करने और राष्ट्र के विकास में योगदान देने की अपील की। श्री मोदी,
1: आज भारत में जो इनफाइनाइट अपॉर्चुनिटीज है, मैं चाहता हूं कि हर युवा अपने भविष्य को उसी बड़े कैनवास पर देखे, बिकॉज दिस इज योर टाइम, दिस इज योर अपॉर्चुनिटी। मुझे पूरा विश्वास है हमारा ये सपना पूरा होकर रहेगा।
0: श्री मोदी ने राष्ट्रीय एकता और तमिल संस्कृति की समृद्ध विरासत पर भी बल दिया। उन्होंने प्राचीन तमिल ग्रंथ तिरुकुरल का उल्लेख करते हुए कहा कि ये जीवन और निरंतर सीखने की प्रेरणा देता है। प्रधानमंत्री ने युवाओं से बड़े सपने देखने, नए तरीके से सोचने और निडर होकर आगे बढ़ने का आह्वान किया। श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि आधुनिक नवाचार और सांस्कृतिक विरासत से जुड़कर युवा एक प्रगतिशील और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के साथ वैश्विक स्तर पर भी पहचान बना सकते हैं। दिल्ली सरकार महिलाओं और ट्रांसजेंडर समुदाय को आत्मनिर्भर बनाने के लिए दुर्गा ई ऑटो योजना शुरू करने जा रही है। दुर्गा यानी ड्राइविंग अपलिफ्टमेंट एंड रोजगार फॉर वुमेन एंड ट्रांसजेंडर योजना का उद्देश्य महिलाओं और ट्रांसजेंडर समुदाय को सुरक्षित और सम्मानजनक तरीके से रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। योजना के पहले चरण में कुल 1300 पिंक इलेक्ट्रिक ऑटो आवंटित किए जाएंगे। इनमें से 1170 ऑटो महिलाओं के लिए जबकि 130 ट्रांसजेंडर समुदाय के लाभार्थियों के लिए होंगे। एक रिपोर्ट।
2: योजना के पहले चरण में पूरी दिल्ली में जिलेवार तय कोटे और पात्रता की शर्तों के अंतर्गत प्रत्येक राजस्व जिले में महिलाओं के लिए करीब 90 इलेक्ट्रिक ऑटो और ट्रांसजेंडर लाभार्थियों के लिए लगभग 10 इलेक्ट्रिक ऑटो आवंटित किए जाएंगे। दिल्ली सरकार ने कहा कि इस योजना के माध्यम से राजधानी की महिलाओं और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को इलेक्ट्रिक ऑटो का मालिक और ड्राइवर बनने का अवसर प्राप्त होगा, जिससे वे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सकेंगी। दिल्ली सरकार ने बताया कि इस योजना में प्राप्त आवेदनों की जांच संबंधित जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता वाली जिला स्तरीय कमेटियां करेंगी। यह जांच प्रत्येक हफ्ते की जाएगी। इस योजना के अंतर्गत दुर्गा इलेक्ट्रिक ऑटो के पंजीकृत मालिकों को पहचान पत्र, दुर्गा जैकेट और कैप भी प्रदान किए जाएंगे। सौम्य की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। जनसेवा से देश सेवा उनकी इस यात्रा का मूल मंत्र रहा है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण के साथ सरकार भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। आज इस विशेष श्रृंखला में हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि कैसे मेरा युवा भारत मेरा भारत पहल के जरिए इस विजन को जमीनी हकीकत में बदला गया है।
3: मेरा युवा भारत संगठन यानी माय भारत, भारत सरकार की एक युवा केंद्रित पहल है, जिसे 31 अक्टूबर 2023 को शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य देश के युवाओं को राष्ट्र निर्माण से जोड़ना और उन्हें विभिन्न सामाजिक गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी के अवसर उपलब्ध कराना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मेरा युवा भारत संगठन 21वीं सदी में राष्ट्र निर्माण के लिए बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा।
1: मेरा युवा भारत संगठन यानी माय भारत की नींव रखी गई है। 21वीं सदी में राष्ट्र निर्माण के लिए मेरा युवा भारत संगठन बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाला है।
3: छत्तीसगढ़ में माय भारत की गतिविधियों ने युवा शक्ति की व्यापक सहभागिता को नई दिशा दी है। माय भारत संगठन के छत्तीसगढ़ में राज्य निदेशक अर्पित तिवारी ने बताया कि इस संगठन के माध्यम से छत्तीसगढ़ के युवा राष्ट्रीय पटल पर अपना परचम लहरा रहे हैं।
4: छत्तीसगढ़ में भी माय भारत बहुत ही वृहद स्तर पे कार्य कर रहा है। हमारा

0: आज बस्तर, सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा का युवा राजकीय पटल पे अपना परचम लहरा रहा है, वहीं ट्राइबल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम के माध्यम से क्रॉस कल्चरल लर्निंग हो रही है, जिसमें भारत के कोने कोने में ट्राइबल क्षेत्र के हमारे युवा जा रहे हैं और छत्तीसगढ़ का परचम लहरा रहे हैं।
1: मेरा युवा भारत संगठन का लक्ष्य युवाओं में नेतृत्व क्षमता, जिम्मेदारी और नागरिक भावना विकसित करना तथा उन्हें विकसित भारत के निर्माण में सक्रिय भागीदार बनाना है। मेरा युवा भारत युवाओं को अवसर, नेतृत्व और राष्ट्र निर्माण से जोड़ने का एक सशक्त मंच है। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
2: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। सऊदी अरब की राजधानी रियाद के किंग अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर दूसरे हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 11 अन्य घायल हो गए। इससे एक दिन पहले हुए हमले में 13 लोगों की मौत हुई थी और 308 लोग घायल हुए थे। यमन के हूती विद्रोहियों ने इन हमलों की जिम्मेदारी ली है। उन्होंने विमानन कंपनियों और यात्रियों की सऊदी अरब के हवाई अड्डों का इस्तेमाल करने और इसके हवाई क्षेत्र से गुजरने के खिलाफ चेतावनी दी है। पूर्वी सऊदी अरब में तेल प्रतिष्ठानों और दम्माम हवाई अड्डे पर भी हमले किए हैं। इस बीच अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हूती विद्रोहियों पर हमले करने को लेकर अमरीका जल्द फैसला लेगा। वहीं ब्रिटेन के रक्षा मंत्री विस स्ट्रीटिंग ने संकेत दिया है कि ब्रिटेन सऊदी अरब को और सहायता दे सकता है। ये समाचार हमारी न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
3: दांत खाज खुजली में आराम, हानि रहित बेदाग जालिम लोशन।
4: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: समाचार प्रभात में आपका स्वागत है। सऊदी अरब के रियाद स्थित किंग खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर शनिवार को हुए हमले में घायल एक भारतीय नागरिक की मौत हो गई है। दूतावास ने शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की है और पार्थिव शरीर जल्द भारत लाने सहित हर संभव सहायता देने की बात कही है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि रियाद स्थित भारतीय दूतावास हमले के बाद सभी जरूरी कदम उठा रहा है। दूतावास के अनुसार 3 भारतीय आईसीयू में है, लेकिन उनकी हालत स्थिर है। भारतीय नागरिक सहायता के लिए सऊदी अरब में 24 घंटे उपलब्ध टोल फ्री नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। नंबर है 800-2-471234। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने बताया है कि होरमोज जलडमरू मध्य में मार्शल द्वीप के झंडे वाले टैंकर एमटी वालथेरा पर हुए हमले में सभी 11 भारतीय नाविक सुरक्षित हैं। श्री सोनोवाल ने बताया कि ओमान के सोहार एंकरीज में भारतीय नाविकों को ले जा रहे टैंकर एमटी पेट्रो डॉल्फिन पर ड्रोन से हमला किया गया। जहाज पर सवार 11 भारतीयों में से 9 को सुरक्षित बचा लिया गया है, जबकि 2 लापता हैं। स्थानीय तटरक्षक बल लापता भारतीयों की तलाश में जुटा है। सरकार संबंधित अधिकारियों के संपर्क में है और बचाव अभियान में हर संभव सहायता दी जा रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि रूस और यूक्रेन के बीच ऊर्जा प्रतिष्ठानों पर हमले रोकने को लेकर सहमति बनी है। हालांकि उन्होंने इस बारे में कोई विस्तृत जानकारी नहीं दी है। श्री ट्रंप ने कल रात सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि ये संघर्ष विराम तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। इस पर रूस की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने ट्रंप की घोषणा का स्वागत किया है। ज़ेलेंस्की ने कहा है कि यूक्रेन रूस के ऊर्जा प्रतिष्ठानों पर हमले रोकने के लिए तैयार है। हालांकि उन्होंने आरोप लगाया कि ट्रंप की घोषणा के बाद भी रूस ने यूक्रेन के ऊर्जा प्रतिष्ठानों पर हमले किए। पूर्वी अफ्रीका में जिबूती के तट के पास प्रवासियों से भरी एक नाव पलटने से 15 बच्चों सहित 139 लोगों की मौत हो गई है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन के अनुसार नाव में 305 लोग सवार थे।
2: प्रवासन संगठन ने बताया है कि मृतकों की आधिकारिक संख्या 139 है। हादसे के बाद 84 लोग अब भी लापता हैं। उनकी तलाश जारी है और मृतकों की संख्या बढ़ने की भी आशंका है। नाव में सवार 80 से अधिक लोगों को बचा लिया गया है। सभी जीवित बचे लोग इथियोपिया के नागरिक हैं। उन्हें उबाक स्थित IOM के बचाव केंद्र में ले जाया गया है, जहां उन्हें चिकित्सा सहायता दी जा रही है। यह नाव बाब अल मंदेब जलडमरू मध्य से जिबूती से यमन जा रही थी। प्रवासन संगठन के अनुसार पिछले वर्ष ही इस मार्ग पर 900 से अधिक प्रवासियों की मौत हुई या वे लापता हैं। समाचार कक्ष से विकास नापा।
1: दिल्ली यातायात पुलिस ने नई दिल्ली में कानून व्यवस्था की स्थिति को

0: देखते हुए आज के लिए यातायात परामर्श जारी किया है। परामर्श के अनुसार मिंटो रोड, मंडी हाउस का गोल चक्कर, गुरु नानक चौक, लोधी रोड फ्लाईओवर और अन्य मार्ग प्रभावित रहेंगे। वहीं दिल्ली मेट्रो ने जानकारी दी है कि सुरक्षा कारणों से नई दिल्ली में 6 मेट्रो स्टेशनों पर आवाजाही आज शाम 4 बजे तक बंद रहेगी। ये स्टेशन है पटेल चौक, जनपथ, राजीव चौक, मंडी हाउस, केंद्रीय सचिवालय और बाराखंबा रोड। इन सभी मेट्रो स्टेशनों पर इंटरचेंज की सुविधा उपलब्ध रहेगी। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग अपने फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आज रात 9:30 बजे वस्तु और सेवा कर GST भारत के कर सुधारों में परिवर्तनकारी भूमिका विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। परिचर्चा में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के GST नीति प्रकोष्ठ के आयुक्त गौरव सिंह शामिल होंगे। कार्यक्रम के दौरान श्रोता विशेष संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारे टेलीफोन नंबर है 011-23-31-04-8-01-23-7-1-7-1-7। इंदौर में खेले गए तीसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 14 रन से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला में 2-1 की बढ़त बना ली है। 224 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए वेस्टइंडीज की टीम निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 209 रन ही बना सके। भारत की ओर से अर्शदीप सिंह ने 3 विकेट लिए। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: सुनती हो, कमाल ही हो गया।
2: क्या हो गया ऐसा?
1: सिलेंडर आने में देरी हो रही थी ना, देखो आज आ गया।
2: ये कमाल कैसे हो गया?
1: मैंने www.pgportal.gov.in पर जाकर अपनी कंप्लेंट को बोल कर दर्ज किया और देखो तुरंत एक्शन हुआ।
2: ये तो बहुत बढ़िया पोर्टल है।
1: 22 भारतीय भाषाओं में आप अपनी शिकायत दर्ज कराएं, अपनी समस्या का समाधान और प्राथमिकता का अनुभव पाएं, जैसे हमने पाया। सारी शिकायतों का समाधान CP ग्राम्स की समाधान दीदी।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
3: धन्यवाद फरहत। तमिलनाडु में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा युवाओं को भारत में उपलब्ध असीम अवसरों का लाभ उठाने का संदेश सभी समाचार पत्रों ने प्रकाशित किया है। अमर उजाला लिखता है, भारत के युवाओं के पास दुनिया का भविष्य तय करने की क्षमता। लोकसत्य की खबर है, युवाओं से प्रधानमंत्री की अपील। बड़े सपने देखें, निडर बनकर नए विचारों पर काम करें। दिल्ली में प्रदर्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी सभी समाचार पत्रों ने प्रकाशित की है। जनसत्ता लिखता है, शांतिपूर्ण तरीके से एकत्र होने वाले लोगों को अवैध रूप से हिरासत में न लिया जाए। नेपाल में बाढ़ और भूस्खलन से फिर तबाही। उत्तरी गोरखा जिले में बूढ़ी गंडक नदी में अचानक आई बाढ़, 5 लोग लापता। 45 से ज्यादा मकान और पुल बहे, हिंदुस्तान की खबर है। दैनिक जागरण ने भी विनाशकारी बाढ़ की तस्वीरें साझा की हैं। पत्र लिखता है, 2 पनबिजली परियोजनाओं को भी बाढ़ से नुकसान, 50 लोग बचाए गए। नवरात्रि के पहले दिन 3 लाख से अधिक भक्त पहुंचे पावागढ़। गुजरात में महाकाली के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में पहुंचे भक्तों की तस्वीरें दैनिक भास्कर ने दी है। 100 की उम्र में भी अदालत में पैरवी, केरल के वकील मेनन कभी नहीं होना चाहते रिटायर, गिनीज रिकॉर्ड में दर्ज नाम। वकालत के लिए 8 दशक से कायम जुनून, राजस्थान पत्रिका ने प्रेरणा शीर्षक से ये खबर दी है। यूट्यूब पर समय बिताने में बुजुर्ग भी पीछे नहीं, हिंदुस्तान की सुर्खी है। पत्र लिखता है, 4,000 लोगों पर कराया गया सर्वे।
0: धन्यवाद मनोज। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत के युवा अपनी प्राचीन सांस्कृतिक जड़ों से जुड़े रहते हुए वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने में सक्षम। दिल्ली सरकार दुर्गा योजना के अंतर्गत महिलाओं और ट्रांसजेंडर समुदाय को 1,300 ई ऑटो वितरित करेगी। सऊदी अरब के रियाद हवाई अड्डे पर 2 दिन में दूसरे हूती हमले में 1 व्यक्ति की मौत और 11 लोग घायल। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, रूस और यूक्रेन तत्काल प्रभाव से ऊर्जा स्थानों पर हमले रोकने को सहमत। और भारत ने तीसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में वेस्टइंडीज को 14 रनों से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला में 2-1 की बढ़त बनाई। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Abhishek Mukhopadhyay. The headlines. Prime Minister Narendra Modi highlights potential of India's youth in solving global challenges while remaining anchored in the ancient cultural roots. Delhi government to distribute 1300 e-autos to women and transgenders under Durga scheme. One person killed and 11 injured in second Houthi strike on Riyadh airport in 2 days. US President Donald Trump announced

0: 107.1 MHz, musically yours.
1: Shuprabhat, Suprabhat, good morning. Akashwani ke 107.1 FM Rainbow par aap sabhi ka swagat hai. Show ka naam hai Mast Mumbai. मैं हूं आपका प्यारा आरजे अनूप, और जैसा कि अनूप की प्रथा है दोस्तों, स्वागत मैं करूंगा आप सभी का एक मुस्कुराते हुए प्रणाम के साथ। दोस्तों, तारीख है आज 12 अक्टूबर 2026, सोमवार का दिन है, और जी हां, आज सुबह की किरणें लेकर आई है बहुत सारी एनर्जी और एक उमंग। कैसे हैं आप सब? और उम्मीद है मुंबई की इस खूबसूरत और सुहानी सुबह में आप सब एकदम फिट होंगे, एकदम तरोताज़ा होंगे। मैं तो कोशिश कर रहा हूँ, और मेरे साथ मैं चाहता हूँ कि आप भी बने रहिए, बिल्कुल मज़े करेंगे आज हम। तो अपनी चाय का कप उठाइए दोस्तों, या फिर कॉफ़ी का, या फिर दूध का, या फिर अरे भाई जो आपको पसंद हो वो अपने पास आप पकड़ लीजिए और हो जाइए तैयार, क्योंकि अगले कुछ पलों में ना हम मिलकर करेंगे बहुत सारी बातें और सुनेंगे कुछ बेहतरीन गाने और बनाएंगे आज के दिन को और भी ज़्यादा यादगार। तो बने रहिए मेरे यानी आरजे अनूप के साथ 107.1 FM रेनबो पर।

0: अपनी पसंद की कोई भी कार ले। कॉस्मोस कार लोन है ना?
1: कार लोन पर 3 करोड़ रुपए तक उपलब्ध, ब्याज दर 8% और अवधि 7 साल तक, शर्तें लागू।
0: सुहाना होगा सफर कॉस्मोस कार लोन के साथ।
1: आज ही नजदीकी ब्रांच में संपर्क करें। कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, जीवन करे समृद्ध।

0: Ashwani FM Rainbow 107.1 MHz, musically yours.
1: वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी 107.1 FM रेनबो। मैं हूं कौन? मैं हूं आरजे अनूप। जी हां, आपका प्यारा आरजे अनूप। दोस्तों, मुंबई की हवाओं में ना इस वक्त एक अलग ही जादू घुला हुआ है। चारों तरफ रोशनी है, उत्सव का माहौल है, और हो भी क्यों ना, है ना, क्योंकि चल रहा है पावन नवरात्रि का महापर्व। और आज है नवरात्रि का दूसरा दिन, यानी माँ ब्रह्मचारिणी जो है उनकी आराधना का दिन। और अगर हम माँ ब्रह्मचारिणी की बात करें तो उनका यह जो स्वरूप है, यह तप, त्याग, संयम, सदाचार और अटूट विश्वास का एक प्रतीक माना जाता है। और जहाँ एक तरफ आस्था है तो दूसरी तरफ, सच कहूँ तो, शाम होते होते ना लोगों के दिलों की धड़कन बन जाती है, बढ़ जाती है, क्योंकि डांडिया और गरबे का समय हो चुका होता है। सही कह रहा हूँ ना? तो अगर हम मुंबई की बात करें, और आप मुंबई कर हैं या पूरे भारत में कहीं से भी है, और नवरात्रि के दौरान डांडिया गरबा की बात ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हमारे सोसाइटी हो या सोसाइटी के ग्राउंड्स हो, कमर्शियल पंडाल हो या फिर बड़े बड़े क्लब्स, हर जगह तैयारियां पूरी हो चुकी है। कितना सुंदर दृश्य दिखता है दोस्तों, ढोल और थाप पर थिरकने का। हम सभी दिन भर इंतज़ार करते हैं कि कब शाम हो और कब हम अपने अपने मित्रों से मिले और फिर कुछ डांडिया, कुछ गरबा भी करें। तो अगर आज आप भी कहीं पर नवरात्रि के उत्सव के लिए डांडिया या गरबा करने जा रहे हैं तो मुझे बताइए आप कहाँ जा रहे हैं, और क्या आप हर साल यह करते हैं? हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8657661071, 8657661071। मैं हूँ आरजे अनूप और आपके जवाबों का इंतज़ार रहेगा दोस्तों। तब तक माहौल को थोड़ा सा रंगीन बनाते हैं इस बेहतरीन

0: आपके दिल की हर ख्वाहिश पूरी करने वाली फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम, सुरक्षित बेस्ट इंटरेस्ट रेट और FD के ढेर सारे विकल्प।
1: इंटरेस्ट रेट सर्वसाधारण ग्राहक के लिए 7.10%, सीनियर सिटीजन के लिए 7.30%, मंथली और क्वार्टरली इंटरेस्ट ऑप्शंस के साथ 16 महीने, शर्तें लागू।
0: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिच योर लाइफ।

वेलकम बैक दोस्तों, मैं हूं आर्जी अनूप। आप सुन रहे हैं 107.1 एफएम रेनबो। और देखिए, एक बार व्हाट्सएप नंबर देते हैं ना तो मैसेजेस की बौछार आ जाती है, और कितना अच्छा लगता है। क्योंकि सुबह सुबह सोमवार के दिन अगर आप अपना समय निकाल कर हमको सुनते हैं और इतना प्यार देते हैं मैसेजेस पर, तो जाहिर सी बात है दोस्तों, मैं क्या कोई भी आर्जी होगा उसको बहुत ज़्यादा खुशी होगी। तो जल्दी से कुछ नाम ले लेता हूँ जो हमारे साथ अभी जुड़ चुके हैं। अंधेरी ईस्ट से डॉक्टर अंजू है, वर्ली से स्नेहा श्रीधनकर है, फिरोज सिगनपुरिया जी हैं, कह रहे हैं गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सभी को। अकोला से जो है विजय घटोल जी है, और झारखंड से भी हमें सुन रहे हैं हजारीबाग ज़िले के रंजन जी, और भी कई नाम हैं। वेड़ापुर से दत्तात्रेय आदत है, और यशवंत अडमुते जी हैं, दीपा पालकर जी है, और पल्लवी हमसे कह रही हैं कि हम जो हैं हर शाम पूरी फैमिली के साथ पंडाल जाते हैं और वहाँ पर हम डांडिया खेलते हैं। क्या बात है पल्लवी। दीपा पालकर जी कह रही है कि हमारे एरिया के विविध देवी माता के पंडाल में रात में जाकर दर्शन लेते हैं, उधर अलग अलग खाने की चीज़ें खाने को मिलती है और गरबा डांडिया का लुत्फ़ उठाते हैं। जी हाँ, खाना मैं कैसे भूल सकता था, क्योंकि ऐसे ही जगहों पर ऐसे पंडाल में जब हम जाते हैं तो एक भक्ति तो होती है, लेकिन साथ ही साथ जो अलग अलग प्रकार के प्रसाद होते हैं उसका भी दोस्तों एक अलग ही मज़ा होता है। तो समझ सकता हूँ मैं दीपा पालकर जी आपकी बात। और जी हाँ, आप सब अपने मैसेजेस का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। तो मैंने आपसे कहा था आज तारीख है 12 अक्टूबर, तो मुड़कर देखते हैं तारीख के पन्नों को। तो दोस्तों, आज का जो दिन है ना, वो साहित्य और कला जगत कि कुछ बेहद अजीम शख्सियतों का बर्थडे मना रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम ऐसे शायर की, जिनकी कलम ने ना हर दिल की बात को बड़ी ही सादगी भरे अंदाज से कागज़ पर उतार दिया। जी हाँ, आज जन्मदिन है उर्दू के महान शायर और हिंदी फिल्मों के जाने माने गीतकार निदा फाजली साहब का। तो 12 अक्टूबर को 1938 में इनका जन्म दिल्ली में हुआ था, और एक जो इनकी लाइन थी वो तो हम

से सभी ने सुनी होगी, कितनी प्यारी लाइन है। कहती है कि घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो यूं कर ले, घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो यूं कर ले, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। क्या बात है। तो दोस्तों, उनकी शायरी जो थी ना, केवल अल्फाजों का खेल नहीं थी, बल्कि इंसानी जज्बे और गंगा जमुनी तहजीब का भी आईना थी। तो उनकी याद में हम आपको कुछ बेहतरीन गाने तो सुनाएंगे ही। अभी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं कांदीवली से कश्मीरा शास्त्री जी, भी कह रही हैं कि आपके गाने जो हैं बहुत प्यारे हैं जो आप बजा रहे हैं। थैंक यू कश्मीरा जी, कश्मीरा शास्त्री जी। और सुनील पांचाल जी हैं नाला सुपारा से, गुड मॉर्निंग कह रहे हैं। गुड मॉर्निंग सुनील जी। और लातूर से दशरथ कदम जी भी हमको सुन रहे हैं अभी। तो गुड मॉर्निंग अभी सभी का। और भी बहुत सारे नाम हैं जो अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इस गाने के उस पार सभी के नाम लेंगे, सभी को अभी से एडवांस में थोड़ा गुड मॉर्निंग भी बोल देता हूँ। चलिए सुनते हैं ये प्यारा सा नगमा।

0: Aswani FM Rainbow 107.1 MHz, musically yours.
1: वेलकम बैक दोस्तों, और आप सुन रहे हैं 107.1 FM रेनबो। मैंने आपसे पूछा था अगर आप भी कहीं नवरात्रि खेलने जा रहे हैं तो मुझे हमारे व्हाट्सएप नंबर पर बताइए, और आप नवरात्रि में और क्या क्या करते हैं ये भी बताइए। हमारा नंबर है 8657661071, 8657661071। जुड़ूंगा मैं आपसे ठीक इस कमर्शियल ब्रेक के बाद।
2: सब चाहते हैं अपना एक मनपसंद घर, और सब चाहते हैं एक किफायती ब्याज दर।
3: कॉस्मोस होम लोन ब्याज दर 7.80% से शुरू।
2: 3 करोड़ रुपए तक का लोन उपलब्ध, कम से कम प्रोसेसिंग फीस 20 साल तक का अवधि,
3: शर्तें लागू। टोल फ्री नंबर 1800-233-0234।
2: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, जीवन बनाए समृद्ध।
4: क्या आपको किसी सरकारी विभाग से जुड़ी कोई शिकायत दर्ज करनी है?
5: तो आपकी सहायता करेगी भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के सीपी ग्राम्स पोर्टल पर समाधान दीदी।
4: समाधान दीदी 22 भारतीय भाषाओं में आपकी बात सुनती और समझती है। आपको बस अपनी शिकायत को बोलना है। समाधान दीदी की AI तकनीक आपकी शिकायत को सीधे सही मंत्रालय तक पहुंचाती है।
5: आज ही www.pjportal.gov.in पर जाएं और अपनी शिकायत दर्ज करें।
4: सारी शिकायतों का समाधान सीपी ग्राम्स की समाधान दीदी।
1: वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं 107.1 FM रेनबो, और मैं हूं कौन, मैं हूं RJ अनूप। और बहुत अच्छा लग रहा है कितने सारे लोग हमसे जुड़ चुके हैं और WhatsApp पर इतने प्यारे प्यारे मैसेज आ रहे हैं। चलिए जल्दी से नाम ले लेता हूं जो जो हमारे साथ आज जुड़ चुके हैं।

पुणे से राकेश माथुर जी हैं, चेंबूर से विजय लक्ष्मी शेट्टी जी हैं, कह रही हैं कि अनूप आप जियो हजारों साल, क्या गाने बजा रहे हैं आप। थैंक यू विजय लक्ष्मी जी, और कितना प्यारा मैसेज था आपका। लातूर से दशरथ कदम जी है, और नांदेड़ महाराष्ट्र से परमेश्वर पांडवे जी है, तिगरेपाड़ा से मिलेश गजानन रौत, श्रेय मिलेश रौत, आर्या मिलेश रौत, योगेश गजानन पाटिल, कुणाल महेश, और फिर वसई से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं मिलिशा पाटिल, और सुरेंद्र जो है ये हमारे लिसनर कह रहे हैं क्या बात है अनूप जी, बहुत अच्छे गाने बजा रहे हो, आगे भी हम आपसे यही उम्मीद करते हैं। सुरेंद्र जी, कोशिश मेरी भी यही रहेगी कि आपको आपकी पसंद के गाने हमेशा सुनाते रहें। आने वाला गाना जो है, इतने सारे मैसेजेस आ रहे हैं ना, समझ नहीं आ रहा कि जाने कहाँ मेरा जिगर गया जी। और आपको ये गाना पसंद है तो व्हाट्सएप करके बताइए कि क्या आपका भी जिगर कहीं चला गया है।

0: बतलाऊंगी।
1: जाने कहां मेरा जिगर गया जी, अभी अभी यही था किधर गया जी।
2: दीपा पालकर जी हमसे कह रही है कि अनूप जी हमारा जिगर हमारे अंदर ही हो रही है, जिगर आपके बेहतरीन गाने सुन रहे, क्या बात है दीपा जी।
1: अरे जाने

वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं 107.1 FM रेनबो। मैं हूं RJ अनूप और हमारे साथ जुड़ चुके हैं विक्रम अठौड़े और सांगली से रीमा नाइक और सांगली से ही संगन नागेची भी और प्रदीप अनंत कृष्णन भी हमसे जुड़ चुके हैं। कह रहे हैं गुड मॉर्निंग प्रदीप जी। और उमरी अकोला से प्रमोद चिंचोलकर जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंजू यादव जो है डॉक्टर, वो हमसे कह रही है कि हमारी सोसाइटी में 3 से 5 दिन का जो है वो माता का कीर्तन होता है और शाम को डांडिया, और कह रही है कि इस साल मैं भी कुछ परफॉर्म कर रही हूँ। तो अंजू जी, आपके परफॉर्मेंस के लिए आपको ऑल द बेस्ट। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं 12 अक्टूबर को जो लोग अपना जन्मदिन मना रहे हैं, तो कुछ बेहद ख़ास शख्सियतों को आज हम याद कर रहे हैं उनके जन्मदिन पर। उनमें से पहला नाम जो है वो ज़िंदगी को अपने शर्तों पर जीने वाली और भारतीय शास्त्रीय कला को अपनी पूरी रूह समर्पित कर देने वाली एक महिला का नाम है। हम बात कर रहे हैं प्रख्यात ओडिसी डांसर और मॉडल प्रतिमा बेदी जी का, जिनका जन्म 12 अक्टूबर 1948 का हुआ। प्रतिमा जी ने न केवल मॉडलिंग की दुनिया में तहलका मचाया बल्कि बंगलुरु के पास नृत्य गांव की स्थापना करके भारतीय शास्त्रीय नृत्य परंपरा को एक नई और आधुनिक दिशा भी दी। उनका जीवन इस बात की मिसाल है कि अगर आपके भीतर कुछ कर गुजरने का जुनून होना दोस्तों, तो आप देखिए, वो तो एक मॉडल थी पर उन्होंने लीक से हटकर भी एक अलग प्रकार का इतिहास रच दिया। तो शत-शत नमन है प्रतिमा बेदी जी को। और दोस्तों, अब हम बात करते हैं भारतीय राजनीति और समाज सेवा के आकाश की एक ऐसी सितारा की जिनका पूरा जीवन सादगी, कर्तव्य निष्ठा और जन सेवा को समर्पित रहा। आज ही के दिन जो है दोस्तों, 12 अक्टूबर 1919 को ग्वालियर की राजमाता जो है विजया राजे सिंधिया जी का जन्म हुआ था। तो राजघराने से ताल्लुक रखने के बावजूद उन्होंने आम जनता के दुखों को अपना समझा और देश के राजनीतिक पटल, कहना सही होगा, पर एक मजबूत स्तंभ बनकर उभरी। सोचिए उस जमाने में जहां महिलाओं का राजनीति में होना कितनी अपने आप में बड़ी बात होती होगी। तो राजमाता विजया राजे सिंधिया जी का जीवन हम सबके लिए बहुत ही ज़्यादा

इंस्पायरिंग है, प्रेरणा स्रोत है। चलिए आज इन सभी व्यक्तित्व को, इन सभी महान जो लोग हैं हमारे जीवन में जिन्होंने अपना योगदान दिया, उनको याद करते हैं, उनको हैप्पी बर्थडे कहते हैं और आगे बढ़ते हैं इस गाने के साथ।

0: व्यापारियों को आर्थिक सहायता करने वाली कर्ज योजना
1: कॉस्मोस स्मॉल बिजनेस लोन इंटरेस्ट रेट सिर्फ 9.25% से शुरू
0: कैश क्रेडिट या टर्म लोन के स्वरूप में 5 करोड़ रुपए तक लोन उपलब्ध शर्तें लागू
1: इंडस्ट्री ट्रेडिंग सर्विस इंडस्ट्री के लिए फायदेमंद कर्ज योजना कॉस्मोस स्मॉल बिजनेस लोन
0: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक एनरिचिंग लाइफ

वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं 107.1 FM रेनबो। दोस्तों, तारीख के पन्नों में आज जहां एक तरफ कुछ जन्मदिनों की हम खुशियां मना रहे हैं, वहीं कुछ ऐसी महान आत्माएं भी हैं जिनकी पुण्यतिथि पर आज पूरा देश उन्हें शिद्दत से याद भी कर रहा है। आज ही के दिन 12 अक्टूबर 1967 को देश के महान स्वतंत्रता सेनानी, प्रखर समाजवादी प्रचारक और राजनेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी का निधन हुआ था। लोहिया साहब भारतीय राजनीति के वे इंसान थे जिन्होंने हमेशा सत्ता से सवाल किए, वैचारिक स्वतंत्रता की बात की और देश के

आदमी, पिछड़ों तथा गरीबों की आवाज़ों को बुलंद किया। उनका सप्त क्रांति का सिद्धांत और अंग्रेजी भाषा की अनिवार्यता के खिलाफ उनका दृष्टिकोण आज भी भारतीय राजनीति शास्त्र का एक अहम हिस्सा है। तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी की पुण्यतिथि पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। इसी के साथ दोस्तों, विज्ञान और कला के क्षेत्र में अपनी अमिट छाप छोड़ देने वाले दो दिग्गजों की भी आज पुण्यतिथि है। आज ही के दिन 1967 में प्रसिद्ध भारतीय रसायन शास्त्री मतलब केमिस्ट कुमारनाथ बागची जी का निधन हुआ था। उन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किए थे। इसके साथ ही मराठी सिनेमा और कला जगत के जाने माने निर्देशक मुरलीधर कापड़ी, जिनका मराठी रंगमंच और फिल्मों में बहुत ज़्यादा बड़ा योगदान है, वो भी हमें 12 अक्टूबर 2006 को छोड़कर चले गए। तो इन दोनों विभूतियों के कार्यों को आज आकाशवाणी परिवार और हमारे सभी श्रोता परिवार की ओर से आदरणीय श्रद्धांजलि।

इशारा हो गया। वेलकम बैक दोस्तों, जल्दी से कुछ नाम ले लेते हैं। इतने सारे व्हाट्सएप मैसेजेस आ रहे हैं और इतने प्यारे प्यारे मैसेजेस आ रहे हैं। लोग अपने नवरात्रि के जो रोज़मर्रा के काम है, जो उनकी शाम की

गतिविधियां होती है वो सब हमसे कह रही है। और अभी जुड़ चुके हैं हमसे पुणे से प्रमोद करखाने जी हैं, दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुकी है कृति, और दादर से बाबा हमारे साथ जुड़ चुके हैं सुबह लक्ष्मी मस्तकार, जो है वो कह रही है कि एन्जॉइंग योर सॉन्ग्स आर जे अनूप, थैंक यू एंड विल बी बैक इस गाने के बाद।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: वेलकम बैक दोस्तों, 107.1 एफएम रेनबो पर आप सुन रहे हैं मस्त मुंबई शो का नाम है जो, और मैं हूं कौन, मैं हूं आरजे अनूप। जुड़ चुके हैं हमारे साथ जलगांव से आर्यन सोमवंशी और शुभदा जो है वो कह रही बहुत ही प्यारी प्लेलिस्ट है अनूप, थैंक यू शुभदा जी। और इसी के साथ साथ अंजू जो है, अंजू हमसे ये कह रही है कि अनूप जी आपने मेरा नाम ही गलत ले लिया, तो क्षमा चाहता हूँ अंजू जी। मैंने अंजू यादव बोल दिया था पर क्षमा चाहता हूँ अंजू।

अब रजनी जी है, यादव जी नहीं है। और एक बहुत प्यारा मैसेज आया हमारे पास, फिरोज सिगन पोरिया जी ने हमें कहा है कि जब आपने वो एक गाना बजाया था उससे मेरी कुछ यादें ताज़ा हो गई। मैंने पूछा उनसे कौन सा गाना, तो उन्होंने ये कहा कि एक दफ़ा जब वो लता दीदी के घर पर गए थे तो लता दीदी ने उनसे पूछा कि आपको मेरा कौन सा गाना बहुत अच्छा लगता है, तो मैंने उनसे कहा कि आएगा आने वाला। तो उन्होंने मुझे एक बहुत ही प्यारी सी मुस्कान दी जो मैं आज तक भुला नहीं पाया हूँ। फिरोज जी, पता नहीं क्या कहूँ, सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि बेहद खुशनसीब हैं आप। तो इस लता मंगेशकर जो हमारी दीदी हैं, उनकी प्यारी सी जो याद आपने साझा की है, इस बात पर हो जाए एक लता दीदी का ही गाना।

0: अपनी पसंद की कोई भी कार ले, कॉस्मोस कार लोन है ना।
1: कार लोन पर 3 करोड़ रुपए तक उपलब्ध, ब्याज दर 8% और अवधि 7 साल तक, शर्तें लागू।
0: सुहाना होगा सफर कॉस्मोस कार लोन के साथ।
1: आज ही नजदीकी ब्रांच में संपर्क करें। कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, जीवन करे समृद्ध।

वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं मस्त मुंबई, और मस्त मुंबई का सफ़र अब यहीं पर ख़त्म करने का समय हो चला है दोस्तों। मैं हूं आरजे अनु, पर कहीं मत जाइएगा, बने रहिएगा। ठीक 10 बजे मैं आपके सामने लेकर आऊँगा हिंदी के कुछ मुख्य समाचारों की हेडलाइंस, और उसके बाद हमारा शो आएगा नमस्ते भारत, जहां मैं आपको आज सुनाऊंगा एक ऐसे महान भारतीय क्रिकेटर की कहानी जिसे सही मायने में हमारे देश का पहला लिटिल मास्टर कहना शायद सही ही होगा। तो अगर आप गेस कर पा रहे हैं कि मैं किस महान क्रिकेटर की बात कर रहा हूं, चलिए एक छोटी सी हिंट देता हूं। यह क्रिकेटर जो है, इनका जन्म मुंबई में हुआ था और बेहद शानदार बल्लेबाजी के लिए जाने जाते थे। आज उनका जन्मदिन भी है, तो अगर आप समझ गए हैं मैं किन की बात कर रहा हूँ तो तुरंत हमें बताइए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर, जो है 8657661071। आपके जवाबों का इंतज़ार होगा। तो चलिए इस खूबसूरत गाने के उस पार हम मिलेंगे हिंदी में कुछ मुख्य समाचार की हेडलाइन से, उसके बाद हम जुड़ेंगे आपसे। शो का नाम होगा नमस्ते भारत। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।

वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं 107.1 FM रेनबो। और अब वक्त हो चला है हिंदी में मुख्य समाचारों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल चेन्नई में IIT मद्रास में आयोजित कार्यक्रम में 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया और आधारशिला रखी। इन परियोजनाओं में सड़क और रेल परिवहन, बंदरगाह अवसंरचना, पेट्रोलियम तथा वैज्ञानिक अनुसंधान से जुड़ी परियोजनाएं शामिल हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है कि शांतिपूर्ण ढंग से एकत्रित लोगों को अवैध रूप से हिरासत में न लिया जाए और यातायात सुचारू रूप से जारी रखा जाए। न्यायालय ने दिल्ली में बैरिकेडिंग व्यवस्था की समीक्षा करने, मेट्रो सेवाएं निर्धारित समय सारणी के अनुसार संचालित करने और इंटरनेट सेवाएं निर्बाध बनाए रखने को भी कहा है। कोच्चि स्थित कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड में निर्मित तीसरे पनडुब्बी रोधी युद्धपोत मंगरोल को आज मुंबई के नेवल डॉकयार्ड में भारतीय नौसेना में शामिल किया जा रहा है। समारोह की अध्यक्षता पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ वाइस एडमिरल संजय वात्स्यायन कर रहे हैं। और अंत में खेल समाचार। क्रिकेट में कल रात इंदौर के होलकर स्टेडियम में तीसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में वेस्टइंडीज को भारत ने 14 रनों से हरा दिया। इस जीत के साथ भारत 5 मैचों की श्रृंखला में 2-1 से आगे हो गया है। श्रृंखला का चौथा मैच 14 अक्टूबर को हैदराबाद के राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेला जाएगा। इसी के साथ समाचार समाप्त।

वेलकम बैक दोस्तों, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर मैं हूँ आरजे अनूप, और जैसा कि अनूप की प्रथा है, स्वागत करूँगा आप सभी का एक मुस्कुराते हुए प्रणाम के साथ। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का 107.1 एफएम रेनबो, और शो का नाम है नमस्ते भारत। आज तारीख है 12 अक्टूबर 2026, और उम्मीद है मुंबई की सुहानी सुबह में आप सभी पूरी तरीके से अब तरोताज़ा हो चुके होंगे, और काफ़ी लोगों ने तो अपने दिन की एक बेहतरीन शुरुआत भी कर दी होगी। तो चाय की चुस्कियों के साथ तैयार हो जाइए, क्योंकि आज का ये जो सेगमेंट है ना दोस्तों, इसमें हम खेल के मैदान से जुड़ी एक ऐसी महान शख्सियत को याद करने वाले हैं, जिनका नाम ना भारतीय क्रिकेट के इतिहास में कहीं बेहद सुनहरे अक्षरों से लिखा जा चुका है। मैंने आपसे पूछा था पिछले सेगमेंट में कि अगर आप समझ चुके हैं मैं आज किस उस भारतीय महान क्रिकेटर के जन्मदिन के उपलक्ष में आपके सामने उनकी कहानी प्रस्तुत करने वाला हूं, तो मुझे व्हाट्सएप कर बताइए। हमारा नंबर है 8657661071। बेहद इंटरेस्टिंग होने वाली है उनकी कहानी और किस्से, तो कहीं मत जाइएगा, जुड़े रहिए एफएम रेनबो के साथ।

वेलकम बैक दोस्तों, मैं हूं आरजे अनूप और आप सुन रहे हैं 107.1 एफएम रेनबो पर नमस्ते भारत। मैंने आपसे पूछा था आज किस महान भारतीय क्रिकेटर का जन्मदिन है जिनका संबंध मुंबई से भी रहा है, तो काफ़ी लोगों ने सही जवाब दिया है और सबसे पहले सही जवाब देने वालों में हैं वैदेही और दीपा पालकर जी। और जी हाँ, सही जवाब है दोस्तों विजय मर्चेंट जी का। पर काफ़ी दिलचस्प बात यह है कि बहुत सारे लोगों ने हमें यह भी कहा है कि आज जो है क्रिकेटर रिंकू सिंह जी का भी बर्थडे है। जैसे स्वरा कांडी जी ने हमें कहा है, फिरोज सिगनपुरिया जी ने हमें ये कहा है, तो क्या बात है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल जिन्होंने सही जवाब दिया और अ वेरी हैप्पी बर्थडे रिंकू सिंह जी। तो दोस्तों आज तारीख है 12 अक्टूबर और आज ही के दिन यानी 1911 में माया नगरी मुंबई, मतलब तब तो हम इसे बॉम्बे कहा करते थे, एक ऐसे दिग्गज बल्लेबाज का जन्म हुआ ना जिसने भारतीय क्रिकेट का, अगर जिसे हम भारतीय क्रिकेट का ओरिजिनल मास्टर ब्लास्टर बोल देना तो शायद वो गलत नहीं होगा। बात हम कर रहे थे, जो काफ़ी लोगों ने सही भी गेस किया है, महान क्रिकेटर विजय मर्चेंट जी की। विजय मर्चेंट जी जो थे उनका असली नाम था विजय सिंह माधव।

0: जी मर्चेंट, और बॉम्बे के एक प्रतिष्ठित परिवार में जन्मे विजय मर्चेंट को बचपन से ही क्रिकेट का गहरा लगाव था। उन्होंने अपनी शानदार तकनीक और धैर्य के दम पर कॉलेज के दिनों से ही घरेलू क्रिकेट में तहलका मचाना शुरू कर दिया था, और वो जल्द ही पूरी मुंबई मतलब बॉम्बे के क्रिकेट के चमकते सितारे बन गए। और बात करेंगे उनसे ठीक इस गाने के बाद।
1: बाजू बाबू।

0: Akashwani FM Rainbow 107.1 MHz, musically yours.
1: वेलकम बैक दोस्तों, 107.1 FM रेनबो पर आप सुन रहे हैं नमस्ते भारत। हम बात कर रहे हैं आज भारतीय क्रिकेट इतिहास के लेजेंडरी नाम विजय मर्चेंट जी का, और काफ़ी लोगों ने सही जवाब दिया है। पंकज जी जो हैं महोट से, उन्होंने सही जवाब दिया है, और इंदौर से अजय साखरे जी हैं, उन्होंने भी सही जवाब दिया है। और सुरेंद्र कह रहे हैं हमें मैसेज में कि आज हार्दिक पांड्या जी का भी जन्मदिन है, तो सुरेंद्र जी थोड़ा एक दिन से आप चूक चुके हैं यहाँ पर। हार्दिक पांड्या जी का जन्मदिन जो था वो 11 अक्टूबर मतलब कल था, तो कोई बात नहीं, होता है। और सर तो हम सभी का चकरा जाता है कभी कभी, क्या 11 क्या 12, पर चलिए ठीक है। इसी बात पर आज हम अपने क्रिकेटर्स को याद तो कर रहे हैं कितने प्यार से। दोस्तों विजय मर्चेंट जी की बल्लेबाजी की सबसे बड़ी खूबी थी

0: उनकी क्लासिकल तकनीक और क्रीज पर जो था उनका गजब का एक ठहराव। कहा जाता है कि उस दौर में उनकी तकनीक इतनी शानदार थी कि दुनिया भर के गेंदबाज उनका विकेट लेने के लिए तरस जाते थे। भले ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने सिर्फ 10 ही टेस्ट मैच खेले हों, क्योंकि उनका अधिकांश करियर दूसरे विश्व युद्ध की भेंट चढ़ गया था, लेकिन प्रथम श्रेणी मतलब फर्स्ट क्लास क्रिकेट में उन्होंने जो रिकॉर्ड बनाए वे आज भी हैरान कर देने वाले हैं। उन्होंने 150 प्रथम श्रेणी मैचों में 71.64 की शानदार औसत से करीब 13,470 रन बनाए दोस्तों, जिनमें 45 शतक शामिल थे। क्या बात है, सर डॉन ब्रेडमैन के बाद प्रथम श्रेणी क्रिकेट में सबसे ज़्यादा औसत विजय मर्चेंट जी के नाम पर ही दर्ज है। क्या बात है, इस महान भारतीय क्रिकेटर को हमारा सलाम इस बात पर। और जो सुरेंद्र जी को थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया था, थोड़ा क्यूट कन्फ्यूजन था, और शायद से ये गाना बहुत सूट करेगा इस कन्फ्यूजन पर।
1: Maler, champion. Maler, champion.

तुझे सूरज कहूँ या चंदा, इस गाने की फरमाइश की है सुरेंद्र ने, जिन्होंने आज बहुत ही प्यारी सी एक मिस्टेक कर दी। हार्दिक पांड्या जी का जन्मदिन हमें बताया, पर नहीं, आज विजय मर्चेंट जी का जन्मदिन है सुरेंद्र जी। चलिए इस बात पर ही गाना हो जाए।

वेलकम बैक दोस्तों, हम आज बात कर रहे हैं लेजेंडरी क्रिकेटर विजय मर्चेंट जी की। उसके पहले बस ये बताना चाहूँगा कि काफ़ी लोग हमसे जुड़ चुके हैं और सब कह रहे हैं कि विजय मर्चेंट जी के बारे में जानकर बहुत अच्छा लग रहा है। महोट से पंकज जी है, कह रहे हैं कि अच्छी जानकारी आप दे रहे हैं। इंदौर से अजय साखरे जी हैं, वो कह रहे हैं कि बेहतरीन भारतीय क्रिकेटर थे विजय मर्चेंट जी। बिल्कुल सही बात है। और दोस्तों, विजय मर्चेंट जी जो थे, उनकी जुझारू क्षमता का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि साल 1936 के इंग्लैंड के दौरे पर उन्होंने रनों का अंबार लगा दिया। सोचिए, 1936, जिसके लिए उन्हें विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर भी चुना गया। और तो और, उनके नाम एक ऐसा रिकॉर्ड है दोस्तों जो आज भी शाम से कायम है। विजय मर्चेंट भारत की ओर से टेस्ट क्रिकेट में शतक लगाने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी है। उन्होंने नवंबर 1951 में दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान पर इंग्लैंड के खिलाफ 40 साल और 21 दिन की उम्र में 154 रनों की ऐतिहासिक पारी खेली। क्या बात है, यही पारी उनके अंतर्राष्ट्रीय करियर की दोस्तों आखिरी पारी भी साबित हुई, क्योंकि फील्डिंग के दौरान कंधे पर लगी चोट ने उन्हें हमेशा के लिए क्रिकेट से अलविदा कहने पर मजबूर कर दिया। तो और बात करेंगे हम कुछ विजय मर्चेंट जी के क्रिकेटिंग किस्सों को लेकर। फिलहाल वक्त हो चला एक गाने का, जिसकी गुजारिश की है इंदौर से अजय साखरे जी ने।

वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं 107.1 एफएम रेनबो। मैं हूं कौन, मैं हूं आपका प्यारा आरजे अनूप। एक स्पेशल मैसेज, अगर मैं नहीं पढ़ूंगा तो मुझे थोड़ा बुरा लगेगा। मैसेज है चेंबूर से विजय लक्ष्मी शेट्टी जी का। कह रही हैं कि मैं 72 साल की हूं अनूप, और आपका जो पूरा प्रोग्राम है आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और बहुत खुशी हो रही है कि पुराने गाने मुझे सुनने मिल रहे हैं। और कह रही हैं कि नवरात्रि के दिनों में जब हम मैंगलोर में थे तो हम सभी भगवानों से पूजा करते थे उनकी, और वेज फूड बनाते थे, खीर बनाते थे एक प्रकार की। और जो लास्ट दिन होता है दशहरा, उस दिन हम अपनी सारी किताबें, स्पेशली मैथ्स और साइंस की जो है, उनकी पूजा करते थे, सबकी अच्छी सेहत और प्रॉस्पेरिटी और शांति के लिए भी। तो फिर क्या बात है विजय लक्ष्मी जी, उन्होंने एक अपनी आवाज़ में कुछ गाकर भी हम तक भेजा है व्हाट्सएप पर। क्षमा चाहूँगा विजय लक्ष्मी जी, मैं प्ले तो नहीं कर पाऊँगा ये, क्योंकि इजाज़त नहीं है उस चीज़ की हमें। पर बहुत अच्छा लगा कि आपने इतना कष्ट हमारे लिए उठाया और मेरे शो को आप इतना सराह रही हैं। आपके लिए यह खास गाना।

0: सब चाहते हैं अपना एक मनपसंद घर और सब चाहते हैं एक किफायती ब्याज दर।
1: कॉस्मोस होम लोन ब्याज दर 7.80% से शुरू।
0: 3 करोड़ रुपए तक का लोन उपलब्ध। कम से कम प्रोसेसिंग फीस 20 साल तक का अवधि।
1: शर्तें लागू। टोल फ्री नंबर 1800-233-0234।
0: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, जीवन बनाए समृद्ध।
2: वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं 107.1 एफएम रेनबो। और सांगली से छाया जी ने हमें मैसेज किया है, कह रही है प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है और आपकी जीवी दानकारी जो है विजय मर्चेंट जी के ऊपर वो भी बहुत अच्छी लग रही है। सेम मैसेज किया है शुभदा जी ने। वैदेही जो है कह रही हैं कि अनूप जी आज आप मधुमति के गाने कुछ ज़्यादा ही बजा रहे हो, कुछ स्पेशल कारण है क्या? तो वैदेही जी ऐसा बिल्कुल नहीं है, शायद ये योगा योग ही हो। पर बहुत अच्छा लगता है जब हमारे लिसनर्स जो है इतनी बारीकियों से कुछ चीज़ें पकड़ लेते हैं हमारी, जो कभी कभी शायद हमारे भी ध्यान में नहीं आता। पर अच्छी बात है, शायद इसी कारण आपका और हमारा नाता यूं ही बना रहता है और थोड़ा मजाक और टांग खींचना तो चलते रहना चाहिए। कीप इट कमिंग, सारे लिसनर्स को कहना चाहूँगा प्लीज़। दोस्तों, क्रिकेट के मैदान को अलविदा कहने के बाद भी ना विजय मर्चेंट जी का खेल से नाटा नहीं टूटा। उन्होंने एक नेशनल सिलेक्टर, बेहतरीन क्रिकेट प्रशासक और एक जाने माने ब्रॉडकास्टर के रूप में भारतीय क्रिकेट को एक नई दिशा दी। उनका रेडियो कार्यक्रम क्रिकेट विद विजय मर्चेंट अपने दौर के बेहद लोकप्रिय कार्यक्रमों में एक माना जाता था। इसके साथ ही वे दिव्यांगों और ज़रूरतमंदों के कल्याण के लिए सामाजिक कार्यों में भी पूरी तन्मयता से जुड़े रहे। खेल के प्रति उनकी ईमानदारी और मैदान के बाहर उनका जेंटलमैन वाला बर्ताव उन्हें हर दिल का अजीज

शख्सियत बनाता चला गया। और दोस्तों 27 अक्टूबर 1987 को उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया, लेकिन उनकी यादें आज भी भारतीय क्रिकेट के इतिहास में अमर है।

जी हाँ दोस्तों, वक्त हो चला है अब नमस्ते भारत पर आपसे अलविदा कहने का। ये घड़ी मुझे थोड़ी सी दुखी कर देती है, पर क्या करें। दोस्तों आज हमने बात की विजय मर्चेंट जी की, जो हमारे एक बहुत ही लेजेंडरी क्रिकेटर रह चुके हैं। और ऐसे थे हमारे महान विजय मर्चेंट जी, जिनकी क्लास और कमिटमेंट आज भी ना ना केवल हमारे युवा क्रिकेटर बल्कि जो हमारे आने वाले क्रिकेटर्स हैं उनको भी हमेशा एक मिसाल के तौर पर प्रोत्साहित करता रहेगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको आज की यह जानकारी पसंद आई होगी। तो चलिए, आकाशवाणी 107.1 FM रेनबो मुंबई पर अब मेरा सफ़र यहीं समाप्त करता हूँ दोस्तों। मैं हूँ आरजे अनूप, बहुत जल्द फिर मिलेंगे। तब तक अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखिए, मस्त रहिए, और जैसा कि अनूप की प्रथा है, विदा लूंगा आपसे एक मुस्कुराते हुए प्रणाम के साथ।

नमस्कार, आइए सुनते हैं अभी के ताज़ा समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल चेन्नई में जयगोपाल गरुंडिया हिंदू विद्यालय के स्वर्ण जयंती समारोह को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत के युवाओं में दुनिया की उभरती चुनौतियों के नए और बेहतर समाधान देने की क्षमता है। समाचार में आगे, कोच्चि स्थित कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड में निर्मित तीसरे पनडुब्बी रोधी युद्धपोत मंगरोल को आज मुंबई के नेवल डॉकयार्ड में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। यह पोत पूर्ववर्ती INS मंगरोल की विरासत को आगे बढ़ाता है। समाचार में आगे, पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने बताया है कि हुरमुज जल डमरू मध्य में मार्शल द्वीप के ध्वज वाले टैंकर MT वाल्थेरा पर हुए हमले में सभी 11 भारतीय नाविक सुरक्षित हैं। ओमान के सोहार एक रेंज में भारतीय नाविकों को ले जा रहे टैंकर MT पेट्रो डॉल्फिन पर भी ड्रोन से हमला किया गया। समाचार के अंत में, सऊदी अरब की राजधानी रियाद के किंग खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर दूसरे हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 11 अन्य घायल हो गए। इससे एक दिन पहले हुए हमले में 13 लोगों की मौत हुई थी और 308 लोग घायल हुए थे। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। सुनते रहिए आकाशवाणी मुंबई का FM रेनबो चैनल, म्यूजिकली योर्स।

जी हाँ, आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है कार्यक्रम ब्रेक फ्री में। हिंदुस्तान के साथ नाचने, हिंदुस्तान के साथ गाने आ गया है डॉक्टर निखिल शास ने। सबसे पहले आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। और जो है आज हम बात करने वाले हैं, ये जो मैं और मेरा होता है, तो क्या हम इससे परे जा सकते हैं या नहीं, आपको क्या लगता है हमें ज़रूर बताइए। और बातें करेंगे कि और भी कई सारी ढेर सारी बातें करनी है। आप सभी के गुड मॉर्निंग मैसेजेस मुझे मिल रहे हैं, आप सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। आइए एंजॉय करते हैं, माई भवानी को याद करते हैं और नवरात्रि में देवी को वंदन करते हैं। सुखविंदर सुखी जी की आवाज़ में अगला गीत, श्रेया घोषाल जी भी साथ में हैं। आइए एंजॉय करते हैं अगला गीत, फिल्म तान्हा जी से।

0: Shining in the setting sun like a pearl upon the ocean. Come and feel me, come on, heal me.
1: जी हाँ दोस्तों, आज हम ब्रेक फ्री में थोड़ी प्यार भरी बातें करने वाले हैं. जी हाँ, अक्सर हमें हमसे और हमारी बातों से, यानी मैं और मेरा से बहुत प्यार होता है, लगाव होता है, तो उस पर भी बातें करेंगे. और आप सभी को प्यार भरा जो है गुड मॉर्निंग, सुप्रभात. जी हाँ, विजय माहोबिया, शुभलक्ष्मी मस्तकर, विजेंद्र घाटोल अकोला से, दीपा पालकर, शुभदा, और हमारे कई सारे जो दोस्त हैं पूना से, हमारे राकेश माथुर कहिए, फिरोज सिंगनपुरिया, आप सभी के संदेश मिल रहे हैं. वेरी गुड मॉर्निंग पंकज मोहोड़, मज़ा आ रहा है. यस, हमें भी आपके संग में मज़ा आ रहा है, एंजॉय कर रहे हैं. तो आइए प्रेम से जुड़ी बातें करते हैं. और क्या प्रेम सिर्फ मेरा और मुझ तक ही सीमित रखना है, आपको क्या लगता है? जी हाँ, 8657661071 पर हमें बताइए. आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई केंद्र का FM रेनबो चैनल. FM रेनबो का ये प्रसारण आप आकाशवाणी मुंबई

0: जी हाँ दोस्तों, कार्यक्रम चल रहा है ब्रेक फ्री में, यानी आरजे डॉक्टर निखिल विद्या हरेंद्र शास्त्री के संग। और दोस्तों, हमें मुंबई में कहिए या महाराष्ट्र में कहिए, अक्सर कहा जाता है कि अरे अपने काम पर ध्यान दो, फोकस करो, दूसरे का क्या करना है, वो तुम्हारा लुकआउट नहीं है, वो और ये तुम्हारा काम नहीं है, दूसरा क्या करना है, अपने काम से काम रखो और अपने काम पर फोकस करो। और बहुत सही है ये बात, बहुत फ़ायदा होता है, बहुत ही प्रैक्टिकल बात है। और जी हाँ, हम अक्सर ऐसे ही जीते हैं, पर क्या इस दृष्टिकोण कहिए या इस नज़रिए से क्या हम मैं और मेरा में ही तो कहीं उलझ नहीं जाते? आपको क्या लगता है, मतलब मैं मेरा में उलझ जाना या खुद को सीमित करना, क्या ये सही बात है या ये सीलिंग भी, ग्लास सीलिंग भी हमें तोड़नी होगी, ब्रेक फ्री करना होगा अपने आप को? अगर करना होगा तो कैसे करें, इसके बारे में आपको हमें बताना है। मैं और मेरा से बाहर कैसे जाएं, या फिर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको क्या लगता है, दोनों चलेंगे? हाँ, वी आर ओपन, वी हैव टू डिस्कस, वी हैव टू एन्जॉय अवर सेल्फ। ओके, 8657661071 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। तो आइए सुनते एक छोटा सा विज्ञापन।
1: अपनी पसंद की कोई भी कार ले, कॉस्मोस कार लोन है ना,
2: कार लोन पर 3 करोड़ रुपए तक उपलब्ध, ब्याज दर 8% और अवधि 7 साल तक, शर्तें लागू।
1: सुहाना होगा सफर कॉस्मोस कार लोन के साथ।
2: आज ही नजदीकी ब्रांच में संपर्क करें, कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, जीवन करे समृद्ध।
3: मग शुरू करूया इन्वेस्टिंग चा धड़ा।

जी हाँ दोस्तों, ब्रेक फ्री में बातें चल रही है। मैं और मेरा से ब्रेक फ्री होना। दीपा पालकर लिखती है कि खुद से प्रेम करना बहुत ही योग्य है और अच्छा है, क्योंकि उससे हम खुश रहते हैं। और उसके बाद हमारे देश से, नेचर है, उससे प्रेम करना चाहिए। इससे ग्लोबल वार्मिंग जैसी जो समस्या है उसका समाधान हो जाएगा। हमारे जो दोस्त है बाबा, गुड मॉर्निंग कह रहे हैं। और अंकित ने कहा जी वो सहमत है, आई मी और माई।

का ये जो है कोविड जैसी महामारी है जो सब जगह फैल रही है, सब जन अपना ही देख रहे हैं। तो एक रिसेंटली एक कॉन्फ्रेंस में गया था मैं, तो लकी ड्रॉ रहता है आजकल तो सब जगह। तो दो लकी ड्रॉ होते हैं, एक लकी ड्रॉ में आम गिफ्ट मिलता है और एक बम्पर लकी ड्रॉ होता है। तो 27-28 ऐसे लकी ड्रॉ थे और डेलीगेट्स भी बहुत थे। तो सब लोग को लगता है कि वो जब आम लकी ड्रॉ निकले तब मेरा नाम ना आए, बड़ा बम्पर धमाका वाला लकी ड्रॉ है तब मेरा नाम आए और सब लोग मेरे लिए ताली बजाए। तो जी हाँ, बहुत मज़ेदार बात होती है कि हम हमारा नाम सुनना चाहते हैं और कई लोगों के साथ नाम जो है वो आते हैं, वो बम्पर गिफ्ट लेके जाते हैं, पर क्या हम उनके लिए ताली बजाते हैं या नहीं? जी हाँ, बहुत कम जन ऐसे होते हैं कि जो पहचान का नहीं है, हमारा दोस्त है तो हम उछल कूद के ताली बजा के सीटी बजा के सेलिब्रेट करते हैं, पर क्या सिर्फ मैं और मेरा तक सीमित रहना चाहिए या कभी किसी अनजान के लिए भी ताली बजाना, उनकी प्रशंसा करना, सराहना करना सही नहीं है? आपको क्या लगता है? थोड़ा सा सोच में ट्विस्ट लाने की कोशिश करेंगे। तो उसका आसान तरीका है सोच में ट्विस्ट लाने का, कि अपने कुर्सी से उठना चाहिए। जी हाँ, कुर्सी छोड़ना बहुत बड़ी बात है। तो कुर्सी से उठिए और अगले गीत पे थोड़ा सा पैरों को ट्विस्ट कीजिए और एन्जॉय कीजिए, क्योंकि लव आजकल और कल

0: जी हाँ दोस्तों, ब्रेक फ्री में बातें चल रही है, मैं और मेरा से ब्रेक फ्री होने के, और आप सभी के प्यारे प्यारे संदेश हम तक पहुंच रहे हैं। और एक बात है कि हम सभी जन जो है, हम सभी लोगों को बड़ा होना है, लाइफ में कुछ बड़ा करना है, पर क्या इस दौड़ में हम कुछ खो तो नहीं रहे? तो ऐसा कभी कभी सवाल दिल में आता है जब खाली रहता हूँ और मोबाइल में नहीं देखता, तभी आता है। तो तभी एक छोटी सी कहानी याद आती है कि जो हाथी है बहुत बड़ा है, पर देखा जाए तो उससे मजदूरी करवाते हैं, और अगर चींटी जो एकदम छोटी है वो गुड़ खा के शक्कर खा के चली जाती है, तो क्या ज़्यादा फायदेमंद है? आपको क्या लगता है?
1: आपके दिल की हर ख्वाहिश पूरी करने वाली फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम, सुरक्षित बेस्ट इंटरेस्ट रेट और एफडी के ढेर सारे विकल्प।
2: इंटरेस्ट रेट सर्वसाधारण ग्राहक के लिए 7.10%, सीनियर सिटीजन के लिए 7.30% मंथली और क्वार्टरली इंटरेस्ट ऑप्शंस के साथ 16 महीने, शर्तें लागू।
1: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिच योर लाइफ।
3: नऊ दिवस करू या देवीच्या नऊ रूपांची आराधना।
4: अहो, पण आपल्या आजूबाजूला ही आहेत की कर्तृत्व, संघर्ष आणि जिद्दीनं आपलं वेगळं विश्व घडवणाऱ्या नवदुर्गा।
3: कुणी प्रतिकूल परिस्थितीत दोन हात करतय, कुणी आपल्या कर्तृत्वाने नवा आकाश गाठतय,
4: कुणी समाजासाठी झटतय, तर कुणी आपल्या स्वप्नांना नवी दिशा देतय।
3: त्यांच्या संघर्षाची कहाणी, त्यांच्या यशाचा प्रवास
4: आणि त्यांच्या अनुभवातून मिळणारी प्रेरणा।
3: या नवरात्रीत भेटूया अशाच काही प्रेरणादायी स्त्रियांना ज्यांच्यात आहे दुर्गेची शक्ती,
4: कर्तृत्वाची ओळख आणि स्वप्नांना गवसणी घालण्याची जिद्द।
3: हॅशटॅग नवदुर्गा या कार्यक्रमात
4: दिनांक 11 ऑक्टोबर ते 20 ऑक्टोबर सकाळी 11 वाजता आकाशवाणी मुंबईच्या 100.1 FM गोल्ड वाहिनीवर
3: हॅशटॅग नवदुर्गा उत्सव प्रेरणेचा।
5: चली चली चली गोकुल की।

जी हाँ, बहुत ही प्यारे प्यारे संदेश आप सभी के मिल रहे हैं। तो अशोक पाटिल वरीय से लिखते हैं कि सकारात्मक सोच रखनी है और जो है दूसरों को खुशी देनी चाहिए और गम नहीं देना चाहिए। आपने बहुत बढ़िया बात कही। दीपा पालकर लिखती है कि कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि कोशिश नहीं की तो हमारी लॉटरी कभी नहीं लगेगी। तो सभी के लिए ताली बजानी चाहिए, हम जीते या न जीते किसी भी दौड़ में। तो अच्छा, पॉजिटिव सकारात्मक रहना चाहिए। और हमारे दोस्त ने एक बहुत ही प्यारा संदेश लिखा है कि यश शिंदे ने लिखा है कि हम समाजशील प्राणी हैं और मैं खुद सब कर सकता हूँ। अगर हमें ऐसा लगता है तो ये हमारा सिर्फ एक भ्रम है। इंदौर से हमारे दोस्त अजय साखरे कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं, यशवंत आडमुठे भी शामिल हो चुके हैं, प्रदीप अनंत कृष्णन भी हमारे साथ शामिल हो चुके। और शुभलक्ष्मी मस्तकर लिखती है कि जब उनके सहेलियों का गेट टुगेदर होता है तो वो हाउजी गेम जो होता है, लकी नंबर वाला गेम खेलती है और ज़्यादा करके उन्हें प्राइज लगता है। तो जी हाँ, शुभलक्ष्मी मैडम के पास हमें बैठना चाहिए, तो थोड़ा बहुत लक हमारे पास भी आ जाए और हमारा भी लकी ड्रॉ में नंबर आ जाए। कोई बात नहीं। तो बातें चल रही थी मैं और मेरा के बारे में। तो बहुत ही खूबसूरत चीज़, उस कॉन्फ्रेंस में एक मेरे पड़ोस में जो डेलीगेट बैठे थी, उन्होंने कहा कि जब हम दूसरों के लिए ताली बजाते हैं तो जी हाँ, तो जो है हमें खुशी तो होती है, पर जब हम दूसरे के लिए ताली बजाते हैं तो एक और बात और एक और घटना घटती है। वो है कि हम अपने हाथों की जो लकीरें हैं, रेखाएं हैं, वो बदल जाती है। जी हाँ, वो पॉजिटिविटी आती है कि हार जीत चलती रहती है, पर एक दूसरे की प्रशंसा करना, पॉजिटिव आउटलुक रखना बहुत ज़रूरी है। तो जी हाँ, हम एक दूसरे को मदद करेंगे, हम एक दूसरे को जो है वो प्रोत्साहित करेंगे, और जब हम दूसरों के लिए ताली बजाएंगे तो जब हम किसी और को गुलाब देते हैं तो उसका थोड़ा बहुत गंध सुगंध हमारे हाथों में लग ही जाता है, वैसे हमारे हाथों की जो रेखाएं हैं वो भी बदलेगी और हम होंगे कामयाब एक दिन। जी हाँ, तो इसी नोट के साथ जो है ब्रेक फ्री कार्यक्रम जो है समापन

और बढ़ रहा है। तो ठीक 12 बजे आप सुनेंगे न्यूज़ हेडलाइंस सुनेंगे हिंदी में, उसके बाद हमारा और आपका जो पसंदीदा कार्यक्रम है म्यूज़िक कैफ़े, तो वो जारी होगा। और अपना कॉफ़ी या चाय का कप रेडी रखिए, साथ में चाय लेते हैं। अब वैसे अभी अभी कॉफ़ी पी मैंने, तो आइए कैलाश खेर की आवाज़ में बाहु

वो जब आगे जाता है उसे सर पे उठाते हैं। हाँ, हम देखते हैं रजनी सर की एंट्री पे कितने लोग खुश होते हैं। तो बस यही खुशी हमारे सक्सेस से जो है हमारे दोस्तों को या जिनकी पहचान नहीं है उन्हें भी मिल पाए हमारे वजह से, तो उससे बड़ा क्या होगा। आइए एंजॉय करते हैं ये ट्रैक, सुपरहिट फिल्म बाहुबली।

जी हाँ, हमारे जो श्रोता हैं संजय दर्शन मलाड से, उन्होंने बहुत ही प्यारी बात अभी कही कि हमारी जिम्मेदारियों से हम ब्रेक फ्री नहीं हो सकते। तो जी हाँ, मैं मेरा के साथ जो हमारी घर घर की हो या बाहर ऑफिस की ड्यूटी है, तो जिम्मेदारी से तो ब्रेक फ्री नहीं हो सकते, क्योंकि जब हम वो ड्यूटी करेंगे तो वो ड्यूटी या वो अच्छी किया हुआ कर्म ही हमें ब्रेक फ्री करने में मदद करेगा। तो आइए, फल की अपेक्षा न रखते हुए, थोड़ा सा डिफिकल्ट है पर कर्म तो हमें अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करते हैं। तो आइए, सपने जो है बड़े देखने चाहिए और कोशिश करनी चाहिए उसे पूरे करने की, बाकी तो जो है माता रानी पे छोड़ देते हैं। तो आइए, लंदन ड्रीम्स उनसे अगला गीत, गीत की सिर्फ झलक मिल पाएगी, कोई नहीं, रिदम और बीट्स बहुत प्यारे हैं, एंजॉय करते हैं।

0: Ashwani FM Rainbow 107.1 MHz, musically yours.
1: नमस्कार, आइए सुनते हैं अभी के ताजा समाचार। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित तीसरी पनडुब्बी रोधी वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट मांगरूल को आज नौसैनिक शिपयार्ड मुंबई में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। गुजरात के जूनागढ़ जिले में स्थित प्रमुख मछली पकड़ने वाले बंदरगाह मांगरूल के नाम पर इस जहाज का नाम रखा गया है। दक्षिण कोरिया ने कहा कि उत्तर कोरिया ने आज सुबह अपने पूर्वी समुद्री क्षेत्र की ओर कई बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। इस कदम से क्षेत्र में तनाव और बढ़ गया है। जापान के रक्षा मंत्रालय ने कम से कम 2 मिसाइलों का पता लगाया है। मंत्रालय के अनुसार ये मिसाइलें जापान के विशेष आर्थिक क्षेत्र के बाहर समुद्र में गिरी। समाचार में आगे, मुख्य निर्वाचन आयुक्त CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ आंदोलन को तेज करने के लिए उच्चतम न्यायालय तक विपक्षी दलों के प्रस्तावित विरोध मार्च से पहले सोमवार को लगातार तीसरे दिन पूरी दिल्ली हाई अलर्ट पर रही और राजधानी भर में पुलिस तथा अर्धसैनिक बलों के 30,000 से अधिक जवानों को तैनात किया गया है। समाचार में आगे, मुंबई के पूर्वी उपनगर में सांता क्रूज चेंबूर लिंक रोड स्वामीनारायण फ्लाईओवर के मरम्मत की लागत में 13,44,00,000 रुपए की वृद्धि हुई है। काम पूरे करने की समय सीमा 6 महीने बढ़ाकर मार्च 2027 तक करने का प्रस्ताव मुंबई मनपा प्रशासन ने स्थायी समिति की मंजूरी के लिए पेश करने का फैसला लिया है। समाचार के अंत में, राज्य लोक सेवा आयोग के खिलाफ उम्मीदवारों ने पुणे में चलाए प्रदर्शन आखिर

गए हैं। विधायक शिवेंद्र राजे भोसले के नेतृत्व में सरकार के प्रतिनिधिमंडल ने प्रदर्शनकारियों के साथ बातचीत कर मामले की निष्पक्ष जांच करने का आश्वासन दिया। इसे स्वीकार करते हुए आंदोलन स्थगित किया गया। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। सुनते रहिए आकाशवाणी मुंबई का FM रेनबो चैनल, म्यूजिकली योर्स।

हार्दिक हार्दिक स्वागत है आपके अपने ही कार्यक्रम म्यूजिक कैफे में। मैं हूँ आरजे डॉक्टर निखिल शासने और जी हाँ, युवाओं से जुड़ा हुआ हमारा कार्यक्रम है म्यूजिक कैफे। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि बतौर लेखक हम रोजगार या फिर रोजमर्रा की जिंदगी जी सकते हैं या नहीं, या फिर थोड़ा सा कुछ इस प्रकार से भी इस सवाल के बारे में हम सोच सकते हैं कि अच्छा लेखक कैसे बने हम, या फिर क्या करना चाहिए लेखक बनने के लिए। तो जी हाँ, आपके जो विचार है हमें व्हाट्सएप कीजिए 8657661071, यानी 8657661071। जी हाँ, ये भी कुछ ऐसी बात होती है कि जैसे हम अभी आप सभी से बात कर रहे हैं, वैसे हमें नहीं पता होता है कि हम किससे बात कर रहे हैं, पर हम हमारी दिल की बात यहाँ आपसे कर रहे हैं। वैसे ही लेखक जो है अपनी दिल की बात जो है वो कागज़ पे उतारता है और न जाने कहीं कौन उसे पढ़ता है और उससे दोस्ती भी बढ़ती है और जो विचार जो है उसका प्रचार प्रसार होता है, आदान प्रदान होता है। तो आपको क्या लगता है कि अच्छा लेखक कैसे बनना चाहिए, लेखक का कुछ बतौर युवाओं ने इस क्षेत्र में अपना कदम रखना चाहिए या नहीं। जी हाँ, आपके संदेश का इंतज़ार रहेगा। अजनबी से जुड़ा हुआ गीत है, दिल से बात करेंगे लेखक होने के बारे में, क्योंकि अजनबी दोस्त होते हैं। तो जी हाँ, कोशिश करते हैं दोस्ती करने की। वैसे इस फिल्म में शाहरुख खान आकाशवाणी के रेडियो जॉकी होते हैं और न्यूज़ सेक्शन में काम करते होते हैं, तो देख के बहुत ही अच्छा लगता है, गर्व महसूस होता है। कहिए, फिल्म देखी होगी तो बहुत ही अच्छा आर्जिंग स्किल भी उन्होंने दिखाया है। देखते हैं, सुनते हैं, ये मणिरत्नम की बेहतरीन फिल्म।

0: चाहते हैं अपना एक मनपसंद घर और सब चाहते हैं एक किफायती ब्याज दर।
1: कॉस्मोस होम लोन ब्याज दर 7.80% से शुरू।
0: 3 करोड़ रुपए तक का लोन उपलब्ध। कम से कम प्रोसेसिंग फीस 20 साल तक का अवधि।
1: शर्तें लागू। टोल फ्री नंबर 1-800-233-0234।
0: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, जीवन बनाए समृद्ध।
2: क्या आपको किसी सरकारी विभाग से जुड़ी कोई शिकायत दर्ज करनी है?
3: तो आपकी सहायता करेगी भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के सीपी ग्राम्स पोर्टल पर समाधान दीदी।
2: समाधान दीदी 22 भारतीय भाषाओं में आपकी बात सुनती और समझती है। आपको बस अपनी शिकायत को बोलना है। समाधान दीदी की AI तकनीक आपकी शिकायत को सीधे सही मंत्रालय तक पहुंचाती है।
3: आज ही www.pjportal.gov.in पर जाएं और अपनी शिकायत दर्ज करें।
2: सारी शिकायतों का समाधान सीपी ग्राम्स की समाधान दीदी।
4: जी दोस्तों, बातें चल रही है लेखक बनने की, तो बहुत ही प्यारा सुझाव दिया है हमारे जो दोस्त हैं यशवंत अड़मुठे साहब, उन्होंने कि लेखक बनने के लिए हमें अच्छा वाचक बनना बहुत ज़रूरी है, वाचन करना बहुत ज़रूरी है, पढ़ना बहुत ज़रूरी है, और सिर्फ एक विषय को लेकर पढ़ना ज़रूरी नहीं, अलग अलग विषयों के बारे में हमें जानने की कोशिश करनी चाहिए। जो भी छपा है वो पढ़ने के लिए ही छपा हुआ है, ऐसा समझ के जो है हमें पढ़ना चाहिए। तो क्या लगता है कि क्या कर सकते हैं? शुभलक्ष्मी मस्तकर कहती है कि वो कविताएं लिखते हैं, बहुत प्यारी बात है। और संजय दर्शन का भी यही कहना है कि पढ़ना बहुत ज़रूरी है, चाहे पुस्तक कोई भी हो। और राजेंद्र परमार जी को भी जो गीत है वो बहुत पसंद आ रहे हैं, और प्रेम पत्र की जो बात हुई है वो भी गीत अच्छा लगा उन्हें। तो दीपा पालकर कही है, यशवंत शिंदे, पंकज मोहड़, इनका भी संदेश आया है, विकास चिरणेकर, इनका संदेश आया है, शुभलक्ष्मी मस्तकर जी का नाम मैंने लिया है। तो जर्नल जो है, मैगजीन जो है, तो उसमें लिखने की हमें कोशिश करनी चाहिए। जिससे अभी दिवाली आ रही है, तो महाराष्ट्र में दिवाली अंक की जो परंपरा है वो बहुत प्यारी है। तो अलग अलग सेक्टर्स के कहानियों के मैगजीन्स आते हैं, तो उसमें लिखने की, कथाएं लिखने की, या फिर जैसे यश शिंदे ने कहा है कि ब्लॉग्स लिख सकते हैं हम लोग। और एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है जो अगर

आप साइंटिफिक बैकग्राउंड से हो, साइंस स्टूडेंट हो, तो फिर साइंटिफिक रिव्यू, साइंटिफिक जर्नल्स में रिव्यूइंग एक ऑप्शन रहता है, जिसे हम पीयर रिव्यू ऐसे कहते हैं। तो जो भी स्टैंडर्ड जर्नल होती है उनके अगर आप वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ एक ऑप्शन आता है ज्वाइन एज अ पीयर रिव्यूअर। तो उस ऑप्शन पे आपको क्लिक करके आपकी डिटेल्स भरने हैं और सिर्फ आपका सीवी अपलोड करना होता है। और पीयर रिव्यूअर का काम होता है कि जर्नल के पास जो भी आर्टिकल आता है, साइंटिफिक आर्टिकल आता है, तो वो देखते हैं कि इस क्षेत्र में कौन काम कर रहा है। तो उस व्यक्ति के पास वो आर्टिकल चला जाता है और रिव्यू करने के लिए कुछ 15 दिन का मोहलत दी जाती है। अगर आपको कुछ कमिटमेंट है तो थोड़ा एक्सटेंड भी हो जाता है। तो कई बार ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, पर इससे जो है हमारी स्किल डेवलप होती है कि क्या चाहिए एक आर्टिकल में, कैसे रिव्यू किया जाता है, और बतौर लेखक हम उभरते जाते हैं क्या करना है साइंटिफिक राइटिंग में, उसके बारे में भी हम जानना चाहते हैं। तो जी हाँ, इसके बारे में बात करेंगे। तो अगर आप सोच रहे हैं कि क्या करे या ना करे, तो करके देखते हैं, हाँ करके देखना बेहतर होता है। तो रिग्रेट तो नहीं होता कम से कम कि अरे मैं ये कर सकता था। तो आइए, हम मुंबई में हैं, हम महाराष्ट्र में हैं, तो एक धक्का तो दे के देख सकते हैं। क्या पता किस्मत की गाड़ी हमें कहाँ ले जाए।

जी हाँ दोस्तों, मुंबा देवी की बात चल रही है, महालक्ष्मी देवी की बात चल रही है और मुंबई नगरिया की बात चल रही है। और लेखक बतौर लेखक बन के जो है किस्मत आजमाने की बात चल रही है, तो कोशिश तो करनी चाहिए। और एक दिन ज़रूर आएगा कि हम शुरुआत करेंगे, और एक दिन ऐसा भी आएगा कि जब हमें लगेगा कि जिए तो जिए कैसे बिन आपके। जी हाँ, लेखन के बिना चैन ही नहीं आएगा लिखने के बिना। तो आइए दोस्तों, ठीक 12:30 बजे हम सुनेंगे एक प्रायोजित कार्यक्रम, NCERT उमंग कार्यक्रम। तो आइए, इस ये म्यूज़िक कैफ़े का आखिरी गीत है, और ठीक 1 बजे मिलेंगे दोपहरशा बातम्या मराठी मध्य। उसके बाद 1:05 में हिट एंड हॉट जो लिसनर चॉइस का कार्यक्रम है उसमें मिलेंगे। तब तक एंजॉय कीजिए अगला गीत, और आपकी जो रिक्वेस्टेड सॉन्ग है वो हमें जल्दी भेज दीजिए।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
1: सभी श्रोताओं को अजीत का नमस्कार। आइए श्रोताओं, सबसे पहले सुनते हैं सुविचार, जिसे हमें भेजा है छत्तीसगढ़ मदनपुर से श्रवण कुमार साहू, योगेश साहू और राहुल साहू जी ने। बड़ा खूबसूरत लिखा है। लिखते हैं, जीवन में रास्ते कितने भी कठिन क्यों ना हो, अगर मन में विश्वास और कर्म में ईमानदारी हो तो मंजिल एक दिन खुद हमारा रास्ता पूछते हुए हमारे पास ही आ जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद इतने खूबसूरत संदेश के लिए। और आइए अब सुनते हैं हमारे श्रोताओं के नाम और उनके प्यारे प्यारे संदेश। तो सबसे पहला संदेश हमें मिला है छत्तीसगढ़ मदनपुर कवर्धा से श्रवण कुमार साहू, योगेश साहू, राहुल साहू और शिवम साहू जी का। लिखा है, सादर नमस्कार विमलेश जी और अजीत जी। उमंग कार्यक्रम का मैं नियमित श्रोता हूँ। इस कार्यक्रम से मुझे बहुत ज्ञान प्राप्त होता है। इतने सफल प्रसारण के लिए मैं उमंग परिवार की पूरी टीम को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। अगला संदेश हमें मिला है रामकुशल पटेल जी का छत्तीसगढ़ से। लिखते हैं, 15 सितंबर को हमने कार्यक्रम उमंग में पर्यावरण से संबंधित पेड़ पौधों के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी सुनी। पेड़ पौधों का हमारे जीवन और पर्यावरण में कितना बड़ा महत्व है, ये जानकर हमें बेहद अच्छा लगा। ऐसी उपयोगी जानकारी देने के लिए एनसीईआरटी की पूरी टीम को हृदय से धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरा अनुरोध है कि उमंग कार्यक्रम निरंतर प्रसारित करते रहें। आपको बता दें कि उमंग कार्यक्रम हम पूरे परिवार के साथ नियमित रूप से सुनते हैं। कार्यक्रम हमें बेहद अच्छा और मनमोहक लगता है। मनोरंजन के साथ साथ ज्ञानवर्धक एवं रोचक जानकारियां भी सुनने को मिलती हैं। एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई इतनी उपयोगी प्रस्तुति के लिए। श्रोताओं, अगला संदेश हमें मिला है उरई कछार लोरमी छत्तीसगढ़ से वैशाली पटेल, हेमवर्षा पटेल, युवराज पटेल, देवराज पटेल, जगबाई पटेल और रमेश पटेल जी का। लिखते हैं, उमंग कार्यक्रम एक बहुत ही सुंदर और प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के माध्यम से बच्चों और प्रतिभागियों को अपनी प्रतिभा दिखाने, कुछ नया सीखने और अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने का अवसर मिलता है। आपने आगे लिखा है, इस कार्यक्रम में जिस तरह से सभी प्रतिभागियों से प्रश्न पूछे जाते हैं, उन्हें प्रोत्साहित किया जाता है, वो बहुत ही सराहनीय है। ऐसे कार्यक्रम बच्चों के व्यक्तित्व के विकास के साथ साथ उनकी रचनात्मकता और आत्मविश्वास को भी बढ़ावा देते हैं। कार्यक्रम का आयोजन करने वाली पूरी टीम का प्रयास प्रशंसनीय है। सभी ने मिलकर कार्यक्रम को आपने यादगार बना दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगला संदेश हमें मिला है माँ बमलेश्वरी धाम सांकरा सोमनी जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से नारायण लाल साहू, कुलवंतीन देवी साहू, दिवेंद्र प्रसाद साहू, नेहा देवी साहू, मिलिंद कुमार साहू, प्रणय कुमार साहू और रुद्रांश प्रताप साहू जी का। लिखते हैं, बहुत चर्चित उमंग कार्यक्रम का सफल संचालन करने वाले अजीत एवं बिमलेश जी को सादर बधाई एवं नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबों की प्रस्तुति बेहद लाजवाब रहती है, सुनकर हम आनंदित हो जाते हैं। बड़ी मनोरंजक और ज्ञानवर्धक जानकारियां तो हमें सुनने को मिलती हैं। विभिन्न आकाशवाणी केंद्रों से प्रसारित होने वाले उमंग कार्यक्रम के द्वारा हमें सच में बहुत ही लाभ होता है। आपके सभी कार्यक्रम बहुत ही लोकप्रिय और मन भावन लगते हैं। महोदय, मैं 1983 में कक्षा 7वीं से आकाशवाणी से प्रसारित कार्यक्रम सुनता आ रहा हूँ। अब मेरी उम्र 61 साल की है। आकाशवाणी रेडियो का मैं दीवाना हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद इतने खूबसूरत संदेश के लिए। और अब सुनते हैं अगला संदेश जो हमें मिला है हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोडखे, श्रीमती नंदा बोडखे और हनुमान बोडखे जी का। रानीगांव नगरी छत्तीसगढ़ से खिलेश कुमार साहू, चित्ररेखा साहू, शुभम सेजल साहू जी का। और उत्तर प्रदेश बुलंदशहर से हमें संदेश मिला है मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन अब्बासी, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान, अब्बान अब्बासी और अब्बासी परिवार के सभी सदस्य। सभी श्रोताओं को हमारा धन्यवाद। और अब बारी है पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तरों की। तो श्रोताओं, हमारा पहला प्रश्न था आपसे कि सूर्योदय की भूमि किस देश को कहते हैं। तो इसका उत्तर सुन लीजिए। इसका उत्तर है, सूर्योदय की भूमि जापान को कहते हैं। जापान का आधिकारिक नाम है निप्पॉन, जिसका मतलब है सूर्य के निकलने का स्थान। जापान एशिया के पूर्वी छोर पर है, जिसके कारण वहां से सूर्य सबसे पहले निकलता हुआ दिखाई देता है। तो श्रोताओं, हमारा आज का दूसरा प्रश्न था कि अब तक किन किन भारतीयों को किन किन क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इसका उत्तर जान लेते हैं। अब तक कुल 10 भारतीयों को नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका है। साहित्य में गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर, भौतिकी में सर सीवी रमन, चिकित्सा में डॉक्टर हरगोविंद खुराना, शांति का नोबेल पुरस्कार मदर टेरेसा, अर्थशास्त्र में डॉक्टर अमर्त्य सेन और डॉक्टर अभिजीत बैनर्जी, और शांति का नोबेल पुरस्कार श्री कैलाश सत्यार्थी जी। हमारा अगला प्रश्न था कि मैग्सेसे पुरस्कार किस देश के द्वारा और किन की स्मृति में दिया जाता है, तो आइए जानते हैं इसका उत्तर। इसका उत्तर है मैग्सेसे पुरस्कार फिलीपींस देश द्वारा उनके लोकप्रिय राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे की स्मृति में दिया जाता है। और हमारा अगला प्रश्न था आपसे कि परमवीर चक्र पदक का डिजाइन किसने किया था, आइए इसका उत्तर भी जान लेते हैं। परमवीर चक्र पदक का डिजाइन श्रीमती सावित्रीबाई खानोलकर ने तैयार किया था। आपको बता दें कि श्रीमती सावित्रीबाई खानोलकर स्विट्जरलैंड में जन्मी, उनका मूल नाम इवरॉन लिंडा था। वहां वे रॉयल मिलिट्री एकेडमी के भारतीय कैडेट विक्रम रामजी खानोलकर से मिली और उनसे विवाह कर भारत आ गईं। और हमारा अंतिम प्रश्न था श्रोताओं कि भारतीय साहित्य में ज्ञानपीठ पाने वाली पहली महिला कौन थी, तो इसका उत्तर है ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता पहली महिला आशा पूर्णा देवी थी, जिन्हें 1976 में बांग्ला साहित्य के लिए ये सम्मान मिला। तो श्रोताओं ये थे हमारे पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। तो अब सुनिए आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है। श्रोताओं आप अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर या हमारे ईमेल पर यानी audio@cieet.nic.in पर भेज सकते हैं। और हाँ, इंस्टा, लिंक्डइन, फेसबुक और एक्स पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं। आपको बता दें कि NCERT की पाठ्य पुस्तकें डाउनलोड करने के लिए आप NCERT बुक्स PDF किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए, वेबसाइट पर दिए गए विकल्पों का अनुसरण कीजिए और मनचाही पुस्तक तक पहुंचिए। आप यदि इन्हीं पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं तो NCERT ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आप इस चैनल पर हमारे कार्यक्रम न सिर्फ सुन सकते हैं लेकिन उन्हें डाउनलोड भी कर सकते हैं। और अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सबसे पहले सुनते हैं कार्यक्रम हम अनेक किंतु एक। कक्षा 3 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक की एक कविता का ये एक सुंदर संगीत रूपक है जिसमें भारत भूमि की भौगोलिक, सांस्कृतिक और भाषाई विविधता में विद्यमान एकता की भावना का उल्लेख किया गया है। नमस्ते बच्चों।
2: नमस्ते सर।
1: कैसे हैं आप सब?
2: अच्छे हैं।
1: तो बच्चों ये बताओ, आपको कविता पसंद है ना?
3: मुझे अच्छी लगती है।
4: मुझे बहुत पसंद है।
5: मुझे भी पसंद है।
6: मुझे बहुत पसंद है।
1: बहुत अच्छे, मुझे भी कविता बहुत पसंद है। तो बच्चों आज हम एक कविता का पाठ करेंगे।
2: जी सर।
7: मुझे कविता बहुत अच्छी लगती है।
1: ठीक है,
2: ठीक है।
8: बहुत मजा आएगा।
1: तो बच्चों कविता का शीर्षक है हम अनेक किंतु एक। क्या है शीर्षक?
2: हम अनेक किंतु एक।
1: तो अब बच्चों मैं इसका पाठ करूंगा और आप बोलेंगे मेरे पीछे पीछे। तो तैयार हैं आप सब?
2: जी सर, तैयार हैं।
1: तो शुरू करते हैं कविता। हैं कई प्रदेश के

0: के
1: किंतु एक देश के विविध रूप रंग हैं,
0: विविध रूप रंग हैं,
1: भारत के अंग हैं,
0: भारत के अंग हैं,
1: भारतीय वेश एक,
0: भारतीय वेश एक,
1: हम अनेक किंतु एक,
0: हम अनेक किंतु एक,
1: बोलियां हजार हैं,
0: बोलियां हजार हैं,
1: टोलियां हजार हैं,
0: टोलियां हजार हैं,
1: कंठ भी अनेक हैं,
0: कंठ भी अनेक हैं,
1: राग भी अनेक हैं,
0: राग भी अनेक हैं,
1: किंतु गीत बोल एक,
0: किंतु गीत बोल एक,
1: हम अनेक किंतु एक,
0: हम अनेक किंतु एक,
1: एक मातृभूमि है,
0: एक मातृभूमि है,
1: एक पितृभूमि है,
0: एक पितृभूमि है,
1: एक भारतीय हम,
0: एक भारतीय हम,
1: चल रहे मिला कदम,
0: चल रहे मिला कदम,
1: लक्ष्य के समक्ष एक,
0: लक्ष्य के समक्ष एक,
1: हम अनेक किंतु एक,
0: हम अनेक किंतु एक।
1: तो बच्चों कैसी लगी कविता?
0: मुझे बहुत अच्छी लगी।
1: अच्छी तो लगी, तो अब बताइए, अभी हमने सुना हैं कई प्रदेश के किंतु एक देश के, क्या सुना हमने?
0: हैं कई प्रदेश के किंतु एक देश के।
1: तो अब ये बताइए कि हम किस देश में रहते हैं?
0: भारत।
1: हाँ बच्चों, हमारे देश का नाम है भारत। तो ये तो देश हुआ, लेकिन प्रदेश क्या है?
2: हमारे देश में बहुत से प्रदेश हैं।
1: बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो किसी प्रदेश का नाम बताइए।
3: उत्तर प्रदेश में मेरी नानी रहती है।
4: असम में मेरे दादा रहते हैं।
2: और एक और मैं बताऊँ, पंजाब।
1: आपको तो भाई बहुत कुछ पता है। बच्चों हमारे देश में कुल 28 प्रदेश या राज्य हैं और 8 संघ शासित प्रदेश हैं। तो अब जरा बताइए, क्या इसी कविता को गीत में सुनना चाहते हैं?
5: बहुत मजा आएगा।
1: तो चलिए सुनते हैं ये गीत, हम अनेक किंतु एक। क्या
0: हम

श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम हम अनेक किंतु एक। हमें आशा है ये कार्यक्रम आपको जरूर जरूर बहुत पसंद आया होगा। तो आप अपनी प्रतिक्रिया हमें भेज सकते हैं। इस सुंदर गीत के बाद आइए अब अंत में सुनते हैं अगला कार्यक्रम। शीर्षक है राइफलमैन संजय कुमार। श्रोताओं, इस कार्यक्रम में भारत पाक युद्ध के दौरान असाधारण वीरता का प्रदर्शन करने वाले भारतीय सेना के बहादुर और पराक्रमी सैनिक संजय कुमार के शौर्य का वर्णन किया गया है। उन्हें भारत के सर्वोच्च सैनिक सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।

0: बेटा संजय अब सो जाओ, बहुत रात बीत चुकी है।
1: लेकिन चाचा जी आपकी वो वाली कहानी तो अभी पूरी भी नहीं हुई है।
0: वो वाली कहानी? कौन सी कहानी बेटा?
1: वही जो कल आप सुना रहे थे चाचा जी।
0: अच्छा अच्छा वो सेना वाली कहानी?
1: जी चाचा जी वही सेना वाली कहानी जिसमें आपने बताया था कि जब दुश्मन टैंक लेकर आ रहा था तो आप लोगों ने कैसे उस टैंक को तोप से उड़ा दिया था।
0: अच्छा तो मेरे संजय बेटे को सब याद है।
1: हाँ चाचा जी मुझे सब याद है, लेकिन आपने नहीं बताया था कि बाद में क्या हुआ।
0: क्यों भाई क्यों नहीं बताया था, जरा ये तो हमें बताओ।
1: क्योंकि आपको नींद आ गई थी ना। तो अब आगे बताओ ना चाचा जी क्या हुआ।
0: हाँ तो संजय बेटा उन दिनों मैं सेना में नया नया भर्ती हुआ था।
1: अच्छा।
0: अचानक पाकिस्तान ने हमारे देश पर हमला कर दिया।
1: हमारे देश पर हमला कर दिया?
0: हाँ बेटा, लेकिन दुश्मन को क्या पता था कि हम किस मिट्टी के बने हैं। हमने उनके छक्के छुड़ा दिए। छक्के?
2: साथियों ये वार्तालाप था बालक संजय और उसके चाचा के बीच। किसे पता था उन दिनों कि यही बालक अपने युवा होने पर अपने अप्रतिम शौर्य और असाधारण वीरता से इतिहास रच देगा और भारत के सर्वोच्च सैनिक सम्मान परमवीर चक्र से नवाजा जाएगा। कहते हैं ना कि पोत के पांव पालने में ही दिखाई देने लगते हैं। भारत के रमणीक और सुरम्य पर्वतीय राज्य हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में एक छोटा सा गांव है कलोल बकैण। कलकल करती नदियां, ऊंचे पर्वत और यहां की प्राकृतिक छटा सबका मन मोह लेती है।
3: इसी गांव में 3 मार्च 1976 को संजय का जन्म हुआ था। 3 बहनों और 2 भाइयों वाले इस परिवार में वो सबसे छोटे थे। उन्होंने 10वीं की परीक्षा सीनियर सेकेंडरी स्कूल कलोल से ही पास की। उनका सपना बचपन से ही सेना में जाने का था।
2: मन में सेना में शामिल होने की इच्छा लिए वो दिल्ली आ गए और अपने व्यावसायिक करियर की शुरुआत एक टैक्सी ड्राइवर के रूप में की। उनके सेना में भर्ती होने के 2 प्रयास विफल रहे, लेकिन तीसरी बार 1996 में उन्हें सफलता हाथ लगी। उन्हें जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स की 13वीं बटालियन में प्रतिनियुक्ति मिली।
4: चल मार्च! देश! चल!
3: ये बात कारगिल युद्ध से पहले की है। उनके दस्ते को कश्मीर के सोपोर क्षेत्र में तैनात किया गया था। यह इलाका कश्मीरी उग्रवादियों की गतिविधियों का केंद्र बन गया था। संजय कुमार के दस्ते को आतंकवादी गतिविधियों पर अंकुश लगाने का काम सौंपा गया था। आतंकवाद निवारण अभियान में राइफलमैन संजय कुमार की भूमिका बहुत सराहनीय रही और अपनी यूनिट में वह एक समर्पित और जांबाज सैनिक के रूप में पहचाने जाने लगे।
2: फिर आया 1999 का साल जिसमें जम्मू कश्मीर के कारगिल क्षेत्र में पाकिस्तानी सेना और आतंकवादियों की घुसपैठ का पता चला। पाकिस्तानी सेना ने नियंत्रण रेखा को लांघकर सियाचिन, कारगिल, बटालिक, मुश्को, द्रास और काक्सर जैसे सामरिक महत्व के क्षेत्रों में घुसपैठ करके वहां अपनी चौकियां बना ली थी।
3: ये भारत की

0: इस संप्रभुता पर सीधा हस्तक्षेप था। इस विकट स्थिति का एक ही समाधान था और वो था सैन्य अभियान यानी युद्ध। उनकी चौकियां पहाड़ों की चोटियों पर थी जबकि भारतीय सेना ढलानों पर रहने के कारण असुरक्षित थी।
1: 4 जुलाई 1999 को राइफलमैन संजय कुमार को उनकी टुकड़ी के अन्य सदस्यों के साथ मुश्कोह घाटी के पॉइंट 4875 के एरिया फ्लैट टॉप पर कब्जा करने की जिम्मेदारी सौंपी गई।
0: संजय ने समझ लिया था कि ये युद्ध आसान नहीं था। पाकिस्तानी सेना की उस इलाके में मजबूत पकड़ होने की वजह से ये एक गंभीर हमला साबित होने वाला था।
1: संजय की टुकड़ी ने रात को आक्रमण करने की योजना बनाई। एक प्रकार से ये एक आत्मघाती कदम था, लेकिन वो ये भी जानते थे कि यही समय है भारत की माटी का ऋण चुकाने का, देश की बलिवेदी पर प्राणों के गरिमामय उत्सर्ग का। फिर क्या था, संजय कुमार ने अपनी टुकड़ी का नेतृत्व संभाल लिया।
2: कैसे हो वो लोग ऊंचाई पर लोग
3: साथियों? बिल्कुल ठीक है। आप सबको भली भांति पता है कि ये मिशन आसान नहीं होने वाला है। हमें इतना भी नहीं पता है कि हम कल का सूरज देख भी पाएंगे या नहीं।
2: आपने ठीक कहा संजय भाई, दुश्मनों की स्थिति बेहद मजबूत है। वो ऊंचाइयों पर जमे हुए हैं और बड़ी आसानी से हम पर हमला कर सकते हैं।
3: तुमने ठीक कहा रामलाल, इसलिए हम रात में आक्रमण करेंगे ताकि दुश्मन को हमारे आने का पता ना चले। हम रात के अंधेरे का फायदा उठाएंगे, बहुत धीरे धीरे छुपते छुपाते रेंगते हुए उन तक पहुंचेंगे और फिर अचानक हमला करें।
2: बिल्कुल ठीक, यही ठीक रहेगा संजय भाई।
3: तो ठीक है, थोड़ी देर में अंधेरा हो जाएगा, तब तक आराम कर लो।

0: तो शुरू करें?
1: हाँ भाई, लेकिन पहले गले तो मिल रहा पता नहीं फिर जिंदगी हो या ना हो, आगे मुलाकात हो या ना हो।
0: आजा मुकेश, आजा।
2: तो साथियों, 11 सदस्यीय रणबांकुरों की टोली सर पर कफन बांधे अपने सैन्य अभियान में निकल पड़ी। बला की ठंड, साए साए करती ठंडी हवा, निरंतर गिरता तापमान और विरल होती प्राणवायु,
3: सब कुछ विपरीत था। लेकिन बस एक ही बात थी जो विपरीत नहीं थी, और वो था इन महावीरों का अटूट मनोबल। लक्ष्य पर पहुंचे ही थे कि अचानक दुश्मन की ओर से भयंकर फायरिंग होने लगी।
2: शत्रु ऑटोमेटिक मशीन गन से गोलियों की बौछार कर रहा था। संजय कुमार की टीम के दो सैनिक उसी समय शहीद हो गए। और 8 लोग घायल हो गए। फिर भी घायल सैनिकों ने युद्ध करना जारी रखा।
4: आगे बढ़ो, जवाब दो, फायर
2: करो। राइफलमैन संजय कुमार को ये भान हो गया।

0: बताया था कि अब उन्हें देश को अपना सर्वोत्तम देना है।
1: या तो हम मरेंगे या मारेंगे।
2: बिल्कुल ठीक।
1: आंख में आंख डाल के फायर करो, फायर।
3: शत्रु लगातार मशीन गन से गोलियां

0: पीछे ठहरो ठहरो,
1: राइफल का बट ही काफी है इनके लिए, अटैक करेंगे।
2: वो तनिक भी नहीं घबराए और शेर की भांति निहत्थे शत्रु के बंकर में घुस गए और उन पर टूट पड़े।
3: आमने सामने की लड़ाई में उन्होंने राइफल की संगीन और बट से तीन शत्रु सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। इस तरह एक बंकर का सफाया हो गया। उन्होंने दुश्मन के बंकर से ही एक भरी हुई मशीन गन उठा ली। इसी बीच उनके पैर में तीन गोलियां लगी, जिसके कारण उनका चलना फिरना कठिन हो गया। लेकिन उन पर मानो जुनून सवार था। वो चोट की चिंता ना करते हुए उसी जोश से फायरिंग करते हुए दूसरे बंकर की ओर बढ़े।
1: दुर्गा माता जय।
3: और वहां भी दुश्मनों का सफाया कर दिया।
2: उनके रौद्र रूप और जुनून को देखकर दुश्मन के सैनिक भी बौखला गए और भागने लगे।
4: भाग रहे हैं, भाग रहे हैं जाया। अब कहां भागते हो? और रुको, ठहरो, हिम्मत है तो सामने आओ। अपने साथियों में से कोई बचकर नहीं भागेगा। मारो।
3: राइफलमैन संजय कुमार के इस अपूर्व शौर्य को देखकर उनके साथी भी चौगुने उत्साह से भर गए और उन्होंने बचे खुचे पाकिस्तानी सैनिकों का भी सफाया कर दिया। संजय कुमार अभी भी मशीन गन लेकर मोर्चा संभाले हुए थे। दुश्मन या तो मारे गए थे या भाग चुके थे।
5: भाई जी, आप बहुत घायल हो गए। आपको आपको तुरंत उपचार की जरूरत है। वो सामने वाला बंकर बिल्कुल खाली।
6: आपको वहाँ ले चलते हैं।
5: वहाँ चलते हैं।
6: मरहम पट्टी करवा लीजिए। कम से कम खून का बहना रुक जाएगा।
5: आओ भाई जी,
7: नहीं मान सकते, नहीं मान सकते।
5: आओ तो सही।
7: चिंता मत करो, मैं यहीं ठीक हूँ। मैं तब तक ये जगह नहीं छोड़ूंगा जब तक पॉइंट फ्लैग टॉप पर हमारा पूरा पूरा कब्जा नहीं हो जाता।
6: लेकिन जी, लेकिन
7: मैं मशीन गन साधे यहीं डटा हूँ।
6: अरे
7: आप तुम साथियों के साथ एक एक बंकर को चेक करो।
5: आप सुनो,
7: छुपा हुआ ना,
5: आप
7: कोई बचने ना पाए, जाओ चेक करो।
5: लेकिन
7: करो, मैं खड़ा हूँ यहाँ पे, कुछ नहीं होगा मुझे।
5: लेकिन
7: जाओ
5: आप।
3: ऐसा था असाधारण शौर्य राइफलमैन संजय कुमार का। वो तब तक युद्ध के मैदान में अडिग रहे जब तक मुश्कोह घाटी के पॉइंट फ्लैग टॉप पर भारतीय सेना का कब्जा नहीं हो गया। इसके बाद भारतीय सेना की चिकित्सा प्लाटून वहां पहुंची और घायल संजय कुमार को सैनिक अस्पताल ले जाया गया।
1: संजय भाई, इधर आओ।
5: क्या चक्कर था?
1: संजय भाई तो बोल ही नहीं रहे।
2: दुश्मन के आगे अपनी दृढ़ता और निर्भीक प्रयासों के लिए राइफलमैन संजय कुमार को युद्धोपरांत सर्वोच्च सैनिक सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। दो जुलाई 2014 को उन्हें सेना में पदोन्नति देकर जूनियर कमीशन ऑफिसर बना दिया गया।
3: देश ऐसे महावीर पराक्रमी शूरवीर योद्धा को कृतज्ञ भाव से नमन करता है।

श्रोताओ, अभी आपने सुना कार्यक्रम राइफल मैन संजय कुमार। और अब इसी कार्यक्रम के साथ हम अपने आज के उमंग प्रसारण को विराम देने की आज्ञा चाहेंगे। तो अपने मित्र अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी जगबंधु, कुसुमलता, चेतना, अर्शद, प्रसून और हमारे आज के विशेषज्ञ प्रोफेसर सुमन संजय कुमार जी के साथ आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

0: भारत रत्न लता मंगेशकर जी के 3 बैक टू बैक गीतों के साथ, हैट्रिक के साथ हमने आगाज़ किया है हमारे प्यारे कार्यक्रम हिट एंड हॉट। और सभी की रिक्वेस्ट मिल चुकी है, गीत थोड़े लंबे हैं इसलिए शायद आज हम कम गीत सुन पाए, पर जो भी गीत आपने चुने हैं बहुत ही बेहतरीन है, इससे कार्यक्रम में अलग ही रंग आ रहा है, बहुत ही एंजॉय कर रहा हूँ संगीत। जी हाँ, आपको तो पता है हिट एंड हॉट कार्यक्रम में मैं यानी आरजे डॉक्टर निखिल विद्या हरिंद्र शास्त्री बैक सीट पर होता हूँ और गीतों का जो स्टेयरिंग है वो आपके हाथों में होता है, और तो गानों का चयन आप करते हैं और ढेर सारी जो रिक्वेस्ट आ चुकी है और भी हमारे दोस्त अगर रिक्वेस्ट करना चाहे तो रिक्वेस्ट कर सकते हैं, तो कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा हमारे दोस्तों के नाम शामिल किए जाए हो सके मेरे द्वारा। तो अभी अभी आपने जो गीत सुने उनकी फरमाइश थी अभिजीत गवहाणकर, हमारे जो दोस्त है डिकास्ट्रो जॉन उनकी फरमाइश थी, पुणे से राकेश माथुर की फरमाइश और सभी दोस्तों की फरमाइश है, नाम तो आपके ज़रूर लूँगा। उससे पहले एक गीत भी सुन ले, फिरोज संगनपुरिया ने ये गीत रिक्वेस्ट किया है और थोड़ी बहुत बातचीत तो बनती है तो फिर और मज़ा आ जाएगा। तो अक्टूबर महीना है तो महात्मा गांधी जयंती हम मनाते हैं, साथ में खादी ग्रामोद्योग के बारे में भी हाँ चर्चा होती है, तो डिस्काउंट होता है, सेल भी होता है। तो दोस्तों आपको मुझे बताना है कि आपने हाल ही में या फिर खादी ग्रामोद्योग की कौन सी वस्तु या चीज़ आप बेहद पसंद करते हैं और बार बार वहां जाके वो ख़रीदते हैं, अगर उस चीज़ का नाम आपको याद हो और अगर कीमत आपको याद हो तो हमें ज़रूर बताना, तो फिर हम ये जो सीक्रेट है वो सबके साथ शेयर कर सकेंगे। तो आइए एक और गीत सुनते हैं लता दीदी की आवाज़ में, साथ है भूपिंदर, तो आइए एंजॉय करते हैं ये गीत। और आप कौन से खादी प्रोडक्ट्स या फिर हैंडीक्राफ्ट या फिर ग्रामोद्योग के कौन सी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, कैसा लगता है आपको वो चीज़ें, उन चीज़ों का प्रयोग करके हमें ज़रूर बताइए। तो आइए खादी ग्रामोद्योग की तरह जो है स्वदेशी का हम जो है स्वदेशी अपनाएंगे और बस अगला गीत पेश कर रहा हूं। सुनते हैं क्योंकि नाम
1: पता नहीं, रखा भी नहीं, जानता हूं वक्त की गर्द में डूब जाएगा, गुम हो जाएगा, जो याद रहेगा सिर्फ

जी हाँ दोस्तों, नाम आपको भूलना नहीं है क्योंकि हमें आज हम चर्चा कर रहे हैं खादी ग्रामोद्योग की चीज़ों के बारे में। तो क्योंकि अक्टूबर महीना है, सेल भी होता है, तो आप हमें बता रहे हैं कि कौन कौन से खादी के प्रोडक्ट्स आप यूज़ करते हैं और बार बार जाके बढ़ चढ़ कर उसे लेते हैं। तो हमारी जो दोस्त है शुभलक्ष्मी मस्तकर कहती है, वो खादी ग्रामोद्योग से जो है सिल्क साड़ी, रेशमी सिल्क साड़ी पहनती है, उन्हें बहुत अच्छा लगता है। हमारी जो दोस्त है दीपा पालकर, वो उन्होंने कहा, मैंने रिक्वेस्ट की थी सभी लिसनर से कि अगर प्रोडक्ट के दाम भी आप हमसे साझा करें तो हमें भी थोड़ा सा बजट पॉकेट फ्रेंडली क्या ले सकते हैं क्या नहीं ले सकते इसके बारे में थोड़ा हम सोच सकें। तो दीपा पालकर लिखती है कि उन्होंने एक अच्छा सा ड्रेस लिया है, तो लगभग 4000 रुपये की कीमत है और उन्हें वो बहुत पसंद है। तो थैंक यू दीपा जी। और भी कई सारे वैदेही का इंटरेस्टिंग मैसेज आया है कि बहुत बार वो खादी ग्रामोद्योग से खादी की या फिर हस्तकला कहिए चीज़ें लेती है, पर वो सीक्रेट रखना चाहिए जाती है कि कौन कौन सी चीज़ें वो खरीदती है। तो कोई बात नहीं, तो अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस इज़ अ की इन लाइफ। तो जी हाँ, वेदी और वेरी गुड आफ्टरनून।

जी हाँ दोस्तों, हिट एंड हॉट कार्यक्रम में सुपर हिट गीत आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं और बहुत मज़ा आ रहा है, आनंद आ रहा है। और खादी ग्रामोद्योग के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो हमारी 72 साल की जो दोस्त है विजय लक्ष्मी शेट्टी, चेंबूर मुंबई से, उन्होंने हमें लिखा है कि उन्हें भी खादी बहुत पसंद है और अलग अलग स्टेट्स की हर एक साड़ी उनके पास है, उसका एक कलेक्शन है। वो लिखती है कि खादी ग्रामोद्योग से वो अक्सर अगरबत्ती कहिए या फिर साबुन कहिए या ऐसी चीज़ें या फिर साड़ीज़ वगैरह पहनती है और उन्हें वो बहुत पसंद है। हमारे दोस्त पुणे से राकेश माथुर लिखते हैं कि वो उन्होंने लगभग 1,000 रुपये में अच्छा कुर्ता खादी ग्रामोद्योग से, ग्रामोद्योग भंडार से ख़रीदा है, तो अक्सर वो पहनते हैं। और अगर मैं बात कहूँ तो 26 जनवरी या फिर 15 अगस्त के दिन जो है उससे पहले खादी ग्रामोद्योग में जो है तिरंगा, भारत का राष्ट्र ध्वज भी मिलता है और जल्दी से जल्दी वो ख़त्म हो जाता है, तो इसलिए थोड़ा सा हमें जल्दी करनी होगी अगर वहाँ से राष्ट्र ध्वज ख़रीदना है। अलग अलग साइजेस में मिलते हैं, तो रुमाल से लेके जो है चद्दर तक, कहिए किराना की बहुत सारी रेंज है, तो हम सभी सामान ले सकते हैं। और अलग अलग रेंज में किताबें भी हैं, तो घड़ी में ठीक 1:50 होने ही वाले हैं, तो 2 बजे आप सुनेंगे मिड डे न्यूज़, 2:15 पे दोपहर के समाचार और 2:30 पर मराठी कार्यक्रम सलाह दोस्त हो बोलू काही। तो आइए लगभग आखिरी के एक दो गीत हम सुन सकते हैं। हमारे जो दोस्त हैं जिन्हें हम हमारे कार्यक्रम में शामिल करना चाहेंगे, उनके नाम कुछ इस प्रकार है, विजेंद्र घाटोल अकोला से, उसके बाद अरज है, अभिजीत गवाणकर, यश शिंदे, हरविंदर छिंदा, जसवीर, विजय लक्ष्मी शेट्टी, उसके बाद सौरभ शर्मा, श्रवण सिंह, वैदेही, HS भाटिया, शुभलक्ष्मी मस्तकर, दीपा पालकर, फिरोज सिंगनपुरिया, लाल गिरी गोस्वामी, जगदीश सिंह, झारखंड से गोपे, प्रवीण, चेतन कुमार, मुकेश कश्यप, उसके बाद उल्लासनगर से जो है यादव है, दिव्यांशु यादव, गुरमीत सिंह, मीता सिंह है, मिंटू टॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा, हीरामणि वर्मा है, और नागपुर से हमारे दोस्त है, कोलित मारा से हमारे दोस्त हैं, तो उन्होंने भी रिक्वेस्ट की है, रविंद्र कोड़पे इनका नाम है, शुभ नाम है। शुभधा है हमारे साथ राजस्थान, श्री गंगानगर से मेहर अरोड़ा है, दिग्दर्शन और कविता है यशवंत आडमुटे है, संदीप कुमार है, संदीप कुमार इनका गीत हम शामिल कर पाए तो अच्छा लगता है, प्रदीप अनंत कृष्णंत, प्रमोद चिंचोलकर, पंकज मोहोड़, दर्शन संजय दर्शन, विकास चिरणेकर, राजेंद्र परमार लिखते हैं इन्हें भी कार्यक्रम बहुत पसंद आया, निशिकांत जोशी पनवेल से, अजय साखरे हमारे इंदौर से हैं, वरली, अशोक पाटिल भंडारदरा से, दिलेश वंजारी हमारे संग है, अलीबाग से अमर पाटिल, दादर से हमारे दोस्त बाबा है, अंकित विजय महोबिया है, और उल्लासनगर से पल्लवी यादव है हमारे साथ, ममता भाटकर है, और साथ ही नाला सुपारी से हमारे दोस्त सुनील पांचाल भी है। तो आप सभी को ढेर सारा याद प्यार। दोस्तों समय को सीमा है, पर मेरा जो प्रेम है, हमारा जो प्रेम है आपके प्रति, उसको कोई सीमा नहीं है, तो हमारे तरफ से याद प्यार आप सभी को। तो जल्द ही मिलेंगे किसी सोमवार को, तो मुझे यानी RJ डॉक्टर निखिल विद्याहरिंद्र शास्त्री को दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिए और एक दो बेहतरीन गीत आपको सुनवाने की इच्छा रखता हूँ। देखते हैं, एक तो गीत पूरा हो पाएगा पर दूसरे की झलक सिर्फ मिल पाएगी, कोई बात नहीं, हम जो भी गीत
गीत हम सुनेंगे, उसे एंजॉय करेंगे और हमारी जो दोस्ती है यही बनी रहे, फूले फले और एक दूसरे को आनंद दे। तो ढेर सारे प्यार के साथ मुझे दीजिए इजाज़त और रफ़ी साहब की आवाज़ में अगला गीत फिल्म दोस्ती से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। भारतीय नौसेना ने तटीय और उथले समुद्री क्षेत्रों में खतरों से निपटने के लिए पनडुब्बी रोधी युद्धपोत आईएनएस मांगरोल को अपने बेड़े में शामिल किया। भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने इंडिया ब्लॉक के साथ बैठक के अनुरोध पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के द्वार हर भारतीय नागरिक के लिए खुले। सर्वोच्च न्यायालय तक विपक्षी दलों के विरोध मार्च के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने दिल्ली में सुरक्षा बढ़ाई। दिल्ली मेट्रो के 6 स्टेशनों के प्रवेश और निकास द्वार शाम 4 बजे तक बंद। दिल्ली पुलिस ने विरोध प्रदर्शनों के लिए 3 नए स्थल निर्धारित किए। जंतर मंतर को विरोध प्रदर्शन स्थल की सूची से हटाया। और दिल्ली, हरियाणा, पंजाब तथा छत्तीसगढ़ में कल तक आंधी तूफान के साथ बिजली चमकने का पूर्वानुमान। अब समाचार विस्तार से। भारतीय नौसेना ने आज मुंबई स्थित नौसैनिक शिपयार्ड में कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित तीसरे पनडुब्बी रोधी वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट आईएनएस मांगरोल को अपने बेड़े में शामिल किया। स्वदेशी तकनीक से निर्मित इस युद्धपोत के नौसेना में शामिल होने से तटीय और उथले समुद्री क्षेत्रों में पनडुब्बियों का पता लगाने और उनसे निपटने में नौसेना को मजबूती मिलेगी। नौसेना के पश्चिमी कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ वाइस एडमिरल संजय वात्स्यायन की अध्यक्षता में कमिश्निंग समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि 80% से अधिक स्वदेशी सामग्री से निर्मित यह युद्धपोत भारत की इंजीनियरिंग क्षमता, तकनीकी प्रगति और राष्ट्रीय संकल्प को दर्शाता है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: तटीय और उथले समुद्री क्षेत्रों में पानी के भीतर मौजूद खतरों का पता लगाने और उनसे निपटने के लिए डिजाइन किया गया आईएनएस मंगरूल आधुनिक हथियारों और सेंसरों से लैस है। इनमें अभय हल माउंटेड सोनार, हल्के टॉर्पीडो, स्वदेशी पनडुब्बी रोधी रॉकेट लॉन्चर और मारीच उन्नत टॉर्पीडो डिकॉय सिस्टम शामिल है। वाटर जेट प्रोपल्शन वाले 3 डीजल इंजनों से संचालित यह पोत उथले पानी में तेजी से दिशा बदलने में सक्षम है। यह पानी के भीतर निगरानी, कम तीव्रता वाले समुद्री अभियानों और माइन वॉरफेयर से जुड़े अभियानों के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। मंगरूल समुद्री गश्ती विमानों, हेलीकॉप्टरों और अन्य युद्धपोतों के साथ मिलकर पनडुब्बी से जुड़े खतरों का पता लगाने और उनसे निपटने में पूरी तरह सक्षम है। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सरकार पिछले कुछ वर्षों से रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और आधुनिकीकरण पर विशेष ध्यान दे रही है। इसमें हथियारों और तकनीक से लेकर वर्दी, उपकरण और प्रशिक्षण तक सभी क्षेत्र शामिल हैं। नई दिल्ली में आज भारतीय सेना और भारतीय खाद्य निगम के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर के अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत अब अपनी रक्षा जरूरतों का एक बड़ा हिस्सा देश में ही तैयार कर रहा है।
2: आज आर्मी और फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के बीच स्ट्रेटेजिक लॉजिस्टिक पार्टनरशिप MOU की साइनिंग भी और नेशनल सिक्योरिटी को इन्हांस करने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है। मॉडर्न वॉरफेयर में केवल वेपन्स, प्लेटफॉर्म्स और टेक्नोलॉजी ही महत्वपूर्ण नहीं है। आज के युद्ध केवल फ्रंट लाइन पर नहीं जीते जाते, युद्ध के पीछे सप्लाई चेन की मजबूती, स्टोरेज की क्षमता, ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क्स, वेयर हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और टाइमली रिप्लेसमेंट की क्षमता भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा है कि संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर अदालतों को दखल देना चाहिए। नई दिल्ली में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के 33वें स्थापना दिवस पर न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि संविधान ने हर नागरिक से गरिमा, समानता, स्वतंत्रता और न्याय जैसे बड़े वायदे किए हैं।
3: हमारे संविधान ने हर नागरिक को सम्मान, समानता, स्वतंत्रता और न्याय का अधिकार दिया है। आयोग इन अधिकारों की रक्षा करता है। ये उन लोगों की आवाज बनता है जो अपनी बात आसानी से नहीं रख पाते। आयोग शिकायत मिलने का इंतजार किए बिना भी खुद कार्रवाई कर सकता है।
0: न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के दरवाजे सभी के लिए खुले हैं।
4: सुप्रीम कोर्ट के द्वार सबके लिए खुले हैं। कोई भी पटीशन, किसी भी, कोई भी, चाहे वो आम नागरिक है या कोई माननीय सदस्य है किसी इलेक्टेड बॉडी का, कोई भी है, भारत का हर नागरिक का उसका अधिकार।

0: है वो हमारे पास आए, हम कानून की व्यवस्था को और कानून के अनुरूप सुनवाई करेंगे और जो जिसको बनता है उसको जरूर उसका अधिकार वो देंगे।
1: इंडिया ब्लॉक की मुलाकात की मांग पर न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि उन्हें कल ही मिलने के लिए एक चिट्ठी मिली थी और उन्होंने कल रात ही इसका जवाब दे दिया था। उनसे न मिलने की वजह भी बता दी गई थी। दिल्ली में विपक्षी दलों के आज दोपहर में प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन को देखते हुए यातायात पुलिस ने परामर्श जारी किया है। प्रदर्शन के मद्देनजर दिल्ली मेट्रो के 6 स्टेशनों पर प्रवेश और निकास शाम 4 बजे तक बंद रहेगा। यातायात पुलिस ने प्रभावित मार्गों पर अनावश्यक यात्रा से बचने, डायवर्जन के संकेतों और यातायात पुलिस के निर्देशों का पालन करने की अपील की है। दिल्ली पुलिस ने विरोध प्रदर्शन और धरना प्रदर्शन के लिए 3 नए स्थान निर्धारित किए हैं। इनमें रामलीला मैदान, बुराड़ी मैदान और पूर्वी दिल्ली का सीबीडी मैदान शामिल है। दिल्ली पुलिस आयुक्त अनुराग कुमार की ओर से जारी आदेश के अनुसार जंतर मंतर को निर्धारित प्रदर्शन स्थलों की सूची से हटा दिया गया है। गृह मंत्रालय ने नागरिकों के विरोध प्रदर्शन और धरना आयोजित करने के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त वैकल्पिक स्थानों की पहचान के लिए एक समिति गठित की थी। समिति की सिफारिशों के आधार पर जंतर मंतर को निर्धारित प्रदर्शन स्थलों की सूची से हटाने का फैसला किया गया है। कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा है कि इंडिया गठबंधन आज मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर करेगा। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में श्री गांधी ने कहा कि उन्होंने और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भारत के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर चुनावों की निष्पक्षता को लेकर चिंता जताई है। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा ने आज नई दिल्ली में विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जेएनयू की छात्राओं के साथ यौन उत्पीड़न के आरोपी मणिपुर से कांग्रेस सांसद डॉ. अंगोमचा बिमोल अकोइजम के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। भाजपा का दावा है कि 11 छात्राओं की शिकायतों की जांच के बाद विश्वविद्यालय ने अंगोमचा को उनके पद से हटा दिया था। भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने इस मामले पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी और पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं की कथित चुप्पी की आलोचना की।
2: स्मैच द पेट्रियार्की का हवाला देने वाले श्री राहुल गांधी जी और कांग्रेस के बाकी शीर्ष नेतृत्व बिल्कुल चुप्पी साधे हुए। मैं पूछना चाहती हूँ राहुल गांधी जी से, क्या आप अपने इस मौन से बिमल अकोइजम जो आपके सिटिंग सांसद हैं उनके सेक्सुअल मिसकंडक्ट को कंडोन करते हैं? अगर स्मैच द पेट्रियार्की आपके लिए केवल एक चुनावी जुमला नहीं है तो बिमल अकोइजम जो आपके सिटिंग सांसद हैं उनके खिलाफ एक्शन लेके दिखाइए।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने कहा है कि परस्पर जुड़ी इस दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग केवल कूटनीतिक विकल्प नहीं है बल्कि ये दुनिया की शांति, सुरक्षा और समृद्धि के लिए रणनीतिक आवश्यकता है। नई दिल्ली में राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय में श्री राधा कृष्णन ने कहा कि वैश्विक सहयोग का मूल मंत्र साझा हितों को पहचानना, उनका सम्मान करना और उन्हें सामूहिक कार्रवाई में बदलना है। उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन और आतंकवाद जैसी वैश्विक समस्याओं से निपटने के लिए सामूहिक प्रतिक्रिया की जरूरत है।
3: I welcome our distinguished participants from friendly foreign countries. This diverse composition provides a unique opportunity for cross-national learning. That is the great importance of this course. Exchange of cross-sectorial perspectives and deeper understanding of national security and strategic issues.
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। जनसेवा से देश सेवा उनकी इस यात्रा का मूल मंत्र रहा है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण के साथ सरकार भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। आज इस विशेष श्रृंखला में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की पहल से लोगों के जीवन में आए बदलाव के बारे में जानकारी दी जा रही है।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का प्रस्ताव रखा था। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया। वर्ष 2015 से दुनिया भर में यह दिवस मनाया जा रहा है। इससे योग को वैश्विक पहचान मिली और शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक शांति तथा संतुलित जीवन शैली के प्रति जागरूकता बढ़ी है।
5: योग से हमें वो आत्मविश्वास और मनोबल भी मिलता है जिससे हम संकटों से जूझ सकें और जीत सकें। योग से हमें शांति मिलती है, मानसिक शांति मिलती है।

0: संयम और सहन शक्ति भी मिलती है।
1: केंद्र सरकार का आयुष मंत्रालय और विभिन्न संस्थान योग को जन जन तक पहुंचाने के लिए जागरूकता कार्यक्रम, सामूहिक योग अभ्यास और प्रशिक्षण गतिविधियाँ आयोजित करते हैं। देवभूमि उत्तराखंड का योग और अध्यात्म से गहरा संबंध है। ऋषिकेश विश्व भर में योग और अध्यात्म के प्रमुख केंद्र के रूप में प्रसिद्ध है। हिमालय और गंगा की आध्यात्मिक पृष्ठभूमि देश विदेश के लोगों को यहाँ आकर्षित करती है। इसी विरासत को आगे बढ़ाने के लिए उत्तराखंड सरकार ने योग नीति 2025 लागू की है। इसका उद्देश्य उत्तराखंड को योग और वेलनेस के अंतर्राष्ट्रीय केंद्र के रूप में विकसित करना है। राज्य सरकार ने वर्ष 2030 तक 5 नए योग केंद्र विकसित करने का लक्ष्य भी रखा है। इन प्रयासों से योग पर्यटन को बढ़ावा देने, स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ाने, उत्तराखंड की योग परंपरा और वैश्विक पहचान दिलाने की दिशा में काम किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का संदेश है कि योग केवल व्यायाम नहीं बल्कि स्वस्थ और संतुलित जीवन का माध्यम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल और उत्तराखंड की समृद्ध योग परंपरा इस संदेश को दुनिया भर में पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
2: घरेलू कोयला आधारित बिजली संयंत्रों में कोयले का भंडार पिछले महीने की 29 तारीख से 1,80,00,000 टन से ऊपर स्थिर बना हुआ है। कोयला मंत्रालय ने बताया कि 10 अक्टूबर को कोयले का भंडार 1,82,00,000 टन से अधिक था। जिन संयंत्रों में कोयले का भंडार कम है उनकी आपूर्ति पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। सऊदी अरब की राजधानी रियाद में किंग खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रविवार को एक बार फिर हमला किया गया। सऊदी अरब के नागरिक उड्डयन सामान्य प्राधिकरण के अनुसार घायलों की स्थिति और हमले में हुए नुकसान का आकलन किया जा रहा है। इससे एक दिन पहले शनिवार को भी हवाई अड्डे पर हमला हुआ था। रियाद स्थित भारतीय दूतावास ने बताया कि शनिवार को किंग खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हुए हमले में घायल 11 भारतीय नागरिकों में से एक की मौत हो गई है। पार्थिव शरीर को जल्द भारत लाने सहित हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने भी भारतीय नागरिक की मौत पर दुख जताया। पाकिस्तान में संघीय सरकार द्वारा आपातकाल लागू करने और जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई के नेतृत्व वाली प्रांतीय सरकार को निलंबित करने के बाद खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में हिंसा बढ़ गई है। कई इलाकों में पुलिस की गोलीबारी और आंसू गैस के गोले दागे जाने की खबरें हैं। केंद्र सरकार के फैसले के विरोध में कल वहां प्रदर्शन हुए। भारतीय शेयर बाजार में सितंबर माह के अंत तक म्यूचुअल फंड द्वारा 38,306 करोड़ रुपए का निवेश किया गया, जो पिछले माह की तुलना में 31% अधिक है। गोल्ड एक्सचेंज फंड में पिछले महीने की तुलना में 71.4% जबरदस्त तेजी देखी गई, जो 4,451 तक पहुंच गया। घरेलू शेयर बाजार दोपहर में गिरावट के साथ कारोबार कर रहा था। शेयर 617 अंक गिरकर 71,855 पर आ गया, जबकि निफ्टी 158 अंक गिरकर 22,363 पर था। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब और छत्तीसगढ़ में कल तक बिजली चमकने के साथ आंधी तूफान की संभावना व्यक्त की है। अगले दो दिन में तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारेकाल, आंध्र प्रदेश, केरलम और माहे में भी ऐसी स्थिति रहने की उम्मीद है। आज शारदीय नवरात्र का दूसरा दिन है। इस दिन तपस्या, त्याग और संकल्प की प्रतीक मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री ने कामना की कि मां ब्रह्मचारिणी सभी को साहस और आत्मसंयम का आशीर्वाद दें। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग अपने फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आज रात 9:30 बजे वस्तु और सेवा कर GST भारत के कर सुधारों में परिवर्तनकारी भूमिका विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। परिचर्चा में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के GST नीति प्रकोष्ठ के आयुक्त गौरव सिंह शामिल होंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारतीय नौसेना ने तटीय उथले समुद्री क्षेत्रों में खतरों से निपटने के लिए पनडुब्बी रोधी युद्धपोत INS मांगरोल को अपने बेड़े में शामिल किया। भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने इंडिया ब्लॉक के साथ बैठक अनुरोध पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, सर्वोच्च न्यायालय के द्वार हर भारतीय नागरिक के लिए खुले। सर्वोच्च न्यायालय तक विपक्षी दलों के विरोध मार्च के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने दिल्ली में सुरक्षा बढ़ाई। दिल्ली मेट्रो के 6 स्टेशनों के प्रवेश और निकास द्वार शाम 4 बजे तक बंद। दिल्ली पुलिस ने विरोध प्रदर्शनों के लिए 3 नए स्थल निर्धारित किए। जंतर मंतर को विरोध प्रदर्शन स्थल की सूची से हटाया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

5:08 हो रहे हैं, आप ट्यून इन है ऑन एफएम रेनबो 107.1 पर, शो चल रहा है लव यू जिंदगी और मेरा नाम है सोनम, सोनू निगम, श्रेया घोषाल की आवाज में आप सुन रहे थे मैं हूं ना से वाला गाना। और आज के लव यू जिंदगी में हम बात करेंगे कुछ ऐसे ही सेल्फ इंट्रोडक्टरी गानों के बारे में, जहां पर हीरो हीरोइन एक्टर एक्ट्रेस को खुद को इंट्रोड्यूस करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, जो गाने हैं वो उनके लिए खुद से ये चीजें कर देती हैं। और अगर आपके जहन में भी ऐसे कोई गाने आ रहे हैं आप मुझे बता सकते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8657661071। और इसके ऊपर आप बताएं कि ऐसे कितने गाने हैं जहां पर हीरो या हीरोइन खुद को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और उनका एंट्री सॉन्ग भी हो सकता है। हालांकि मैं हूं ना का ये जो ट्रैक था दैट वाज नॉट एन एंट्री सॉन्ग, पर जो अगला गाना मैं प्ले करने वाली हूं ये एक ऐसा ही गाना है। अनुषा मनियान विशाल डडलानी की आवाज में है गाना, दिस इज फ्रॉम द मूवी डॉन 2। आप कहीं मत जाइए, बने रहिए इसी रेडियो स्टेशन पर।

5:20 हो रहे हैं, आप ट्यून्ड इन है ऑन एफएम रेनबो 107.1 पर, और डॉन 2 और डॉन 1 से आप सुन रहे थे ये दोनों गाने. पहला जो गाना मैंने प्ले किया था दैट वाज फ्रॉम डॉन 2, विशाल डिडलानी की आवाज़ में, एंड जो दूसरा गाना था विच वाज द टाइटल ट्रैक, इसे गाया है शान ने. और आप लोगों को लव यू जिंदगी का ये थीम मुझे लगता है काफ़ी पसंद आया, बिकॉज बहुत सारे गाने आए हैं. और जो अगला गाना है वो मेरी लिस्ट में था, बट देन पंकज मोहर ने उस गाने का जिक्र किया है, तो येस वो गाना भी मैं प्ले करने वाली हूँ. दिस इज़ फ्रॉम द मूवी जब तक है जान, और इसे गाया है नीति मोहन ने. और इसके बाद एक गाना आ रहा है फ्रॉम द मूवी बॉडीगार्ड, और बॉडीगार्ड का जो ये ट्रैक है इसे भी रिक्वेस्ट ही किया है. किसने रिक्वेस्ट किया है ये मैं आपको बताऊंगी गाना खत्म होने के बाद, जब मैं वापस आऊंगी ऑन एयर. तब तक आपको कहीं नहीं जाना है, बने रहना है इसी रेडियो स्टेशन पर.

5:30 हो रहे हैं, आप ट्यून इन है ऑन एफएम रेनबो 107.1 पर। और इस छोटे से स्पॉट ब्रेक के पहले आप सुन रहे थे सलमान खान एंड बैंड ऑफ पावर की आवाज़ में बॉडीगार्ड का टाइटल ट्रैक। हमारा शो चल रहा है जिसका नाम है लव यू जिंदगी। इस गाने की रिक्वेस्ट आई थी फ्रॉम यश शिंदे और हम प्ले कर रहे हैं कुछ ऐसे गाने जो कि हीरो या हीरोइन यानी कि एक्टर या एक्ट्रेस को या तो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं या तो उनके बारे में उस गाने में जिक्र हो रहा है। तो एज गुड इज देयर एंट्री सॉन्ग या इंट्रोडक्शन सॉन्ग, यह आज का हमारा लव यू जिंदगी का थीम। एंड जो अगला गाना है वो प्ले करने वाली हूँ, अगेन एन एपिक सॉन्ग, एपिक एंट्री, आई वुड से री एंट्री, लकी अली की आवाज में है ये गाना, दिस इज फ्रॉम द मूवी कहो ना प्यार है। और इसके बाद कौन सा गाना आ रहा है ये जानने के लिए ट्यून्ड इन रहिए इसी रेडियो स्टेशन पर।

5:42 हो रहे हैं, आप ट्यून्ड इन है ऑन एफएम रेनबो 107.1 पर। और जो गाना भी आप सुन रहे थे, इसे गाया था अलीशा चिनॉय ने, एंड दिस वाज फ्रॉम द मूवी कमबख्त इश्क। और इसके पहले कहो ना प्यार है से आप सुन रहे थे लकी अली की आवाज़ में एक ट्रैक। और हमारा जो शो है लव यू जिंदगी, ये आ गया है अपने आखिरी पड़ाव पर। कुछ 17 मिनट रह गए शो को ख़त्म होने में, और मेरे ऑन एयर से ऑफ एयर यानी कि टेम्पररी ऑफ एयर जाने के बाद एक छोटा सा स्पॉट ब्रेक आप सुनेंगे 5:45 पर। फिलहाल जो हमारा शो है ये अभी भी चल रहा है, जो थीम है ये अभी भी चल रहा है, और आपके रिक्वेस्ट सारे हैं। तो जो मैं इस आवर में नहीं प्ले कर पाई वो मैं पक्का नेक्स्ट जो हमारा रिक्वेस्ट आ रहा है उसमें तो प्ले करूंगी, क्योंकि जो हमारे गाने हैं वो भी यहाँ पर पूरे लिस्ट में भर भर के आ रहे हैं। और जो स्पॉट ब्रेक है इसके बाद जो गाना आप सुनेंगे वो होगा मोहित चौहान की आवाज़ में, एंड दैट इज़ फ्रॉम द मूवी दिल्ली 6। उसके बाद आप सुनेंगे सिंगम का टाइटल ट्रैक, और उसकी जो रिक्वेस्ट है वो आई है फ्रॉम प्रवीण। और भी बहुत सारे गाने हैं, पर उसके लिए तो आपको ट्यून इन रहना है इसी रेडियो स्टेशन पर, तब आपको पता चलेगा कि कौन से गाने प्ले होने वाले हैं इस आवर में। और 6 बजे के बाद ऑब्वियसली अंदाज़े ब्याह शुरू होगा, जहाँ पर हम प्ले करेंगे इंडी पॉप गाने, नॉन फिल्मी गाने, गज़ल, सूफी ट्रैक्स, एंड कुछ कुछ फोक सॉन्ग्स भी इफ एप्लीकेबल। पर फिलहाल के लिए जो छोटा सा स्पॉट ब्रेक है वो प्ले करने वाली हूँ, आप कहीं मत जाइए, बने रहिए इसी रेडियो स्टेशन पर।

चल चल चल चल चल चल तुझे बठाट दिखाए और बाट दिखाए ओए बाटे। पल पल पल पल पलट पलट जब कमर घुमाए और होश उड़ा।

6:21 हो रहे हैं, आप ट्यून्ड इन हैं ऑन एफएम रेनबो 107.1 और अभी अभी आप सुन रहे थे दलेर मेहंदी की आवाज में ये वाला गाना। एंड जैसे मैंने कहा, अंदाजे बयां हमारा शो शुरू हो चुका है, जहां पर हम प्ले करते हैं इंडी पॉप गाने, नॉन फिल्मी ट्रैक्स, इट कुड बी एनीथिंग, सूफी गजल्स, जो हिंदी के नॉन फिल्मी ट्रैक्स है वो भी प्ले कर सकते हैं, कुछ कुछ जो फिल्मों में आजकल आने लग गए हैं, बट ठीक है, थोड़ा बहुत वेरिएशन इज अलाउड। और जो अगला गाना है कुछ ऐसा ही है, मीका सिंह की आवाज़ में है ये गाना। इनफैक्ट इसके कई सारे वर्जन्स हैं जो कि मूवीज़ में यूज़ किए गए हैं, जब मैं गाना प्ले करूँगी तब आपको पता चलेगा। और अगर आपको भी कोई स्पेशल गाना सुनना है इस आवर में, यू कैन लेट मी नो ऑन 8657661071।

सुखबीर के एल्बम से ये गाना अभी आप सुन रहे थे ऑन एफएम रेनबो 107.1 6:32 बाय स्टूडियो क्लॉक. और मेरा नाम है सोनम, हमारा शो चल रहा है जिसका नाम है अंदाजे भैया, एंड हम प्ले कर रहे हैं इंडी पॉप नॉन फिल्मी ट्रैक्स. हालांकि ये जो गाना था इसका भी एक वर्जन हिंदी मूवी में देखा गया है, और दैट वॉज हिंदी मीडियम. और इसके पहले जो गाना मैंने प्ले किया था मीका की आवाज़ में, उसे भी काफ़ी सारी मूवीज़ में अडेप्ट किया गया है. ऐसे बहुत सारे इनफैक्ट इंडी पॉप गाने हैं, एल्बम्स के ट्रैक्स हैं जो कि बहुत सारे आजकल की मूवीज़ में आपको नज़र आते हैं, और ऐसा ही एक गाना और है. पर फिलहाल मैं अभी वो गाना प्ले नहीं करने वाली हूँ. अभी आप सुनने वाले हैं शंकर महादेवन की आवाज़ में ब्रेथलेस का जो ट्रैक है वो, एंड उसके बाद केके की आवाज़ में गाना आ रहा है. वो गाना कौन सा है वो ट्यून इन रहने के लिए आपको वो जानने के लिए आपको ट्यून इन रहना होगा. और उसके साथ ही साथ और भी बहुत सारे गाने हैं. कुछ गाने आप लोगों ने भी मुझे मैसेज किया है व्हाट्सएप पर, वो भी प्ले होंगे इस आवर में, बिकॉज दे आर इंडी पॉप सॉन्ग्स एंड सूफी रंग में गज़ल्स भी चलेंगे. 8657661071 है हमारा नंबर, इसके ऊपर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं. फिलहाल तो जैसे मैंने कहा शंकर महादेवन आ रहे हैं आपकी तरफ.

बातें हैं, उनमें सिर्फ आंसू हैं, उनमें सिर्फ दर्द की रंज की बातें हैं और फरियादे हैं। मेरा अब कोई नहीं, मैं हूँ और खोए हुए प्यार की यादें हैं। डूब गया है दिल गम के अंधेरे में, मेरी सारी दुनिया है दर्द के घेरे में, मेरे सारे गीत

0: सेंट्रल विजिलेंस कमीशन यानी CVC भ्रष्टाचार के खिलाफ शिकायत दर्ज करने का एक जरिया है। अगर किसी सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या CVC के दायरे में आने वाली संस्था से जुड़ी शिकायत है तो आप CVC की वेबसाइट पर जाकर कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं। जानकारी और कंप्लेंट के लिए विजिट करें cvc.gov.in। सतर्क रहिए, जागरूक रहिए, क्योंकि बदलाव की शुरुआत हमारी आवाज से होती है।
1: अब जो भी हो शोला बनके पत्थर है पिघलाना,
2: अब जो भी हो बादल बनके पर्वत पर है छाना।
3: नऊ दिवस करू या देवीच्या नऊ रूपांची आराधना।
4: अहो, पण आपल्या आजूबाजूला ही आहेत की कर्तृत्व, संघर्ष आणि जिद्दीनं आपलं वेगळं विश्व घडवणाऱ्या नवदुर्गा।
3: कुणी प्रतिकूल परिस्थितीत दोन हात करतय, कुणी आपल्या कर्तृत्वाने नव आकाश गाठतय,
4: कुणी समाजासाठी झटतय, तर कुणी आपल्या स्वप्नांना नवी दिशा देतय।
3: त्यांच्या संघर्षाची कहाणी, त्यांच्या यशाचा प्रवास
4: आणि त्यांच्या अनुभवातून मिळणारी प्रेरणा।
3: या नवरात्रीत भेटूया अशाच काही प्रेरणादायी स्त्रियांना ज्यांच्यात आहे दुर्गेची शक्ती,
4: कर्तृत्वाची ओळख आणि स्वप्नांना गवसणी घालण्याची जिद्द।
3: हॅशटॅग नवदुर्गा या कार्यक्रमात
4: दिनांक 11 ऑक्टोबर ते 20 ऑक्टोबर सकाळी 11 वाजता आकाशवाणी मुंबईच्या 100.1 FM गोल्ड वाहिनीवर
3: हॅशटॅग नवदुर्गा, उत्सव प्रेरणेचा।

6:50 और सेकेंड बढ़ते जा रहे हैं. आप ट्यून इन है ऑन एफएम रेनबो 107.1 पर. हमारा शो चल रहा है जिसका नाम है अंदाज़े बयां. अदनान सामी की आवाज़ में आप सुन रहे थे तेरा चेहरा का जो टाइटल ट्रैक है, जो एल्बम था उस एल्बम का टाइटल ट्रैक. और इस गाने की रिक्वेस्ट आई थी फ्रॉम संजय दर्शन. जो अगला गाना है वो प्ले करने वाली हूँ मैं. जगजीत सिंह की गज़ल है ये. दिस वॉज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द मूवी सरफरोश. और इस गाने की रिक्वेस्ट हमें आई है फ्रॉम यश शिंदे. और इसके बाद वैदही की पसंद का गाना सुनने वाले हैं हम, एंड दैट इज़ फ्रॉम द एल्बम मेरी गली. यूफोरिया का जो पॉप बैंड है उसके गाने आप सुनने वाले हैं फिलहाल. और मुझे लगता है अगर वक्त और बचा तो मैं ट्राई करूँगी कुछ और गाने प्ले करने के लिए, बट फिलहाल तो ये दोनों गाने आप सुनने वाले हैं. एंड इसीलिए कहीं मत जाइए, बने रहिए इसी रेडियो स्टेशन पर.

7:15 हो रहे हैं, आप ट्यून इन है ऑन एफएम रेनबो 107.1 और हमारा शो चल रहा है जिसका नाम है हम तुम। जो गाना आपने अभी सुना उसे गाया था आरडीबी ने और इस गाने की रिक्वेस्ट आई है फ्रॉम विजेंद्र घटोल। जो अगला गाना है वो प्ले करने वाली हूँ राहत फतेह अली खान की आवाज़ में, ये गाना सुल्तान मूवी का ट्रैक है और इस गाने की रिक्वेस्ट की है राकेश माथुर ने। और इसके बाद आप सुनेंगे दीपा पालकर की पसंद का गाना KKN सुनिधि चौहान की आवाज़ में। वो गाना कौन सा है वो जानने के लिए आपको ट्यून इन रहना है इसी रेडियो स्टेशन पर।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: एक छोटी सी रिश्वत क्या सच में इतनी छोटी होती है? नहीं, रिश्वत सिर्फ पैसे का लेन देन नहीं बल्कि ईमानदारी और व्यवस्था पर चोट है। याद रखिए, न रिश्वत लेंगे न रिश्वत देंगे। अपने अधिकारों के लिए जागरूक बनिए और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाइए। अगर कोई आपसे रिश्वत की मांग करता है तो चुप मत रहिए। संबंधित सतर्कता या भ्रष्टाचार निरोधक अधिकारी को इसकी सूचना दीजिए। सतर्क रहें, ईमानदार रहें, भ्रष्टाचार मुक्त भारत के निर्माण में अपना योगदान दें।

7:32 हो रहे हैं, आप ट्यून इन हैं ऑन एफएम रेनबो 107.1 और शो चल रहा है हम तुम, जहां पर आपकी रिक्वेस्ट प्ले हो रही है। आपको ऐसे गाने रिक्वेस्ट करने हैं जो कि उन मूवीज से हैं जो साल 2000 के बाद रिलीज हुई हो, यानी कि नई मूवीज के गाने आपको रिक्वेस्ट करने हैं ऑन 8657661071। जो

ना आपने सुना था इस स्पॉट ब्रेक के पहले वो था फ्रॉम द मूवी गजनी। इस गाने की रिक्वेस्ट की थी पंकज मोहर ने और हम बढ़ते हैं आगे अगले ट्रैक की तरफ। दिस इज फ्रॉम द मूवी रामलीला। इस गाने को गाया है उस्मान मीर ने विद अदिति पॉल और इस गाने की रिक्वेस्ट आई है फ्रॉम आकांक्षा मनोज सिन्हा। और उसके बाद चेतन कुमार की पसंद का गाना आप सुनने वाले हैं। वो गाना कौन सा है वो जानने के लिए आपको ट्यून इन रहना है इसी रेडियो स्टेशन पर।

7:46 हो रहे हैं, आप ट्यून इन है ऑन एफएम रेनबो 107.1 और अभी अभी आप सुन रहे थे ए दिल है मुश्किल से ये वाला गाना। दिस सॉन्ग वाज रिक्वेस्टेड बाय हितेंद्र दास, इन्होंने हमें आसाम से मैसेज किया था। नंबर दे आ गए हमारे शो में जिसका नाम है हम तुम, जहां पर मैं प्ले करती हूँ आपकी रिक्वेस्ट ऑन एयर। जो अगला गाना है वो प्ले करने जा रही हूँ, इस गाने की रिक्वेस्ट की है हमें फिरोज सिगनपुरिया ने, दिस इज़ फ्रॉम द मूवी तमाशा। और इसके बाद एक गाना आने वाला है हिमेश रेशमिया की आवाज़ में, वो गाना कौन सा है वो जानने के लिए आपको ट्यून इन रहना है इसी रेडियो स्टेशन पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। भारत ने ब्रिटेन के साथ आर्थिक सहयोग को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का लक्ष्य। केंद्र ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से अस्पतालों की दरें प्रमुखता से प्रदर्शित करने का आग्रह किया। केंद्र सरकार महाराष्ट्र और कर्नाटक के गन्ना किसानों की शिकायतों के समाधान के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन करेगी। नई दिल्ली का जंतर मंतर अब विरोध प्रदर्शन का स्थल नहीं रहा। दिल्ली पुलिस ने 3 नए स्थल निर्धारित किए। वर्ष 2026 के लिए अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार अमेरिका के अर्थशास्त्री रॉबर्ट टी हॉल और माइकल वुडफोर्ड को, और दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और छत्तीसगढ़ में कल तक तेज हवाओं के साथ तूफान का अनुमान। और अब समाचार विस्तार से। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने 2030 तक भारत ब्रिटेन द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का आह्वान किया है। नई दिल्ली में भारत ब्रिटेन संयुक्त आर्थिक और व्यापारिक समिति के 16वें सत्र में श्री गोयल ने सतत सहभागिता, सुदृढ़ संस्थागत तंत्र और बेहतर सहयोग के माध्यम से भारत ब्रिटेन आर्थिक सहयोग को और बढ़ाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया। उन्होंने कहा कि इससे दोनों देशों के व्यवसायों के लिए नए अवसर खुलेंगे। केंद्रीय मंत्री ने समझौते से विस्तारित व्यापार को निवेश, साझेदारी और रोजगार सृजन में बदलने का आह्वान किया। श्री गोयल ने कहा कि समझौता दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी में महत्वपूर्ण है। यह अधिकांश भारतीय निर्यातों के लिए ब्रिटेन के बाजार में बिना शुल्क के पहुंच प्रदान करता है, साथ ही ब्रिटेन के निर्यातकों के लिए सभी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण अवसर खोलता है। इससे पहले श्री गोयल ने नई दिल्ली में आयोजित दिल्ली संवाद 2026 में कहा कि देश के युवाओं को नए विचारों, नवाचार और स्पष्ट उद्देश्यों के साथ भारत की विकास यात्रा में सक्रिय भागीदारी निभानी चाहिए। उन्होंने वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत की प्रगति और चुनौतियों से निपटने की क्षमता का भी उल्लेख किया। श्री गोयल ने कहा कि 140 करोड़ की आबादी वाला भारत और उसकी युवा शक्ति देश की बड़ी ताकत है। जहां कई देशों में बुजुर्गों की आबादी बढ़ रही है, वहीं भारत में युवाओं की संख्या अधिक है। श्री गोयल ने विश्वास व्यक्त किया कि वर्ष 2047 तक भारत की अर्थव्यवस्था $30 trillion की हो जाएगी। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से अस्पतालों में दी जाने वाली सेवाओं और सुविधाओं की दरें प्रमुखता से प्रदर्शित करना सुनिश्चित करने को कहा है। हमारे संवाददाता ने बताया कि संबंध में स्वास्थ्य सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखा है।
1: केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने पत्र के जरिए लागू नियामक प्रावधानों के अनुपालन की समीक्षा करने के साथ साथ उचित उपाय करने का भी आह्वान किया है, ताकि स्वास्थ्य सेवा शुल्क संबंधी जानकारी रोगियों और उनके परिजनों के लिए स्पष्ट और आसानी से सुलभ हो। पत्र में अंतर्राष्ट्रीय मरीजों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं की कीमतों में पारदर्शिता पर विशेष जोर दिया गया है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से अनुरोध किया गया है कि वे मेडिकल या आयुष वीजा पर भारत आने वाले विदेशी मरीजों को दी जाने वाली पैकेज दरों को प्रमुखता से प्रदर्शित करने के लिए प्रोत्साहित करें। इससे अंतर्राष्ट्रीय को

0: सोच समझ कर निर्णय लेने में मदद मिलेगी, कीमतों और बिलिंग संबंधी शिकायतों को कम करने में सहायता मिलेगी और चिकित्सा एवं आयुष देखभाल के लिए एक विश्वसनीय गंतव्य के रूप में भारत की स्थिति और मजबूत होगी। यह पहल स्वास्थ्य सेवा को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और रोगियों की जरूरतों के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता को मजबूत करती है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: केंद्र सरकार ने कैंसर रोधी दवाओं पर लाभ को अधिकतम खुदरा मूल्य के 30% तक सीमित करने का निर्णय लिया है। केंद्र ने आज सर्वोच्च न्यायालय को इसकी जानकारी दी। न्यायालय ने दवा क्षेत्र में दवाओं की कीमतों की व्यापक समीक्षा करने का निर्देश दिया था। केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने न्यायाधीश विक्रम नाथ और संदीप मेहता की पीठ को बताया कि सरकार उन कैंसर दवाओं की सूची को अधिसूचित करेगी जिन पर लाभ की सीमा लागू होगी। मामले की अगली सुनवाई 27 अक्टूबर को होगी। सरकार ने महाराष्ट्र और कर्नाटक के गन्ना किसानों की शिकायतों के समाधान के लिए एक सप्ताह के भीतर एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने की घोषणा की है। आज नई दिल्ली में केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान तथा उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कर्नाटक और महाराष्ट्र के गन्ना किसानों के प्रतिनिधिमंडलों के साथ हुई बैठक के बाद यह निर्णय लिया। समिति गन्ने की कटाई के समय वैज्ञानिक रिकवरी मापदंडों, आधुनिक प्रयोगशाला परीक्षण प्रणालियों और वजन की सटीकता से संबंधित हर तकनीकी पहलू की बारीकी से जांच करेगी। समिति निर्धारित समय सीमा के भीतर सरकार को अपनी सिफारिशें देगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: शुरू करें इन्वेस्टिंग का

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली पुलिस ने विरोध प्रदर्शन और धरना प्रदर्शन के लिए 3 नए स्थान निर्धारित किए हैं। इनमें रामलीला मैदान, बुराड़ी मैदान और पूर्वी दिल्ली का सीबीडी मैदान शामिल हैं। दिल्ली पुलिस आयुक्त अनुराग कुमार की ओर से जारी आदेश के अनुसार जंतर मंतर को निर्धारित प्रदर्शन स्थलों की सूची से अब हटा दिया गया है। गृह मंत्रालय ने नागरिकों के विरोध प्रदर्शन और धरना आयोजित करने के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त वैकल्पिक स्थानों की पहचान के लिए एक समिति गठित की थी। समिति की सिफारिशों के आधार पर जंतर मंतर को निर्धारित प्रदर्शन स्थलों की सूची से हटाने का फैसला लिया गया है। दिल्ली पुलिस ने बताया कि तीनों नए निर्धारित स्थलों पर विरोध प्रदर्शन आयोजित करने के लिए संशोधित मानक संचालन प्रक्रियाएं जारी की जाएंगी। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के दरवाजे सभी के लिए खुले हैं। इंडिया ब्लॉक की मीटिंग की मांग पर न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि उन्हें कल ही मिलने के लिए एक चिट्ठी मिली थी। उन्होंने कहा कि कल रात ही इसका जवाब दे दिया गया था और उनसे न मिलने की वजह भी बता दी गई थी।
2: सुप्रीम कोर्ट के द्वार सबके लिए खुले हैं। कोई भी पिटीशन, किसी भी कोई भी, चाहे वो आम नागरिक है या कोई माननीय सदस्य है किसी इलेक्टेड बॉडी का, कोई भी है, भारत का हर नागरिक का उसका अधिकार है, वो हमारे पास आए, हम कानून की व्यवस्था और कानून के अनुरूप सुनवाई करेंगे और जो जिसको बनता है उसको जरूर उसका अधिकार वो देंगे।
1: भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने और देश की छवि को धूमिल करने का आरोप लगाया है। नई दिल्ली में आज संवाददाताओं से बातचीत में भाजपा के वरिष्ठ नेता और सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस को सिर्फ आरोप लगाने के बजाय उनके समर्थन में सबूत पेश करने चाहिए।
3: 99 चुनाव हारने तक राहुल गांधी जी हर सीजन में ये देखते हैं कि किसके ऊपर आरोप लगाना है, कभी इलेक्शन कमीशन, कभी ईवीएम, कभी चीफ इलेक्शन कमिश्नर, तो कभी कुछ और अब तो हालत ये हो गई है कि सड़क छाप भाषा का प्रयोग और निराधार आरोप लगाने का काम श्रीमान राहुल गांधी जी कर रहे हैं। राहुल जी, देश को शोर नहीं सच चाहिए, आरोप नहीं प्रमाण चाहिए। आप महामहिम राष्ट्रपति जी के पास गए, वहां पर भी आपको कहा गया कि शिकायत के साथ सबूत दीजिए, तो चुप्पी साध ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। जनसेवा से देश सेवा उनकी इस यात्रा का मूल मंत्र रहा है। सेवा और सुशासन के

0: इसी दृष्टिकोण के साथ सरकार भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। आज इस विशेष श्रृंखला में जानकारी दे रहे हैं कि FDI नीति के माध्यम से इस दृष्टिकोण को कैसे साकार किया गया है।
1: भारत की प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति में पिछले एक दशक के दौरान कई बड़े बदलाव किए गए हैं। केंद्र सरकार ने देश में विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए कई प्रमुख क्षेत्रों में निवेश के नियमों को आसान बनाया है। इनमें रक्षा, दूरसंचार, बीमा और अंतरिक्ष जैसे क्षेत्र शामिल हैं। रक्षा क्षेत्र में 74%, जबकि दूरसंचार, बीमा और अंतरिक्ष क्षेत्र में 100% तक विदेशी निवेश की अनुमति है। वर्ष 2014 से 2025 के बीच भारत में 748 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक का रिकॉर्ड प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आया है। इसके साथ ही भारत में निवेश करने वाले देशों की संख्या भी 89 से बढ़कर 112 हो गई है। नई दिल्ली में इस साल रोजगार मेले को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि आज दुनिया के 100 से अधिक देश भारत में निवेश कर रहे हैं।
2: वर्ष 2014 से पहले के 10 वर्षों की तुलना में भारत में 2.5 गुना से अधिक FDI आया है और ज्यादा विदेशी निवेश का अर्थ है भारत के युवाओं के लिए रोजगार के अनगिनत अवसर।
1: केंद्र सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन ने कहा कि भारत ने अंतरिक्ष, ड्रोन, रक्षा और बीमा सहित कई क्षेत्रों को विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए खोल दिया है।
3: सबसे पहले हम वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला पर ध्यान देने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा, हमने विदेशी निवेश के लिए अंतरिक्ष, ड्रोन, रक्षा और बीमा जैसे क्षेत्रों को खोला है और प्रधानमंत्री ने परमाणु ऊर्जा उत्पादन को भी निजी क्षेत्र और विदेशी कंपनियों के लिए खोलने की बात कही है। और तीसरी बात, हम डीरेगुलेशन यानी नियमों में ढील की दिशा में काम कर रहे हैं जिससे निवेश आसान हो जाएगा, चाहे वो घरेलू हो या फिर विदेशी।
1: केंद्र सरकार ने विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए नियमों को आसान बनाया है। इनका मकसद भारत को निवेश का एक प्रमुख वैश्विक केंद्र बनाना है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: पंजाब की सभी 117 विधानसभा सीटों के लिए विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के बाद आज अंतिम मतदाता सूची जारी कर दी गई है। राज्य में मतदाताओं की कुल संख्या बढ़कर 2,10,00,000 से अधिक हो गई है। इनमें 506 ट्रांसजेंडर मतदाता भी शामिल हैं। अंतिम सूची में मतदाताओं की संख्या में 3.64% की वृद्धि हुई है। ये मतदाता आगामी पंजाब विधानसभा चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि दिल्ली NCR में पटाखों से होने वाले वायु प्रदूषण से निपटने के लिए प्रतिबंध लगाने के बजाय जन जागरूकता और स्वैच्छिक भागीदारी का असर अधिक होगा। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि प्रतिबंधात्मक आदेशों को लागू करना जमीनी स्तर पर मुश्किल हो सकता है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची और वी मोहना की पीठ ने दिल्ली NCR में वायु प्रदूषण से जुड़े स्वतः संज्ञान मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि न्यायालय धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाएगा। झारखंड लोक सेवा आयोग JPSC द्वारा आयोजित 11वीं, 12वीं और 13वीं सिविल सेवा परीक्षा, बाल विकास परियोजना अधिकारी और खाद्य सुरक्षा अधिकारी की नियुक्तियां रद्द करने के राज्य सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर झारखंड उच्च न्यायालय में सुनवाई पूरी हो गई है। न्यायमूर्ति दीपक रोशन ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप NewsOnAIR पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार इस साल अमेरिका के अर्थशास्त्रियों रॉबर्ट ई हॉल और माइकल वुडफोर्ड को देने की घोषणा की गई है। उन्होंने नीति निर्माताओं को आर्थिक उछाल और मंदी के दौरान अर्थव्यवस्थाओं को स्थिर करने में मदद करने वाले व्यापक आर्थिक मॉडल विकसित किए हैं। रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेज ने कहा है कि उनके काम ने राजकोषीय और मौद्रिक नीतियों के सैद्धांतिक आधार को मजबूत किया। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब और छत्तीसगढ़ में कल तक बिजली कड़कने और तेज हवाओं के साथ आंधी तूफान की संभावना व्यक्त की है। अगले दो दिनों में तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, आंध्र प्रदेश, केरल और माहे में भी ऐसा ही मौसम रहने की उम्मीद है। मराठी की वरिष्ठ अभिनेत्री और लावणी कलाकार मधु कांबीकर का आज पुणे में 72 वर्ष की आयु में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। उनका अंतिम संस्कार पुणे में किया गया। लक्षद्वीप को पूर्ण साक्षरता प्राप्त केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया है। लक्षद्वीप के प्रशासक प्रफुल्ल पटेल ने इसकी घोषणा की।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने 2030 तक भारत ब्रिटेन द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का आह्वान किया है। नई दिल्ली में भारत ब्रिटेन संयुक्त आर्थिक और व्यापार समिति के 16वें सत्र में श्री गोयल ने सतत सहभागिता, सुदृढ़ संस्था

0: सहयोग के माध्यम से भारत ब्रिटेन आर्थिक सहयोग को और बढ़ाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया। उन्होंने कहा कि इससे दोनों देशों के व्यवसायों के लिए नए अवसर खुलेंगे। केंद्रीय मंत्री ने इस समझौते से विस्तारित व्यापार को निवेश, साझेदारी और रोजगार सृजन में बदलने का आह्वान किया। श्री गोयल ने कहा कि ये समझौता दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी में महत्वपूर्ण है। ये अधिकांश भारतीय निर्यातों के लिए ब्रिटेन के बाजार में बिना शुल्क के पहुंच प्रदान करता है, साथ ही ब्रिटेन के निर्यातकों के लिए सभी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण अवसर खोलता है। इससे पहले श्री गोयल ने नई दिल्ली में आयोजित दिल्ली संवाद 2026 में कहा कि देश के युवाओं को नए विचारों, नवाचार और स्पष्ट उद्देश्यों के साथ भारत की विकास यात्रा में सक्रिय भागीदारी निभानी चाहिए। उन्होंने वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत की प्रगति और चुनौतियों से निपटने की क्षमता का उल्लेख किया। श्री गोयल ने विश्वास व्यक्त किया कि वर्ष 2047 तक भारत की अर्थव्यवस्था $30 ट्रिलियन की हो जाएगी। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से अस्पतालों में दी जाने वाली सेवाओं और सुविधाओं की दरें प्रमुखता से प्रदर्शित करना सुनिश्चित करने को कहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस संबंध में स्वास्थ्य सचिव पुण्य सलीला श्रीवास्तव ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखा है।
1: केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने पत्र के जरिए लागू नियामक प्रावधानों के अनुपालन की समीक्षा करने के साथ साथ उचित उपाय करने का भी आह्वान किया है, ताकि स्वास्थ्य सेवा शुल्क संबंधी जानकारी रोगियों और उनके परिजनों के लिए स्पष्ट और आसानी से सुलभ हो। पत्र में अंतर्राष्ट्रीय मरीजों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं की कीमतों में पारदर्शिता पर विशेष जोर दिया गया है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से अनुरोध किया गया है कि वे मेडिकल या आयुष वीजा पर भारत आने वाले विदेशी मरीजों को दी जाने वाली पैकेज दरों को प्रमुखता से प्रदर्शित करने के लिए प्रोत्साहित करें। यह पहल स्वास्थ्य सेवा को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और रोगियों की जरूरतों के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता को मजबूत करती है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 6 राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति की है। सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर अब केरलम के नए राज्यपाल होंगे। केरलम के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर को अब तमिलनाडु का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। ब्रजमोहन राम ओडिशा के राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं, जबकि डॉक्टर सुधा यादव कर्नाटक की राज्यपाल होंगी। डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन को उत्तराखंड का राज्यपाल बनाया गया है, जबकि दुष्यंत गौतम सिक्किम के राज्यपाल होंगे। सभी नियुक्तियां कार्यभार संभालने की तिथियों से प्रभावी हो जाएंगी। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में आज नियंत्रण रेखा के पास घुसपैठ की कोशिश के दौरान बारूदी सुरंग फटने से लश्कर ए तैयबा के एक शीर्ष कमांडर सहित 4 आतंकवादी मारे गए। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज महिलाओं, ट्रांसजेंडरों के लिए ई ऑटो ड्राइविंग उत्थान और रोजगार योजना दुर्गा के डिजिटल पोर्टल का शुभारंभ किया। योजना को पारदर्शी और व्यवस्थित रूप से लागू करने के लिए समर्पित डिजिटल पोर्टल विकसित किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि योजना के पहले चरण में कुल 1300 पिंक ई ऑटो आवंटित किए जाएंगे। इनमें से 1170 ई ऑटो महिलाओं के लिए और 130 ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए आरक्षित है। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार इस वर्ष अमेरिका के अर्थशास्त्रियों रॉबर्ट ई हॉल और माइकल वुडफोर्ड को देने की घोषणा की गई है। उन्होंने नीति निर्माताओं को आर्थिक उछाल और मंदी के दौरान अर्थव्यवस्थाओं को स्थिर करने में मदद करने वाले व्यापक आर्थिक मॉडल विकसित किए हैं। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब और छत्तीसगढ़ में कल तक बिजली चमकने और तेज हवाओं के साथ आंधी तूफान की संभावना व्यक्त की है। अगले 2 दिनों में तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल, आंध्र प्रदेश, केरलम और माहे में भी ऐसा ही मौसम रहने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: बात कर रही हूं आपके साथ निदा फाजली साहब की। आज 12 अक्टूबर है और यही वो दिन है जब 1938 में दिल्ली की सरजमी पर इसी शख्सियत ने जन्म लिया था, जिसके लफ्ज आने वाली नस्लों के दिलों में भी अपनी जगह बना लेते हैं। तो चलिए आज बात करेंगे इसी शायर की, सुनने की कोशिश करेंगे इसी शायर की खूबसूरत गजलें, बेहतरीन तख्लीकात। तो आइए शुरुआत करते हैं प्रोग्राम रंगे महफिल की इस खूबसूरत सी गजल के साथ।

तो जनाब ये थे निदा फासली, किसका चेहरा मैं देखूं। और आपने महसूस किया होगा इस पूरी गज़ल में बहुत ही खूबसूरत अल्फाज का इस्तेमाल किया गया है। और जब जब हम ये गज़ल सुनते हैं तो हम निदा फाजली की सोच को सलाम करते हैं। चांद भी देखा, फूल भी देखा, बादल, बिजली, तितली, जुगनू, यानी कुल मिलाकर कायनात का शायद ही कोई ऐसा खूबसूरत लफ्ज़ होगा जो कुदरत से वाबस्ता हो। और उसे निदा फाजली साहब ने

हम बात कर रहे हैं आपके साथ पद्मश्री निदा फाजली साहब की। इनका असल नाम अगर इसकी बात की जाए तो असल नाम था मुक्तदा हसन निदा फाजली, मगर दुनिया ने इन्हें निदा फाजली के नाम से पहचाना। इनके वालिद भी शायर थे और यूं शेर व अदब से उनकी वाबस्तगी का एक बहुत ही खूबसूरत समंजर पहले से ही मौजूद था। लेकिन जनाब, निदा फाजली की पहचान सिर्फ उनका अदबी पस मंजर नहीं बल्कि उनका अपना एक मुनफरिद लहजा था। जिंदगी को देखने का उनका अपना एक अलग अंदाज था और आम इंसान के एहसासात को अल्फाज में ढालने का उनके पास बेमिसाल हुनर था। और वाकई निदा फाजली साहब ने जो लिखा उसे ना सिर्फ महसूस किया बल्कि महसूस कराया भी। धूप में निकलो घटाओं में नहा कर देखो, धूप में निकलो घटाओं में नहा कर देखो, जिंदगी क्या है किताबों को हटा कर देखो। यकीनन जिंदगी की सच्चाइयां हमें जिंदगी के तजुर्बात ही सिखाते हैं। उसको रुख्सत तो किया था मुझे मालूम न था, उसको रुख्सत तो किया था मुझे मालूम न था, सारा घर ले गया घर छोड़ के जाने वाला। और जनाब, एक से बढ़कर एक शेर, एक से बढ़कर एक गजल मुकम्मल। जब भी आप इनका कलाम पढ़ेंगे तो आपको एहसास होगा कि जिंदगी के किस कदर करीब थे निदा फाजली साहब। और वाकई जब जब हम उनके इस एहसास को समझने की कोशिश करते हैं तो हम और गहराई में चले जाते हैं, महसूस करते हैं कि क्या यही जिंदगी है, क्या जिंदगी के यही एहसास हैं। एक और बहुत ही शानदार शाहकार निदा फाजली साहब का आप तक पहुंचा रही हूं कब्बन मिर्जा की आवाज़ में।

जी जनाब, तो ये कलाम जो अभी आपने सुना ये भी निदा फाजले साहब का ही है। निदा फाजले साहब एक मुनफरिद शायर हैं, ऐसे शायर जिनकी शायरी हमें कभी अपने माजी की तरफ ले जाती है, कभी हाल पर गौर करने पर मजबूर करती है और कभी मुस्तकबिल के लिए एक नई उम्मीद बन जाती है। और निदा फाजले साहब कुछ ऐसे ही ख़ास किस्म की शायरी किया करते थे। सफ़र में धूप तो होगी तो चल सको तो चलो, सफ़र में धूप तो होगी जो चल सको तो चलो, सभी हैं भीड़ में तुम भी निकल सको तो चलो। किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती हैं, तुम अपने आप को

खुद ही बदल सको तो चलो। यहां किसी को कोई रास्ता नहीं देता, मुझे गिरा के अगर तुम संभल सको तो चलो। कहीं नहीं कोई सूरज धुआं धुआं है फिजा, खुद अपने आप से बाहर निकल सको तो चलो। यही है जिंदगी, कुछ ख्वाब चंद उम्मीदें, इन्हीं खिलौनों से तुम भी बहल सको तो चलो। सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। सभी हैं भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो।

0: खिलते हैं, बहारों का समा होता है। ऐसे मौसम में ही तो प्यार जवां होता है। दिल की बातों को होंठों से नहीं कहते, ये फसाना तो निगाहों से बयां होता है।
1: तो जनाब, अभी आपने ये गजल सुनी, होश वालों को खबर क्या। और आपको बता दें जनाब कि ये जो गज़ल है, जैसे आपने अभी सुना, जैसे निदा फाजली साहब ने लिखा और जगजीत सिंह साहब ने इसे गाया, लेकिन जब ये गज़ल लिखी गई और फिल्म सरफरोश के लिए लिखी गई, तब फ़ोन पर उनको ये गज़ल सुनाई गई, यानी जगजीत सिंह साहब को ये गज़ल सुनाई गई, लेकिन उन्होंने धुन सुनने के बाद इस गज़ल को गाने से मना कर दिया था। और बहुत मनाया गया, लेकिन उनको लगा कि भाई ये गज़ल मैं नहीं गाऊंगा। क्या वजह रही जाने दीजिए इस बात को, लेकिन आमिर खान साहब, क्योंकि उन पर ये फिल्म आई गई थी, उनकी ज़िद थी कि इसे जगजीत सिंह साहब ही गाएं। अब बात ये थी कि आखिर उनसे बात कौन करे, तो इस उलझन को सुलझाने की जो जिम्मेदारी थी वो आई निदा फाजली साहब पर। जी हाँ, निदा साहब और जगजीत सिंह साहब बहुत ही अच्छे दोस्त थे और एक दूसरे के जो काम था उसको बहुत सम्मान देते थे, इज्जत करते थे एक दूसरे की भी। निदा फाजली साहब ने खुद जगजीत सिंह साहब से बात की, उन्होंने जो म्यूजिशंस थे और जगजीत सिंह साहब, उनके बीच में एक तरह से पुल का काम किया। और निदा साहब के कहने पर और जतिन ललित साहब ने भी जो गज़ल की एक गायकी का अंदाज था, जो धुने थी, उसे जगजीत सिंह साहब के कहने पर काफ़ी हद तक बदला और एक ख़ास किस्म का जो चाहते थे वो, उसे निदा फाजली साहब ने भी समझा, पूरी टीम ने समझा, और यकीन मानिए एक बहुत ही खूबसूरत गज़ल निकल कर सामने आई। लेकिन ये गज़ल अगर आज हम सुनते हैं जगजीत सिंह साहब की आवाज़ में, तो ये पूरा क्रेडिट हम इसे निदा फाजली साहब को ही देंगे। जी हाँ, निदा साहब की मौजूदगी में गज़ल के मिजाज के मुताबिक उसको ढाला गया, तब जाकर जगजीत सिंह साहब ने इसे गाया और शानदार साहब हमारे सामने आया। और जब जब हम इस गज़ल को सुनते हैं, जब जब इस शाहकार को सुनते हैं, तो वाकई हमें यूँ लगता है कि ये ख़ास अंदाज सिर्फ और सिर्फ निदा फाजली साहब का ही हो सकता है। तो जनाब, निदा फाजली साहब की बातें तो बहुत सारी हैं आपके साथ, लेकिन साथ ही साथ मैं आपको यहाँ ये भी बता दूं कि आप सब हमारे साथ बने हुए हैं। हमारे साथ मनीष हैं, लिखते हैं कि बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है और निदा साहब का मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। जी हाँ साहब, उनकी शायरी ही ऐसी है, कमाल की शायरी है, लोग उसे सुनते हैं और पसंद भी करते हैं। और इसके अलावा हमारे साथ कौन है, जसपुर रोड दुल्हापुर ज़िला मुरादाबाद से महबूब दुकानदार, बेगम साहिबा महबूब और मोहम्मद समीर अंसारी, मोहम्मद वारिस अंसारी और इनकी बेटी अलशिफा अंसारी। तो साहब, आप भी प्रोग्राम सुन रहे हैं, बड़ा अच्छा लगता है, इसी तरह से प्रोग्राम सुनते रहिए और हमें बताते रहिए। पंकज अमरावती महाराष्ट्र से लिखते हैं, कार्यक्रम रंगे महफिल, बहुत बढ़िया कार्यक्रम प्रस्तुति, बहुत अच्छा लग रहा है। शायर और गीतकार निदा फाजली जी को की जयंती के दिन पर उन्हें हम शत शत नमन करते हैं। तो साहब, बड़ा अच्छा लगता है कि आप इस तरह से सुनते हैं, बातचीत भी करते हैं, और अच्छी बात यह है कि हम ये तो मानते हैं कि हमारे जितने भी लिसनर्स हैं वो बहुत, एक कहना चाहिए, बहुत अदबी हैं, बहुत लिटरेरी पर्सन हैं सभी, जो हर तरह से लोग पसंद करते हैं और एहसास करते हैं कि वाकई जो प्रोग्राम है उसकी क्या रूह होनी चाहिए, क्या किस तरह से होना चाहिए। और जब बात आई है कि किस तरह से होना चाहिए, तो हमारे साथ ये हैं कस्बा गुन्नौर यूपी से फारूक अली खान साहब, लिखते हैं कि आपको सुन रहे हैं, और फैजी, फराज, फरीन, फरहान, फारिया और ताहिरा, गज़लें बेहद पसंद आ रही हैं। चलिए साहब, आपको कुछ तो पसंद आया, अगर गज़लें आपको अच्छी लग रही हैं तो और हमें क्या चाहिए। रिचा हमारे साथ जुड़ी हैं, लिखती हैं कि कार्यक्रम अच्छा लग रहा है और निदा फाजली साहब के साथ जो आप वक्त गुजार रही हैं वो हमें बहुत पसंद आ रहा है। जी हाँ, हम तो यही चाहते हैं कि ज़िंदगी शायरी के नाम हो जाए, ज़िंदगी शायरों के नाम हो जाए, क्योंकि हमें बेहद अच्छा लगता है शायरी को पसंद करना, क्योंकि शायरी हम सब के दिल की तर्जुमान होती है। सचिन ने हमें सिर्फ हेलो लिखकर भेजा है, तो हम भी आपको कह देते हैं हेलो। और कौन है शिकवा था अगर कोई चुपचाप बता देते, हम एक बार नहीं खुद को 100 बार सजा देते, रुस्वा किया दुनिया में इस बात का ही बस गम है, ये भी था मेरे हक में तुम मुझको मिटा देते। प्रेमचंद प्रेमी जी हमारे साथ हैं। निदा साहब को मेरी ओर से लाखों नमन। जी हाँ, ये वो शायर है जिसे हम कभी भुला नहीं पाएंगे, कभी हम इन्हें नज़रअंदाज नहीं कर पाएंगे। चलिए, आपके मैसेजेस हम और भी शामिल करेंगे। फ़िलहाल ऐसा करते हैं, एक और खूबसूरत सा शाहकार सुनते हैं, निदा फाजली साहब के ही कलम से लिखा गया। और साहब आपको बता दें कि ये आवाज़ जो है ये भी बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही शानदार और सीधे दिल से निकल कर दिल तक पहुंच जाती है।

में मैं दफन हूँ, तुम मुझ में जिंदा हो। कभी फुर्सत मिले तो फातिहा पढ़ने चले आना।

ही मिलता। और जनाब, निदा फासली साहब का ये कलाम एक कहावत बन गया है, और न जाने कितने लोग जब कभी तन्हाई का एहसास करते हैं, कोई अपना दूर चला जाता है, तब इस कलाम को ज़रूर याद किया जाता है कि कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं ज़मीं तो कहीं आसमां नहीं मिलता। वाकई निदा साहब एक ऐसे शायर थे जिन्होंने अल्फाज को सिर्फ आवाज नहीं, लफ्ज नहीं, बल्कि उन्हें एहसास दिया, इंसानियत और ज़िंदगी की सच्चाइयों से रूशनास कराया है हम सबको। और हमारे साथ रितु बत्रा जुड़ गई हैं, लिखते हैं कि दिल्ली के गोपाल पार्क में रहती हूँ और बहुत पसंद आ रही हैं गज़लें, इसके लिए दिल से बहुत बहुत थैंक्स। आपका भी बहुत बहुत थैंक यू रितु जी, ऐसे ही हमारे साथ आप बने रहिए, बहुत धन्यवाद। और ये हमारे साथ कौन है, निदा फाज़ली साहब पे आप बहुत अच्छा प्रोग्राम प्रेजेंट कर रही हैं, यहाँ रात ठंडी है, गज़लें खुशी की गरमाइश दे रही हैं। ओके उम्दा, मोंटी है जम्मू से हमारे साथ, बहुत शुक्रिया। और ठंड में अगर आप इसका एहसास कर रहे हैं तो हमें बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि ये गज़लें सिर्फ और सिर्फ आप सब के लिए हैं और जो हमारे दिल को सुकून देती हैं और ठंड में हमें गर्मी का भी एहसास कराती हैं, यानी हमारे जो जज्बात हैं, जो एहसास हैं, उन्हें सहलाने का काम करती हैं। पंकज हैं अमरावती महाराष्ट्र से, लिखते हैं निदा फाज़ली जी के गीत, होश वालों को खबर क्या बेखुदी क्या चीज़ है, इस गीत से जुड़ी जानकारी बहुत अच्छी लगी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपको पसंद आई और हमें क्या चाहिए, तो इस तरह से मेरी ज़िंदगी में शामिल है, आप तो ऐसे न थे। जी हाँ जनाब, ये इसी फिल्म का गीत है, बहुत शुक्रिया। और रंगे महफिल में आरजे साहिबा जी को पुरखलूस आदाब, गुन्नौर से आदल कमर, तस्दीक अली, मुजफ्फर अली, और लिखते हैं तहे दिल से शुक्रिया, जिसे बिछड़ना था वो बिछड़ गए हमसे, उन्हें जाना था वो दूर चले गए हमसे, आदिल कमर, क्या बात है साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। और थैंक यू रेशमा मैम, आज तो गज़ल लाजवाब है और योर टॉकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल लिसनर्स, प्लीज़ कन्वे माय मैसेज टू माय डियर फ्रेंड आकाश। ओके तुम्बा, आपका जो मैसेज है वो पहुंच गया होगा यकीनन आपके अपने साथी के पास, और हमारी तो कोशिश यही रहती है कि आपके पैगामात आपके अपनों तक पहुंचाए जा सकें। सुदर्शन मुखी, अनिता मुखी, सिमरन मुखी, शांतिनगर सोनीपत से हमारे साथ, लिखते हैं सुरीली आवाज़, सुंदर प्रस्तुति, सदाबहार गज़लें और सुहाना कार्यक्रम, सबसे बड़ी वाली बधाई, और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद प्रोग्राम सुनने के लिए, प्रोग्राम को पसंद करने के लिए, और बहुत ही खूबसूरत प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन एंड नरेशन विद मेलोडियस सेलेक्शन ऑफ ट्रैक्स, निदा फाज़ली साहब को शत शत नमन, ट्रू पैट्रियोटिक पर्सन एंड गज़ल को चार चांद लगाने वाले अजीम सितारा, लव यू योर क्रिएशन, थैंक्स टू मिस आरजे एंड द एंटायर टीम ऑफ रेनबो, स्टे ब्लेस्ड, अरुण कुमार रावत जी हैं और हमें मैसेज करते हैं हैदराबाद से। यकीन मानिएगा अरुण कुमार जी, बहुत अच्छा लगा कि आपने प्रोग्राम को समझा, प्रोग्राम को महसूस किया, और यकीन मानिए हमारे ये जो शायर हैं ये सिर्फ शायर नहीं है, ये जैम है जो ज़िंदगी की बात करते हैं, हमें ज़िंदगी से रूशनास कराते हैं, और ज़िंदगी का जो एक एहसास है उससे हम दूबदू हो जाते हैं, रूबरू हो जाते हैं, और उसका मज़ीद हम एहसास कर सकते हैं, इसीलिए हम इन्हें आज के प्रोग्राम में याद कर रहे थे। और कोशिश रहेगी कि हम अक्सर जो हमारे दिगर जैम्स हैं, दिगर हमारे जितने भी अच्छे शायर हैं और जो शाहकार हैं उर्दू अदब के, उन्हें हम याद कर सकें और एहसास कर सकें कि उन्होंने वाकई बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही शानदार काम किया है। आप सबका मैं दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करती हूँ, आप इसी तरह से प्रोग्राम सुनते हैं तो यकीन मानिए बहुत अच्छा लगता है। और चलते चलते मैं प्रणव शिंदे साहब का, जो मुंबई से हमारे साथ हैं, प्रोग्राम सुन रहे हैं, उनका भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगी, शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। और अब वक्त का इशारा कि मैं आपसे यहीं इजाज़त लूँ और वादा करूँ एक और मुलाकात का, तो बहुत जल्द मिलने आऊँगी आपसे, अपना अच्छा सा ख्याल रखिएगा और कोशिश कीजिएगा कि शायरी के आप नज़दीक हो सकें, शायरी को आप समझ सकें, क्योंकि जो शायरी को पसंद करता है मेरी नज़र में वो इंसान भी बहुत अच्छा होता है, क्योंकि वो जानता है कि मोहब्बत क्या है, वो जानता है कि ज़िंदगी क्या है। तो ज़िंदगी के करीब रहिए, फ़िलहाल मुझे आप
यहीं पर इजाज़त दीजिए।

रात्रि के 12 बज चुके हैं। फिल्म रेनबो पर अब सुनिए मुख्य समाचार। भारत ने ब्रिटेन के साथ आर्थिक सहयोग और मजबूत बनाने की प्रतिबद्धता दोहराई है। वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार दोगुना करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 6 राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति की है। सिक्किम के राज्यपाल श्री ओम प्रकाश माथुर अब केरलम के नए राज्यपाल होंगे। केरलम के राज्यपाल श्री राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर को अब तमिलनाडु का राज्यपाल नियुक्त किया गया है, जबकि श्री दुष्यंत गौतम सिक्किम

हरियाणा के राज्यपाल होंगे। श्री ब्रजमोहन राम ओडिशा के राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं, जबकि डॉक्टर सुधा यादव कर्नाटक की राज्यपाल होंगी। डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन को उत्तराखंड का राज्यपाल बनाया गया है। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा के पास घुसपैठ की कोशिश के दौरान बारूदी सुरंग फटने से लश्कर-ए-तैयबा के एक शीर्ष

सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पटाखों से होने वाले प्रदूषण से निपटने के लिए प्रतिबंध लगाने के बजाय जन जागरूकता और स्वैच्छिक भागीदारी का अधिक असर होगा। दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर को विरोध प्रदर्शन स्थल की सूची से हटा दिया है। विरोध प्रदर्शनों के लिए 3 नए स्थान निर्धारित किए गए हैं। दिल्ली सरकार ने दुर्गा ई ऑटो योजना के डिजिटल पोर्टल का शुभारंभ किया है। यह योजना महिलाओं और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को इलेक्ट्रिक ऑटो के मालिक और चालक बनने तथा सम्मान के साथ आजीविका कमाने का अवसर प्रदान करेगी। दिल्ली सरकार राजधानी में 150 नई पर्यावरण अनुकूल इलेक्ट्रिक बसें जनता को समर्पित करेगी। इससे दिल्ली में इलेक्ट्रिक बसों की संख्या बढ़कर 5,238 हो जाएगी। केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने नई दिल्ली में बुधवार तक चलने वाले ब्रिक्स थिएटर महोत्सव का उद्घाटन किया है। एस्टोनिया की नवनिर्वाचित राष्ट्रपति उल्ले मादिसे ने राजधानी तेलिन में स्थित एस्टोनियाई संसद में पद की शपथ ली है। बैडमिंटन में साल BWF वर्ल्ड टूर का खिताब जीतने वाली पीवी सिंधु और पुरुष युगल जोड़ी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी आज से आरंभ हो रहे डेनमार्क ओपन 2026 में भारतीय अभियान की अगुवाई करेंगे। और एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी पंजाब के जलंधर और मोहाली में 27 अक्टूबर से 5 नवंबर तक आयोजित होगी। ये थे FM रेनबो मुख्य समाचार।

आधी रात के 12:03 हुए हैं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM रेनबो चैनल और अब आप सुनेंगे नॉनस्टॉप बॉलीवुड हिट म्यूजिक और साथ में कुछ इंडी पॉप्स। तो शो का नाम है जीरो आर शो, जिसमें आप नॉनस्टॉप गानों का मजा लेंगे। तो शुरुआत करते हैं इन गानों से और ऐसे ही नॉनस्टॉप गाने चलते जाएंगे, तो गानों की दुनिया में खो जाइए और मजा लीजिए।

0: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये हैं भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर। दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
1: तो सुनिए जानकारियों से लबरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
0: अल्फा जेन,
1: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग। सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।

रात के 1 बज चुके हैं। एफएम रेनबो पर अब सुनिए मुख्य समाचार। भारत ने ब्रिटेन के साथ आर्थिक सहयोग और मजबूत बनाने की प्रतिबद्धता दोहराई है। वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार दोगुना करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 6 राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति की है। सिक्किम के राज्यपाल श्री ओम प्रकाश माथुर अब केरलम के नए राज्यपाल होंगे। केरलम के राज्यपाल श्री राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर को अब तमिलनाडु का राज्यपाल नियुक्त किया गया है, जबकि श्री दुष्यंत गौतम सिक्किम के राज्यपाल होंगे। श्री ब्रजमोहन राम ओडिशा के राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं, जबकि डॉक्टर सुधा यादव कर्नाटक की राज्यपाल होंगी। डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन को उत्तराखंड का राज्यपाल बनाया गया है। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में ब्रिटेन के व्यापार, नवाचार, विज्ञान और व्यापार मंत्री जोनाथन रेनॉल्ड्स के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों पक्षों ने अंतरिक्ष, नागरिक परमाणु ऊर्जा, वैज्ञानिक अनुसंधान और उभरती प्रौद्योगिकियों में भारत ब्रिटेन सहयोग सुदृढ़ बनाने के उपायों पर चर्चा की। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा के पास घुसपैठ की कोशिश के दौरान बारूदी सुरंग फटने से लश्करे तैयबा के एक शीर्ष कमांडर सहित 4 आतंकवादी मारे गए हैं। सरकार ने कैंसर रोधी दवाओं पर लाभ अधिकतम खुदरा मूल्य MRP के 30% तक सीमित कर

जागरूकता और स्वैच्छिक भागीदारी की अधिक असर होगा। दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर को विरोध प्रदर्शन स्थल की सूची से हटा दिया है। विरोध प्रदर्शनों के लिए 3 नए स्थल निर्धारित किए गए हैं। दिल्ली सरकार ने दुर्गा ई ऑटो योजना के डिजिटल पोर्टल का शुभारंभ किया है। यह योजना महिलाओं और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को इलेक्ट्रिक ऑटो के मालिक और चालक बनने तथा सम्मान के साथ आजीविका कमाने का अवसर प्रदान करेगी। दिल्ली सरकार राजधानी में 150 नई पर्यावरण अनुकूल इलेक्ट्रिक बसें जनता को समर्पित करेगी। इससे दिल्ली में इलेक्ट्रिक बसों की संख्या बढ़कर 5,238 हो जाएगी। दिल्ली यातायात पुलिस ने आज नई दिल्ली में होने वाले ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम 2026 को देखते हुए यातायात परामर्श जारी किया है। केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने खान मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा विज्ञान और प्रौद्योगिकी कार्यक्रम तथा उद्योग प्रायोजित कार्यक्रमों के तहत विकसित प्रौद्योगिकियों के व्यवसायीकरण कैटलॉग का शुभारंभ किया है, जिससे उद्योगों द्वारा उन्हें अपनाने, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, लाइसेंसिंग और व्यवसायीकरण में आसानी हो। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने नई दिल्ली में निरामयातः दक्षिण एशिया ग्रंथों और प्रथाओं में उपचार और स्वास्थ्य देखरेख प्रदर्शनी के उद्घाटन के अवसर पर कहा कि भारत की प्रगति के लिए तकनीकी और परंपरा को साथ चलना चाहिए। एस्टोनिया की नवनिर्वाचित राष्ट्रपति उल्ले मादिसे ने राजधानी तेलिन में स्थित एस्टोनियाई संसद में पद की शपथ ली है। बैडमिंटन में साल BWF वर्ल्ड टूर का खिताब जीतने वाली पीवी सिंधु और पुरुष युगल जोड़ी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी आज से आरंभ हो रहे डेनमार्क ओपन 2026 में भारतीय अभियान की अगुवाई करेंगे। और एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी पंजाब के जलंधर और मोहाली में 27 अक्टूबर से 5 नवंबर तक आयोजित होगा। ये थे FM रेनबो मुख्य समाचार।

आधी रात के 1:05 हो चुके हैं। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम रेनबो चैनल और अब आप सुनेंगे नॉनस्टॉप गाने शो सुहानी रात में। तो बस गानों की दुनिया में खो जाइए और ऐसे ही मजा लेते रहिए।

0: पार्टी शुरू हुई है।
1: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
2: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
3: आज की रात मजा,
2: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
1: म्यूजिक मस्ती।
4: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
5: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
1: म्यूजिक मस्ती।

रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।

रात्रि के 2 बज चुके हैं। एफएम रेनबो पर अब सुनिए मुख्य समाचार। भारत ने ब्रिटेन के साथ आर्थिक सहयोग और मजबूत बनाने की प्रतिबद्धता दोहराई है। वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार दोगुना करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 6 राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति की है। सिक्किम के राज्यपाल श्री ओम प्रकाश माथुर अब केरलम के नए राज्यपाल होंगे। केरलम के राज्यपाल श्री राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर को अब तमिलनाडु का राज्यपाल नियुक्त किया गया है, जबकि श्री दुष्यंत गौतम सिक्किम के राज्यपाल होंगे। श्री ब्रजमोहन राम ओडिशा के राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं, जबकि डॉक्टर सुधा यादव कर्नाटक की राज्यपाल होंगी। डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन को उत्तराखंड का राज्यपाल बनाया गया है। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में ब्रिटेन के व्यापार, नवाचार, विज्ञान और व्यापार मंत्री जोनाथन रेनॉल्ड्स के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों पक्षों ने अंतरिक्ष, नागरिक परमाणु ऊर्जा, वैज्ञानिक अनुसंधान और उभरती प्रौद्योगिकियों में भारत ब्रिटेन सहयोग सुदृढ़ बनाने के उपयोगों पर चर्चा की है। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा के पास घुसपैठ की कोशिश के दौरान बारूदी सुरंग फटने से लश्करे तैयबा के एक शीर्ष कमांडर सहित 4 आतंकवादी मारे गए हैं। सरकार ने कैंसर रोधी दवाओं पर लाभ अधिकतम खुदरा मूल्य एमआरपी के 30% तक सीमित करने का निर्णय लिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पटाखों से होने वाले वायु प्रदूषण से निपटने के लिए प्रतिबंध लगाने के बजाय जन जागरूकता और स्वैच्छिक भागीदारी का अधिक असर होगा। दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर को विरोध प्रदर्शन स्थल की सूची से हटा दिया है। विरोध प्रदर्शनों के लिए 3 नए स्थल निर्धारित किए गए हैं।

दिल्ली सरकार ने दुर्गा ई ऑटो योजना के डिजिटल पोर्टल का शुभारंभ किया है। यह योजना महिलाओं और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को इलेक्ट्रिक ऑटो के मालिक और चालक बनने तथा सम्मान के साथ आजीविका कमाने का अवसर प्रदान करेगी। दिल्ली सरकार राजधानी में 150 नई पर्यावरण अनुकूल इलेक्ट्रिक बसें जनता को समर्पित करेगी। इससे दिल्ली में इलेक्ट्रिक बसों की संख्या बढ़कर 5238 हो जाएगी।

केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री किशन रेड्डी ने खान मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा विज्ञान और प्रौद्योगिकी कार्यक्रम तथा उद्योग प्रायोजित कार्यक्रमों के तहत विकसित प्रौद्योगिकियों के व्यावसायिकीकरण कैटलॉग का शुभारंभ किया है, जिससे उद्योगों द्वारा उन्हें अपनाने, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, लाइसेंसिंग और व्यवसायीकरण में आसानी हो। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने नई दिल्ली में निरामयाताहा दक्षिण एशियाई ग्रंथों और प्रथाओं में उपचार और स्वास्थ्य देखरेख प्रदर्शनी के उद्घाटन के अवसर पर कहा कि भारत की प्रगति के लिए तकनीकी और परंपरा को साथ चलना चाहिए। एस्टोनिया की नवनिर्वाचित राष्ट्रपति उल्ले मादिसे ने राजधानी तेलिन में स्थित एस्टोनियाई संसद में पद की शपथ ली है। बैडमिंटन में इस साल BWF वर्ल्ड टूर का खिताब जीतने वाली पीवी सिंधु और पुरुष युगल जोड़ी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी आज से आरंभ हो रहे डेनमार्क ओपन 2026 में भारतीय अभियान की अगुवाई करेंगे। और एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी पंजाब के जलंधर और मोहाली में 27 अक्टूबर से 5 नवंबर तक आयोजित होगा। ये थे FM रेनबो मुख्य समाचार।

आधी रात के 2:04 और पूरे 2:05 हो चुके हैं। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम रेनबो चैनल। अब शो शुरू होता है भुलाई ना बने, जिसमें आप सुनेंगे नॉन स्टॉप गाने, और स्पेशली वो गाने जो आप किसी टाइम पे बहुत गुनगुनाते थे लेकिन फिर टाइम के साथ वो गाने भूल चुके। लेकिन अब उन्हीं गानों को दोबारा रिमाइंड करने का टाइम है भुलाई ना बने शो में। तो बस गाने सुनिए और दुनिया में इस गानों की खोज आइए।

0: पायल सी तेरी बोली तेरी छी नजर में है जादू।
1: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
0: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
1: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।

दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।

मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल। आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।

लीजिए सुनिए एफएम रेनबो पर अब तक के मुख्य समाचार। भारत ने ब्रिटेन के साथ आर्थिक सहयोग और मजबूत बनाने की प्रतिबद्धता दोहराई है। वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार दोगुना करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 6 राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति की है। सिक्किम के राज्यपाल श्री ओम प्रकाश माथुर केरलम के नए राज्यपाल होंगे। केरलम के राज्यपाल श्री राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर को तमिलनाडु का राज्यपाल नियुक्त किया गया है, जबकि श्री दुष्यंत गौतम सिक्किम के राज्यपाल होंगे। श्री ब्रजमोहन राम ओडिशा के राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं, जबकि डॉ सुधा यादव कर्नाटक की राज्यपाल होंगी। डॉ ढाल सिंह बिसेन को उत्तराखंड का राज्यपाल बनाया गया है। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में ब्रिटेन के व्यापार नवाचार विज्ञान और व्यापार राज्य सचिव जोनाथन रेनॉल्ड्स के साथ बातचीत में अंतरिक्ष नागरिक परमाणु ऊर्जा वैज्ञानिक अनुसंधान और उभरती प्रौद्योगिकियों में भारत ब्रिटेन सहयोग सुदृढ़ बनाने के उपायों पर चर्चा की। भारत ने साइप्रस की नौसेना को समुद्री सुरक्षा बढ़ाने में प्रशिक्षण क्षमता विकास और तकनीकी सहायता की पेशकश की है। ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिव मोहसेन रेजाई ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के साथ फोन पर क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नवीनतम घटनाक्रमों और परस्पर हित के मुद्दों पर बातचीत की है। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूसी डीजल निर्यात की अनुमति देने के अपने फैसले का बचाव करते हुए कहा है कि उनका प्रशासन अमरीका के बेहतर हित में काम कर रहा है। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा के पास घुसपैठ की कोशिश के दौरान बारूदी सुरंग फटने से लश्कर तैयबा के एक शीर्ष कमांडर सहित 4 आतंकवादी मारे गए हैं। सरकार ने कैंसररोधी दवाओं पर लाभ अधिकतम खुदरा मूल्य MRP के 30% तक सीमित करने का निर्णय लिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पटाखों से होने वाले वायु प्रदूषण से निपटने के लिए प्रतिबंध लगाने के बजाय जन जागरूकता और स्वैच्छिक भागीदारी का अधिक असर होगा। दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर को विरोध प्रदर्शन स्थल की सूची से हटा दिया है। विरोध प्रदर्शनों के लिए 3 नए स्थल निर्धारित किए गए हैं।

दिल्ली सरकार आज दिन राजधानी में 150 नई पर्यावरण अनुकूल इलेक्ट्रिक बसें जनता को समर्पित करेगी। इससे दिल्ली में इलेक्ट्रिक बसों की संख्या बढ़कर 5238 हो जाएगी। दिल्ली यातायात पुलिस ने आज नई दिल्ली में होने वाले ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम 2026 को देखते हुए यातायात परामर्श जारी किया है। एस्टोनिया की नवनिर्वाचित राष्ट्रपति उल्ले मादिसे ने

जोड़ी सात्विक राय साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी आज से आरंभ हो रहे डेनमार्क ओपन 2026 बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय अभियान की अगुवाई करेंगे और एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी पंजाब के जालंधर और मोहाली में 27 अक्टूबर से 5 नवंबर तक आयोजित होगा। तो ये थे एफएम रेनबो पर अब तक के मुख्य समाचार।

जी हाँ, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। साथियों, स्टूडियो की घड़ी में समय हो रहा है रात्रि के 3:04:46 और ये वक्त है आपके पसंदीदा कार्यक्रम मिडनाइट मेलोडीज का। कार्यक्रम लेकर मैं हूँ आपके साथ, आपकी साथी अलमास रजा। आप सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। कैसे हैं श्रोताओं आप? उम्मीद है आप खुश होंगे, प्रसन्न होंगे, स्वस्थ होंगे। तो ये कार्यक्रम आपके लिए कुछ खूबसूरत से गीत चुनकर लाए हैं आपके लिए। एंजॉय कीजिए इन गीतों को नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक में।

0: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये है भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।
1: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
0: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
2: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
3: आज की रात मजा,
2: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
0: म्यूजिक मस्ती।
4: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
5: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर,
0: म्यूजिक मस्ती।
6: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल। आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।

0: कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

नमस्कार, लीजिए सुनिए एफएम रेनबो पर अब तक के मुख्य समाचार। भारत ने ब्रिटेन के साथ आर्थिक सहयोग और मजबूत बनाने की प्रतिबद्धता दोहराई है। वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार दोगुना करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 6 राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति की है। सिक्किम के राज्यपाल श्री ओम प्रकाश माथुर केरलम के नए राज्यपाल होंगे। केरलम के राज्यपाल श्री राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर को तमिलनाडु का राज्यपाल नियुक्त किया गया है, जबकि श्री दुष्यंत गौतम सिक्किम के राज्यपाल होंगे। श्री ब्रजमोहन राम ओडिशा के राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं, जबकि डॉक्टर सुधा यादव कर्नाटक की राज्यपाल होंगी। डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन को उत्तराखंड का राज्यपाल बनाया गया है। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में ब्रिटेन के व्यापार नवाचार विज्ञान और व्यापार राज्य सचिव जोनाथन रेनॉल्ड्स के साथ बातचीत में अंतरिक्ष, नागरिक, परमाणु ऊर्जा, वैज्ञानिक अनुसंधान और उभरती प्रौद्योगिकियों में भारत ब्रिटेन सहयोग सुदृढ़ बनाने के उपायों पर चर्चा की। भारत ने साइप्रस की नौसेना को समुद्री सुरक्षा बढ़ाने में प्रशिक्षण, क्षमता विकास और तकनीकी सहायता की पेशकश की है। ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिव मोहसिन रेजाई ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के साथ वो फोन पर क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नवीनतम घटनाक्रमों पर परस्पर हित के मुद्दों पर बातचीत की। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूसी डीजल निर्यात की अनुमति देने के अपने फैसले का बचाव करते हुए कहा है कि उनका प्रशासन अमेरिका के बेहतर हित में काम कर रहा है। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा के पास घुसपैठ की कोशिश के दौरान बारूदी सुरंग फटने से लश्कर-ए-तैयबा के एक शीर्ष कमांडर सहित 4 आतंकवादी मारे गए हैं। सरकार ने कैंसर रोधी दवाओं पर लाभ अधिकतम खुदरा मूल्य MRP के 30% तक सीमित करने का निर्णय लिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पटाखों से होने वाले वायु प्रदूषण से निपटने के लिए प्रतिबंध लगने के बजाय जन जागरूकता और स्वैच्छिक भागीदारी का अधिक असर होगा। दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर को विरोध प्रदर्शन स्थल की सूची से हटा दिया है। विरोध प्रदर्शनों के लिए 3 नए स्थान निर्धारित किए गए हैं। दिल्ली सरकार राजधानी में 150 नई पर्यावरण अनुकूल इलेक्ट्रिक बसें जनता को समर्पित करेगी। इससे दिल्ली में इलेक्ट्रिक बसों की संख्या बढ़कर 5238 हो जाएगी।

दिल्ली यातायात पुलिस ने आज नई दिल्ली में होने वाले ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम 2026 को देखते हुए यातायात परामर्श जारी किया है। एस्टोनिया की नवनिर्वाचित राष्ट्रपति उल्ले मादिसे ने राजधानी तेलिन में स्थित एस्टोनियाई संसद में पद की शपथ ली है। इस वर्ष बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड टूर का खिताब जीतने वाली पीवी सिंधु और पुरुष युगल जोड़ी सात्विक

जी हाँ साथियों, आपसे फिर एक बार हम जुड़ गए हैं आकाशवाणी रेनबो के माध्यम से 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। समय हो रहा है सुबह के 4:04:18। और लीजिए अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम सारेगामा। कार्यक्रम में मैं हूँ आपके साथ अलमास रजा। आप सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार।

0: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये है भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।
1: यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।
2: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री राम चरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे

0: कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।